मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 10वीं तिथि तदनुसार 1 सितंबर सन 2026। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:57 होने को हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है। इस सभा में मैं आपकी मित्र इला आपके साथ हूँ। सुप्रभात।

0: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। इस समय प्रातः के 6 बजने को है। अब से थोड़ी ही देर में समाचार होंगे जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कुछ ही पलों में रिले किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा।
2: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी कल बिश्केक में 6ठे विश्व घुमंतू खेलों के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। ये द्विवार्षिक आयोजन घुमंतू सभ्यताओं की समृद्ध खेल परंपराओं, संस्कृति और विरासत का उत्सव है। प्रधानमंत्री मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग रूस, ईरान, किर्गिस्तान और आर्मेनिया के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों, व्यापार और निवेश, ऊर्जा और रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यही दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा।
3: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना, यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
2: राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है, जबकि 4,247 से अधिक लोग अभी भी लापता है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के ढहने और हिमस्खलन के कारण आई बाढ़ ने भोटकोशी नदी के किनारे के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। इससे घर, सड़कें और पुल नष्ट हो गए तथा बिजली परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गई। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने बताया कि बैठक में देश में विहरित विकास को गति देने और नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ी पहलों को मजबूत करने पर चर्चा हुई। इसमें विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों पर ध्यान दिया गया। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए 4था भारत जर्मनी पर्यावरण मंच आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और जर्मनी के पर्यावरण, प्रकृति संरक्षण, जलवायु संरक्षण और परमाणु सुरक्षा मंत्री कार्स्टेन स्नाइडर इस मंच की सह अध्यक्षता करेंगे। रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज 2 सप्ताह तक चलने वाले स्वच्छता पखवाड़ा का उद्घाटन करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के उन्मूलन के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। साथ ही कपड़े के थैलों और दोबारा प्रयोग वाली बोतलों के उपयोग को बढ़ावा देना भी है। ये अभियान 15 सितंबर तक चलेगा। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट से 11 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि और घायलों के लिए 50-50 हजार रुपये की सहायता राशि की घोषणा की है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर कल से 3 दिन के भारत दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय संबंधों के साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री डी वेवर भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में एक व्यापारिक कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि ये दौरा भारत बेल्जियम साझेदारी को

0: और मजबूत करेगा। AFC अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप 2027 के क्वालिफायर में भारत ने सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। ताशकंद के दोस्तलिक स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में सिंगाम्यूम शमी ने 86वें मिनट में भारत के लिए मैच का एकमात्र गोल किया। भारतीय टीम का अगला मुकाबला बृहस्पतिवार को मेजबान उज्बेकिस्तान से होगा। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। अगले दो दिनों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश दर्ज की गई है। कई इलाकों में जलभराव के कारण जनजीवन प्रभावित है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के
2: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम का आरंभ करते हैं इस देश गान से।

0: ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन। इसमें जानिए तुलिका शर्मा के विचार।
1: हर सुबह एक छोटी बच्ची मंदिर जाकर भगवान के सामने आंख बंद कर हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती और थोड़ी देर कुछ बुदबुदाती रहती, फिर आंखें खोलकर झुकती, मुस्कुराती और दौड़कर वापस चली जाती। ऐसा रोज़ होता। मंदिर का पुजारी उसे रोज़ देखता और उसे जिज्ञासा होती कि वो ऐसा क्यों करती है। तो छोटी बच्ची है, धर्म का उसे कहाँ ज्ञान होगा। पता नहीं कोई प्रार्थना भी उसे आती है कि नहीं। रोज़ पुजारी उस बच्ची को देखता। कई दिन बीत गए, लेकिन एक दिन बच्ची दौड़कर लौटते हुए पुजारी से टकरा गई। उसने सोचा कि आज मैं पूछ ही लेता हूँ इस बच्ची से कि ये ईश्वर से क्या प्रार्थना करती है, वो भी हर रोज़। पुजारी ने उस बच्ची के सिर पर प्यार से हाथ रखा और बोला, मेरी बच्ची, मैं तुम्हें कितने दिनों से देख रहा हूँ, तुम यहाँ रोज़ आती हो, क्या करती हो? बच्ची तपाक से बोली, मैं प्रार्थना करती हूँ। पुजारी के मन में थोड़ी शंका हुई। उसने फिर पूछा, तुम्हें कोई प्रार्थना आती है? बच्ची बोली, नहीं। उसने बच्ची से फिर पूछा, तो फिर आँख बंद करके क्या बोलती रहती हो? बच्ची ने मासूमियत से जवाब दिया कि मुझे कोई प्रार्थना तो आती ही नहीं है, लेकिन मुझे अ आ इ ई और क ख ग घ पूरे आते हैं। मैं इन्हीं को 5 बार दोहराकर भगवान से कहती हूँ कि मुझे प्रार्थना तो आती नहीं, लेकिन कोई भी प्रार्थना इन 12 खड़ी और वर्णमाला से बाहर तो होगी नहीं। तो आप इन अक्षरों को अपनी इच्छा के अनुसार जमा लीजिए, यही मेरी प्रार्थना है। इतना कहकर वो बच्ची तो चली गई, लेकिन पुजारी अवाक रह गया और उस बच्ची को तब तक देखता रहा जब तक वो आँखों से ओझल नहीं हो गई। ये कहानी थी भरोसे की। बच्ची ने अपने सीमित ज्ञान को जा करके ईश्वर के सामने उड़ेल दिया और कहा, चुन लीजिए, इसी में है मेरी सारी श्रद्धा। ये श्रद्धा, ये भरोसा उम्र में बड़े होने के बाद भी उस पुजारी के पास नहीं था। बच्ची के अंदर इतना आत्मविश्वास और ईश्वर के प्रति इतनी गहरी आस्था सिर्फ उस भरोसे के कारण ही थी। यदि हम जीवन में किसी के ऊपर इस हद तक भरोसा कर पाए तो हम भी इतने ही निश्चिंत और इतने ही पुरसुकून हो सकते हैं। हमारे जीवन में ऐसा कोई भरोसे का व्यक्ति है जिस पर हम अपनी पूरी चिंताओं का बोझ उड़ेल कर निश्चिंत और निष्फिक्र हो सकते हैं? यदि नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को ढूंढना शुरू कीजिए, भरोसा हासिल करना शुरू कीजिए। जिस दिन आपको इस तरह का भरोसा प्राप्त हो जाएगा, जीवन के प्रति न सिर्फ आपका नज़रिया बदलेगा बल्कि आपके परफॉर्मेंस में भी सुधार आएगा। आपने टेलीविज़न पर आने वाले बहुत तरह के डांस शोज़ देखे होंगे, एक्रोबैटिक्स करते हुए आपने उन्हें देखा होगा, उछलते हैं, वापस दूसरे की गोद में आ जाते हैं, या फिर बैले डांसिंग देखी होगी, जिमनास्टिक देखा होगा जिसमें दो लोग एक साथ नृत्य करते हैं। दोनों का आपस में कोऑर्डिनेशन जितना गहरा होता है उतना ही बेहतरीन उनका परफॉर्मेंस होता है। एक व्यक्ति हवा में उछलता है, उसे पूरा यकीन होता है कि नीचे खड़ा व्यक्ति उसको ज़मीन पर गिरने से पहले संभाल लेगा और इस तरह से संभालेगा कि ज़रा भी चोट नहीं आए। यदि ऊपर उछले व्यक्ति को ये भरोसा ना हो तो क्या वो उतनी स्मूदली उसकी बाहों में गिर पाएगा? बिल्कुल नहीं। उसकी हड़बड़ाहट की वजह से नीचे उसे पकड़ने वाला व्यक्ति भी हड़बड़ा जाएगा और दोनों के परफॉर्मेंस में वो हड़बड़ाहट दिखेगी और संपूर्ण रूप से उन दोनों के परफॉर्मेंस पर असर पड़ेगा। ठीक इसी तरह जो भरोसा है वो भी काम करता है। यदि हम कोई काम करते हैं और हमें ये यकीन होता है कि यदि हम इस काम में असफल रहे तो कोई है हमारे साथ जो हमारी गलतियों को संभाल लेगा, तो हम उस काम को बेहतर तरीके से करते हैं। ये आपसी समझ भी विकसित करता है। ये समझ इस तरह की होती है कि हमारी किसी छोटी सी गलती की वजह से भी सामने वाले का किसी तरह का नुकसान नहीं हो जाए। जिस दिन हम ये सोचने लगेंगे अपने साथियों के लिए, तो न सिर्फ हमारे परफॉर्मेंस में सुधार आएगा बल्कि हमारा टीम वर्क भी बेहतर होगा। जिंदगी का फंडा यही है कि हमें किसी पर ऐसा विश्वास, ऐसा भरोसा होना चाहिए जो बिना शर्त हो और जिस पर सवाल ही न उठाया जाए। लेकिन आपको ये पता करना होगा कि आपकी ज़िंदगी में वो किसके साथ होगा। यदि आपके जीवन में ऐसा कोई है तो आप खुशकिस्मत हैं, और यदि ऐसा कोई नहीं है तो तलाश जारी रखिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति को किसी न किसी भरोसेमंद साथी की तलाश है।
0: भरोसा, इस विषय पर आपने जानी तोलिका शर्मा के विचार। कार्यक्रम था चिंतन, ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ।

परशुराम और लक्ष्मण के वाक युद्ध से स्थिति बिगड़ती देख श्री राम ने ऋषि की क्रोधाग्नि को शांत करने के लिए क्षमा याचना की। बालक यदि चपलता भी करते हैं तो गुरुजन तथा माता पिता के हृदय में आनंद उत्पन्न होता है, अतः समदर्शी सुशील धैर्यवान तथा ज्ञानी मुनि होने के नाते उन्हें इस अबोध दुधमुहे बच्चे को क्षमा कर देना चाहिए। किंतु तभी लक्ष्मण ने मुनि को एक बार फिर छेड़ा। खड़े खड़े मुनिवर के चरण दुख गए होंगे, सो उन्हें क्रोध त्याग कर बैठ जाना चाहिए। यदि टूटा हुआ धनुष उन्हें इतना ही प्रिय हो तो किसी गुणी को बुलवाकर उसे जुड़वा देने का उपाय करना चाहिए। स्थिति गंभीर होते देख राजा जनक समेत उपस्थित जन आतंकित और भयभीत हो गए। श्री राम के शीतल वचन सुनकर परशुराम जी ने कहा, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूं, किंतु ये मन का मैला और शरीर से वैसा ही सुंदर है जैसे विष से भरा सोने का कलश। श्री राम ने एक बार फिर उनका क्रोध शांत करने के उद्देश्य से उन्हें सच्चाई से अवगत कराया कि वो नाहक ही उस बालक पर क्रोध कर रहे हैं, वास्तविक दोषी तो स्वयं राम है, और जिस प्रकार भी मुनि का क्रोध समाप्त हो वो सभी उपाय करने को तत्पर हैं। किंतु मुनि का क्रोध दूर भी हो तो कैसे, लक्ष्मण तो अब भी उन्हें टेढ़ी दृष्टि से ही ताक रहे।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस का संगीतमय पाठ। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि चर्चा। जैविक खाद कैसे बनाएं, इस संबंध में जानकारी दे रहे हैं सोहन सिंह।
1: किसान भाइयों, जहां पर सिंचाई की सुविधाएं होती हैं, वहां पर हमारी कोशिश रहती है कि अधिक से अधिक फसलों का उत्पादन लिया जाए। फसलों से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए रासायनिक खादों का भी अधिक मात्रा में प्रयोग करते हैं, लेकिन हम जिस अनुपात में रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं उसके अनुरूप हमारी पैदावार नहीं बढ़ रही है। हमारी फसलों की पैदावार एक निश्चित पैदावार पर रुक जाती है। रासायनिक खादों की कीमत भी अधिक होती है, जिससे फसल उत्पादन का लागत व्यय अधिक बढ़ जाता है। खेती से अधिक पैदावार लेने के लिए और लागत व्यय कम करने के लिए अपने फार्म पर जैविक खादें बनाएं। जैविक खाद बनाने के लिए पौधों की सूखी पत्तियां, धान का पैरा, पौधों की जड़ें और फसलों के अवशेष प्रयोग में लाए जाते हैं। जैविक खाद बनाने के लिए टांका तैयार करते हैं। टांका धरातल के ऊपर बनाएं। टांकों का आकार 12 फुट लंबा, 5 फुट चौड़ा और 3 फुट ऊंचा बनाते हैं। टांका की लंबाई और ऊंचाई आवश्यकता अनुसार कम या अधिक कर सकते हैं, लेकिन टांका की चौड़ाई 5 फुट से अधिक न रखें, क्योंकि टांका की चौड़ाई 5 फुट से अधिक रखने पर वायु का संचरण ठीक का नहीं हो पाता है। टांका बना लेने के बाद पहले टांके के धरातल पर कूड़े करकट, पत्तियों, सड़े गले कचरे की 9 इंच मोटी परत लगा देते हैं और इसमें जैविक क्रियाएं कार्य करने के लिए इस परत को पानी से नम कर देते हैं। उसके बाद गोबर का पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर देते हैं। इसके बाद राक फास्फेट का बुरकाव करते हैं। राक फास्फेट का बुरकाव कर देने के बाद खेत की मिट्टी की हल्की परत लगा देते हैं, क्योंकि खेत की मिट्टी में लाखों की संख्या में जीवाणु पाए जाते हैं जो टांका के अंदर जैविक क्रियाएं सुचारू रूप से चलाने में सहायक होते हैं। इसी तरह टांका भरते जाते हैं और टांके में 10 परत लगा देते हैं, लेकिन यह भी ध्यान रखें कि यह टांका भरने का कार्य 1-2 दिन में पूरा हो जाए। टांका भरने के बाद जैविक क्रियाएं कम हो जाती हैं और टांके का तापमान भी कम होने लगता है। उस समय पीएसवी कल्चर और एजिटोबैक्टर का घोल बनाकर खाद से भरे टांकों में सब बल से गड्ढे करके उनमें भर देना चाहिए। पीएसवी कल्चर और एजिटोबैक्टर के घोल से टांका में जो राक फास्फेट डाला जाता है वह घुलनशील अवस्था में हो जाता है। इस तरह यह खाद 90 दिन में बनकर तैयार हो जाती है और इस खाद को फसल में प्रयोग कर सकते हैं। जैविक खादें रासायनिक खादों की अपेक्षा सस्ती भी होती हैं और इनमें सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं तथा फसल की पैदावार बढ़ाने में सहायक होती हैं। अपने फार्म पर आसानी से जैविक खाद बना सकते हैं। रासायनिक खादों के लगातार प्रयोग करने से खेतों में कड़ापन आ जाता है, जिससे मिट्टी की यौगिक संरचना बिगड़ जाती है। जैविक खादों से मिट्टी की यौगिक संरचना बनती है और अधिक समय तक पानी धारण करने की क्षमता विकसित होती है। मिट्टी में भुरुरापन आ जाता है, जिससे पौधों की जड़ों का विकास अधिक होता है। पौधे अधिक गहराई से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। पौधों की बढ़वार अच्छी होती है और दाने सिडोल और चमकदार बनते हैं। जैविक खादों का प्रयोग करने से रासायनिक खादों पर किए जाने वाले खर्च में कमी की जा सकती है। पर्यावरण को स्वच्छ रखा जा सकता है। खेतों, पशुशाला और घरों के निरर्थक जीवांश अवशेषों का समुचित उपयोग हो जाता है। खादें अच्छी तरह पकी होने के कारण दीमक और खरपतवारों की रोकथाम में कमी संभव है। जैविक खादें बनाएं और प्रयोग करें। जैविक खादों का फसलों में प्रयोग करना काफी लाभदायक है।

जैविक खाद कैसे बनाएं, इस संबंध में जानकारी दे रहे थे सोहन सिंह और कार्यक्रम था कृषि चर्चा। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब लीजिए प्रस्तुत है सूचना परक कार्यक्रम दर्पण।

पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल ना करें। क्या आप जानते हैं कि पॉलीथीन की ये थैलियाँ कभी नष्ट नहीं होती, जमीन में गाड़ने पर भूमि की उर्वरा शक्ति को नष्ट करती हैं, और यदि इन्हें जलाया जाए तो इनसे निकलने वाला जहरीला धुआं न केवल वायु को प्रदूषित करता है बल्कि ओजोन परत को भी नुकसान पहुंचाता है। तो अभी से करें पॉलीथीन बैग्स को टाटा बाय बाय। खरीदारी के लिए कपड़े का थैला लेकर जाएं। पॉलीथीन बैग्स को हटाना है, धरती को बचाना है।

0: अब इतना पानी कहाँ कि पानी के साथ खेला जाए।
1: पानी के छींटे व्यर्थ में न उड़ाएं।
0: पानी का उपयोग सजगता के साथ करें।
1: ब्रश करते समय, दाढ़ी बनाते समय नल खुला न रखें।
0: सीधे नल के नीचे बर्तन न धोएं।
1: कपड़े धोते समय जमा पानी का ही उपयोग करें।
0: शावर के बजाय बाल्टी के पानी से नहाएं।
1: सब्जी फल धुले और पोछा लगे पानी को गमले में डालें।
0: जितनी प्यास हो ग्लास में उतना पानी ही लें।
1: अपने वाहन को पाइप से न धोएं।
0: शौचालय में फ्लश के बजाय बाल्टी के पानी का प्रयोग करें।
1: घर के टपकते नल को तुरंत ठीक करवाएं।
0: सार्वजनिक नल को बहता देख आगे न बढ़ जाएं।
1: उसे बंद कर अपना दायित्व निभाएं।
2: कभी कभी बातें तेरी अच्छी लगे,
1: कभी कभी नहीं, रोज ही रखें इन बातों का ध्यान।
0: समय है पानी बचाने का,
1: पानी का मोल समझने और समझाने का।
0: पानी बचाएं, भविष्य सजाएं।
3: धरती माँ की यही पुकार, वृक्ष लगाओ बारंबार, मिलजुल कर पेड़ लगाओ, वातावरण को स्वच्छ बनाओ, धरती पर हरियाली लाओ, जल थल वायु अग्नि और आकाश, इन पांच तत्वों से ही बनता है हमारा पर्यावरण। आइए इस पर्यावरण को हरा भरा बनाएं, वृक्ष लगाएं। प्लास्टिक पॉलीथीन का छोड़ो साथ, प्रकृति से मिलाओ हाथ। प्लास्टिक पॉलीथीन थैलों का उपयोग भूमि की उर्वरा शक्ति के लिए है रोग। खरीदारी करते समय कपड़े से बना थैला हमेशा साथ रखें। यदि पर्यावरण बचाना है, पॉलीथीन दूर हटाना है।
4: प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक की कुछ वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। इनमें मुख्य हैं थर्माकोल से बनी प्लेट, कप, ग्लास, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, चाकू, ट्रे, मिठाई के बक्से, इसके अलावा निमंत्रण कार्ड, सिगरेट पैकेट की फिल्म, प्लास्टिक के झंडे, गुब्बारे की छड़ें और आइसक्रीम पर लगने वाली प्लास्टिक की स्टिक, साथ ही 100 माइक्रोन से कम के बैनर शामिल हैं। इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, हमारी धरती को प्लास्टिक प्रदूषण से बचाएं।

0: इत्येतस्यां क्रीडायाम् एषः अण्डर 20 एशिया कप् इत्यस्यां चषकस्पर्धायां भारतेन ह्यः ताश्कन् नगरे सीरिया देशम् 1-0 इति अङ्कान्तरालेन पराजितम् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी कल बिश्केक में 6ठे विश्व घुमंतू खेलों के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। ये द्विवार्षिक आयोजन घुमंतू सभ्यताओं की समृद्ध खेल परंपराओं, संस्कृति और विरासत का उत्सव है। प्रधानमंत्री मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग रूस, ईरान, किर्गिस्तान और आर्मेनिया के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने बिश्केक में कल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों, व्यापार और निवेश, ऊर्जा तथा रक्षा क्षेत्रों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय हित के सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यही दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा।
2: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना, यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
1: राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि दर 7.8% रही। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में ये वृद्धि दर 6.9% थी। वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में GDP में भी 10.3% की वृद्धि हुई। गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में कल नई दिल्ली में बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी जल बंटवारे को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौता झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल की उपस्थिति में हुआ। गृह मंत्री ने कहा कि समझौते से पूर्वी भारत में लंबे समय से चले आ रहे जल विवाद का समाधान हो गया है। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने के लिए 4था भारत जर्मनी पर्यावरण मंच सम्मेलन आज नई दिल्ली में होगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और जर्मनी के पर्यावरण और परमाणु सुरक्षा मंत्री कार्स्टेन श्नाइडर इस मंच की सह अध्यक्षता करेंगे। अमरीका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की 2 दिन की बैठक का आज अंतिम दिन है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। अमरीका की वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने बढ़ते वैश्विक कर्ज से निपटने के लिए मजबूत विकास, उच्च निवेश और बेहतर उत्पादकता की आवश्यकता पर बल दिया है। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में मृतकों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है। 4,247 से लोग अभी लापता हैं। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के खिसकने के कारण आई बाढ़ से भुट्टीकोशी नदी के किनारे घर, सड़कें और पुल नष्ट हो गए तथा पनबिजली परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गईं। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने बताया कि बैठक में देश में हरित विकास को गति देने और नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ी पहलों को मजबूत करने पर चर्चा हुई। इसमें विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में बातचीत हुई। बैठक में केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सूर्यघर, PM कुसुम और PM जनमन योजनाओं के कार्यान्वयन की भी समीक्षा की गई। रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज 2 सप्ताह तक चलने वाले स्वच्छता पखवाड़े का उद्घाटन करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य एक बार उपयोग होने वाले प्लास्टिक के उन्मूलन के प्रति जागरूकता बढ़ाना है, साथ ही कपड़े के थैलों और दोबारा उपयोग वाली बोतलों को बढ़ावा देना भी है। यह अभियान 15 सितंबर तक चलेगा। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से 11 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनल मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है। उन्होंने अर्जेंटीना को विश्व कप, 2 कोपा अमेरिका खिताब जिताने

0: में बड़ी भूमिका निभाई। मेसी ने अर्जेंटीना के लिए रिकॉर्ड 207 मैच खेले। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब लीजिए प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 7:20 पर आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत। प्रातः 8:30 पर लोक संगीत कार्यक्रम का आनंद लीजिए। इसमें आज आप सुन सकते हैं काशीराम झा के गाए कुछ लोकगीत। गुड मॉर्निंग ग्वालियर, ये कार्यक्रम सुना जा सकता है प्रातः 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में। आज आप सुन सकते हैं अभिक कुमार सरकार का सरोद वादन, राग होगा अहीर भैरव। श्रोता अपनी पसंद के फिल्मी गीतों का आनंद ले सकते हैं 10:05 पर। कार्यक्रम होगा व्हाट्सएप फरमाइश। 11:00 से प्रसारण आकाशवाणी मध्य प्रदेश से होता है। 11:30 आप सुन सकते हैं नई दिल्ली के विज्ञान भवन में माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की गरिमामयी उपस्थिति में सशस्त्र सेना बल का अलंकरण समारोह का आयोजन का सजीव प्रसारण। इस कार्यक्रम को हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। 12:00 आनंद लीजिए फिल्म संगीत का। 12:30 पर कार्यक्रम होगा संग्रहालय से। महिलाओं के लिए कार्यक्रम इंदौर की प्रस्तुति होगा 12:00। लोक संगीत कार्यक्रम इंदौर की प्रस्तुति होगा 12:30 पर। 12:45 पर सुगम संगीत कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति होगा। फिल्म संगीत का आनंद लीजिए 2:00 और 2:30 पर। ये तो थे हमारी इसी सभा में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम।

अब जान ली हमारी शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों को। शाम 5:02 पर युवा साथी सुन सकते हैं अपना कार्यक्रम युववाणी। आज का युववाणी कार्यक्रम होगा आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति। शाम 5:33 पर आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत। एनसीईआरटी का शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग सुना जा सकता है शाम 6:00। फिल्म संगीत का आनंद लीजिए शाम 6:30 पर, रात्रि 8:15 पर। प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी सुना जा सकता है शाम 7:30 पर। उर्दू कार्यक्रम कहकशां का समय होगा रात्रि 9:30 पर। रात्रि 10:00 होगा फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिश्केक में एससीओ शिखर सम्मेलन को करेंगे संबोधित। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज शिवपुरी में विकास कार्यों और अमृत भारत रेलवे स्टेशन का लेंगे जायजा। प्रदेश के 1,22,000 विद्यार्थियों को आज मिलेंगे लैपटॉप के लिए 25,000 रुपए। और प्रदेश में अगले 4 दिन भारी बारिश के आसार, उमरिया और बालाघाट में ऑरेंज अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 26वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री श्री मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के अन्य नेताओं के साथ कल शाम किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आयोजित 6ठे विश्व घुमंतू खेलों के आधिकारिक उद्घाटन समारोह में भाग लिया। ये द्विवार्षिक आयोजन घुमंतू सभ्यताओं की समृद्ध खेल परम्पराओं, संस्कृति और विरासत का जश्न मनाता है। विभिन्न देशों को अपनी साझा संस्कृति के जीवंत उत्सव में एक साथ लाता है। इससे पहले शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने रूस, ईरान, किर्गिज गणराज्य और आर्मेनिया के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 3 दिन के शिवपुरी दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन आज श्री सिंधिया शिवपुरी में छात्रावास, सड़कों और अमृत भारत रेलवे स्टेशन का जायजा लेंगे और कोलारस रेलवे स्टेशन पर उज्जैनी एक्सप्रेस के नए ठहराव की शुरुआत करेंगे। कल वे कलेक्ट्रेट में दिशा की बैठक में शामिल होने के साथ प्रधान डाकघर का लोकार्पण और पोस्टल प्रशिक्षण केंद्र का भूमि पूजन करेंगे। श्री सिंधिया ने कल शिवपुरी जिले के पिछोर में कई विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इन सड़कों से ग्रामीण इलाकों में आवागमन और कनेक्टिविटी बेहतर होगी। श्री सिंधिया ने बामौर कला में करीब 1,24,00,000 रुपए की लागत से बने उप तहसील भवन का लोकार्पण भी किया। भोपाल की संदीपनी विद्यालय महात्मा गांधी की उच्चतर माध्यमिक शिक्षिका डॉ. अर्चना शुक्ला का चयन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए हुआ है। उन्होंने विज्ञान की पढ़ाई को किताबों तक सीमित न रखकर प्रकृति और समाज से जोड़ने का प्रयास किया। विद्यार्थियों के साथ मिलकर गौरैया संरक्षण, पेड़ पौधों की पहचान और बीज संरक्षण जैसे प्रोजेक्ट तैयार किए। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में शिक्षक दिवस पर 5 सितम्बर को आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें सम्मानित करेंगी।
1: मेरा नाम डॉक्टर अर्चना शुक्ला है। मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ और गवर्नमेंट स्कूल्स में मैं साइंस एंड बायोलॉजी पढ़ाती हूँ। इस साल मेरा नॉमिनेशन प्रेसिडेंट अवार्ड के लिए मध्य प्रदेश से हुआ है। ये हम सभी के लिए गर्व की बात है। यहाँ पर अगर मुख्यतः हम देखें कि क्या ऐसा कार्य है जो मैंने दूसरे शिक्षकों से विभिन्न किया है, तो उसमें मुख्य रूप से जो मेरा पढ़ाने का तरीका है वो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है, यानी परियोजना आधारित शिक्षण। तो जब भी मैं विद्यार्थियों को पढ़ाती हूँ तो उनको कोई भी विषय सीधे परिभाषा ना देकर मैं उनसे कोई प्रोजेक्ट कराती हूँ ताकि वो उस प्रोजेक्ट को करते करते और चीज़ों को सीख सके।
0: ओरछा में भारतीय जनता पार्टी की 2 दिन की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में संगठन को मजबूत करने और प्रदेश के विकास पर चर्चा हुई। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा है कि पार्टी सेवा, सुशासन और सामाजिक समरसता के संकल्प के साथ आगे बढ़ेगी। बैठक में युवा, महिला, किसान, आदिवासी, रोजगार और औद्योगिक विकास जैसे मुद्दों पर मंथन हुआ। वहीं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सरकार के 2.5 साल के कामकाज की जानकारी दी और 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाने की बात कही। बैठक में बुंदेलखंड के विकास और किन्वितवा परियोजना पर भी चर्चा हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 साल के लोक सेवा कार्यकाल के सम्मान में 17 सितम्बर से 18 अक्टूबर तक अभियान चलाने का भी लिया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 2 सितंबर को ग्वालियर में बलराम जयंती महोत्सव और सहकारी किसान समागम में शामिल होंगे। कार्यक्रम भीला मैदान परिसर में आयोजित किया जाएगा, जहां विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निगम ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा newsonair ऐप पर भी समाचार

0: सुन सकते हैं।
1: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश में 12वीं में पहली बार 75% या उससे ज्यादा अंक लाने वाले करीब 1,22,000 विद्यार्थियों को लैपटॉप खरीदने के लिए 25,000 रुपए मिलेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों के खातों में ये राशि ट्रांसफर करेंगे। प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत सरकार इस पर करीब 305 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करेगी। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कल दतिया पहुंचकर पीताम्बरा शक्तिपीठ में मां पीताम्बरा के दर्शन और पूजा अर्चना की। उन्होंने प्रदेश की सुख समृद्धि शांति और जन कल्याण की कामना की। इसके बाद उन्होंने वन खंडेश्वर महादेव का जलाभिषेक भी किया। मीडिया से बातचीत में श्री शुक्ल ने कहा कि ओरछा में विकसित भारत और विकसित मध्य प्रदेश के लिए भविष्य की रूपरेखा पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता देने की भी बात कही। भोपाल में सहकारिता खेल और युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने कल नरेला रक्षाबंधन महोत्सव का शुभारंभ किया। पहले दिन वार्ड 44, 78 और 69 में करीब 22,000 बहनों ने उन्हें राखी बांधी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा और जिन्जी बहनों ने भी हिस्सा लिया। श्री सारंग ने कहा कि नई पीढ़ी आधुनिक सोच के साथ भारतीय संस्कृति और परम्पराओं को भी आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि नरेला विधानसभा उनके लिए राजनीति क्षेत्र नहीं बल्कि परिवार है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिन प्रदेश के कई जिलों में भारी और अति भारी बारिश हो सकती है। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दाब क्षेत्र और टर्फ के असर से 4 सितंबर तक कई संभागों में तेज बारिश की संभावना है। आज उमरिया और बालाघाट में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जबकि 15 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा में कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने साप्ताहिक समीक्षा बैठक में शिकायतों के निराकरण में लापरवाही पाए जाने पर जिला शिक्षा अधिकारी जनपद पंचायत खालवा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और सीडीपीओ का एक माह का वेतन काटने के निर्देश दिए हैं। मंदसौर में भारत सरकार की आपदा मित्र योजना के अंतर्गत जिला आपदा प्राधिकरण द्वारा 7 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू किया गया है। आगर मालवा कलेक्टर ने कल जिला अस्पताल के आकस्मिक निरीक्षण करने के बाद डॉक्टरों की बैठक में निर्देश दिए हैं कि जिला अस्पताल में उपलब्ध मानव और अन्य संसाधनों का उपयोग कर मरीजों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। अशोकनगर कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कल शाम सेवानिवृत्त हुए शासकीय सेवकों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। नर्मदापुरम में 12 सितम्बर को नेशनल लोक अदालत आयोजित की जाएगी। धार में शिक्षक दिवस पर विश्व रिकॉर्डधारी जिला शिक्षक सम्मान समारोह समिति द्वारा 208 सेवानिवृत्त शिक्षकों का सम्मान किया जाएगा। इंदौर नगर निगम के वार्ड क्रमांक 58 और वार्ड क्रमांक 60 में पार्षद पद के निर्वाचन की प्रक्रिया निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संपन्न होगी। मंडला कलेक्टर ने जिला योजना भवन में आयोजित समय सीमा की बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। दतिया शहर के इंदरगढ़ रोड स्थित नगर पालिका के ट्रेंचिंग ग्राउंड में कचरे में मौजूद हानिकारक सामग्री मवेशियों के लिए नुकसानदायक साबित हो रही है। गुना कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने कहा है कि मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के अंतर्गत आयोजित शिविरों में प्राप्त समस्याओं का मौके पर ही निराकरण किया जाए। सीहोर के बुधनी स्थित अदालत कॉलोनी में जलभराव वाले एक खाली प्लॉट में मगरमच्छ दिखाई दिया। मगरमच्छ को पानी में तैरते देख आसपास के रहवासियों में दहशत फैल गई। भोपाल के रिहायशी इलाकों में संचालित व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई कल और तेज हो गई। इनमें कुछ प्रतिष्ठानों को निगम की टीम ने सील कर दिया है। उज्जैन में भगवान महाकालेश्वर की पंचमी और भादो माह की पहली सवारी निकाली गई। सवारी की रामघाट पहुंचने पर आयोजित पूजन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी शामिल हुए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

दुनिया फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार और आशा भोंसले की आवाज़ों में। हसरत जयपुरी का लिखा गीत था और इस गीत को संगीत दिया था शंकर जय किशन ने। कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए सुनिए, जिसे हमने चुना है फिल्म दो रास्ते से। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की।

0: मेहरबान कदरदान बच्चे बूढ़े और जवान, सौ बात की एक बात है सही, सिर्फ पैसे भेजने के लिए QR स्कैन करते हैं या पिन डालते हैं, पैसे मिलने के लिए नहीं।
1: RBI कहता है QR कोड स्कैन करते समय या पिन डालते समय थोड़ा ध्यान से।
2: दिल दे के देखो, आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत। मजरू का लिखा गीत है और इस गीत को संगीत दिया है उषा खन्ना ने, आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी ने।

0: So, your place or mine?
1: उसके पहले ये बताओ, तुम्हारे पास कॉन्डम है?
0: कॉन्डम? लेकिन हम तो
1: क्या हुआ? ओरिएंटेशन चाहे जो भी हो, असुरक्षित यौन संबंध से HIV AIDS और बाकी यौन संक्रमणों का खतरा हर स्थिति में बराबर ही रहता है, खासकर जब एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ यौन संबंध कर रहे हो।
0: अरे तुम जानते हो मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन हाँ सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, ये बात मैं समझ गया हूँ।
2: आप भी ये बात याद रखें, संयम, वफादारी और कॉन्डम अपनाएं, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: दिल तेरा दीवाना, आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में।

धूल का फूल। आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत आशा भोंसले और महेंद्र कपूर की आवाजों में। साहिर के लिखे इस गीत को संगीत दिया है एन दत्ता ने।

0: पांच महीने हो गए ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए, नए स्किल सीखने हैं पर पैसे भी कमाने हैं, समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं।
1: तो फिर सोच कि तेरी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई।
0: क्या, कैसे?
1: अरे मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, 12th ITI डिप्लोमा और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, जहां तुम स्किल्स भी सीख सकते हो और 10,000 तक का स्टाइपेंड भी कमा सकते हो।
0: वाह। अच्छा रजिस्टर कैसे करें?
1: mmsky.mp.gov.in पर। MMSky, सीखो भी कमाओ भी।
2: फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से सुन रहे हैं। कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए सुनिए, जिसे हमने चुना है फिल्म दिल अपना और प्रीत पराए से। शैलेंद्र के लिखे इस गीत को संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने और आवाज़ दी है लता मंगेशकर ने।

गीतकार हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन, आवाज़ लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम है दिल एक मंदिर। आइए सुनते हैं ये गीत।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। इस समय 8 बजने को है। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार, जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है। आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला? मुझे तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, डीबीटी सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
2: 12 साल में

0: 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। पीएम जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आज शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की जीडीपी 7.8% बढ़ी, रिजर्व बैंक के 7% के अनुमान से अधिक। अमेरिका ने भारत को गतिशील, मजबूत और अनुकूल अर्थव्यवस्था बताया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय का फैसला ठुकराया। नेपाल में बचाव दल ने पन बिजली संयंत्र के कर्मचारियों की तलाश में पहाड़ी पर विस्फोट किया और अर्जेंटीना के फुटबॉलर नियोलन मेसी ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया। 21 साल के शानदार करियर का अंत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। ये सम्मेलन शंघाई सहयोग संगठन की 25वीं वर्षगांठ पर आयोजित किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में भारत, चीन और रूस सहित 10 अन्य सदस्य देश शामिल हैं।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए सुरक्षा, संपर्क और अवसर के क्षेत्र में भारत की प्राथमिकताओं को रेखांकित करेंगे। भारत आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड अपनाए जाने के हमेशा से खिलाफ रहा है। भारत का मानना है कि क्षेत्र में शांति और समृद्धि के लिए सदस्य देशों के बीच संपर्क बढ़ना जरूरी है। हालांकि संपर्क परियोजनाओं के साथ सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। भारत सदस्य देशों के युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करने और स्टार्टअप व्यवस्था को बढ़ावा देने पर भी विशेष जोर देता रहा है। भारत का मानना है कि युवाओं की ऊर्जा, नवाचार और उद्यमिता क्षेत्रीय विकास और सहयोग को नई गति दे सकती है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में कल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यही दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा।
3: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना, यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूक्रेन के मुद्दे पर लगातार चर्चा की है। उन्होंने कहा कि भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और करता रहेगा।
3: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देते हैं। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
1: राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर 7.8% रही। ये भारतीय रिजर्व बैंक के 7% के अनुमान से अधिक है। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में जीडीपी वृद्धि दर 6.9% रही थी। इस बीच अमेरिका ने भारत को गतिशील, मजबूत और अनुकूल अर्थव्यवस्था बताया है। व्हाइट हाउस के वरिष्ठ उप प्रेस सचिव कुश देसाई ने कहा कि विकास के ये आंकड़े ट्रंप प्रशासन के भारत को एक तेजी से बढ़ती आर्थिक शक्ति के रूप में देखने के दृष्टिकोण की पुष्टि करते हैं।
4: मुझे लगता है कि ये आंकड़े उस बात की पुष्टि करते हैं जो राष्ट्रपति और प्रशासन शुरू से ही कहते आ रहे हैं। भारत एक गतिशील, मजबूत और मुश्किलों का सामना करने में सक्षम अर्थव्यवस्था वाला देश है और मुझे लगता है कि जो जीडीपी रिपोर्ट या आंकड़े सामने आए हैं वे फिर इस बात को पुख्ता करते हैं कि भारत यहाँ तेजी से उभरती हुई एक बड़ी ताकत है।
1: अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की दो दिन की बैठक का आज अंतिम

0: दिन है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रही हैं। अमेरिका की वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने बढ़ते वैश्विक कर्ज से निपटने के लिए मजबूत विकास, उच्च निवेश और बेहतर उत्पादकता की आवश्यकता पर बल
1: हमने अमेरिका को पूंजी के प्रवाह और व्यवसायियों को विकसित करने के लिए दुनिया का प्रमुख केंद्र बनाया है। हमने लाखों कामकाजी परिवारों को ऐतिहासिक कर राहत दी है और ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया की महाशक्ति के रूप में अपनी स्थिति को पुनः प्राप्त किया है। ये उपलब्धियां विकास के अगले दौर को आकार दे रही हैं और
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: Samachar Prabhat mein aapka phir swagat hai. भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय का फैसला पूरी तरह ठुकरा दिया है। भारत ने न्यायाधिकरण के अधिकार को नकारते हुए उसके निर्णय को कानूनी रूप से अमान्य बताया है।
1: भारत ने दोहराया कि सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित है। यह बयान हेग स्थित मध्यस्थता न्यायालय के उस फैसले के बाद आया है जिसमें कहा गया था कि संधि को स्थगित करने के भारत के कारण इसके निलंबन या समाप्ति को उचित नहीं ठहराते। पैनल ने भारत को 1960 के जल बंटवारे समझौते के अंतर्गत अपने दायित्वों का पालन जारी रखने का आह्वान किया। हालांकि भारत ने इस फैसले को खारिज करते हुए तर्क दिया कि मध्यस्थता पैनल की स्थापना ही संधि की शर्तों का उल्लंघन करते हुए की गई थी। मयूर की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में कल नई दिल्ली में बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी जल बंटवारे को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौता झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। नेपाल में बचाव दल त्रिशूली 3A जल विद्युत परियोजना स्थल पर सुरंगों में फंसे 600 से अधिक श्रमिकों तक पहुंचने के लिए तेजी से प्रयास कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बचाव दल सुरंगों को साफ करने और जीवित लोगों की तलाश के लिए विस्फोटकों, भारी मशीनों और एयर पंप का उपयोग कर रहे हैं।
3: नेपाल में विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 939 हो चुकी है और 3,925 लोग अब भी लापता हैं। जल विद्युत परियोजनाओं से 279 लोगों को बचाया जा चुका है। वहीं देश भर के 11,000 से अधिक लोगों को भी बचाया गया है। भारत ने बचाव अभियान और पीड़ितों की पहचान में सहायता के लिए विशेष दल भेजे हैं। बाढ़ से 11 जल विद्युत परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गई। नेपाल ने कई देशों से फ्रीजर, डीएनए परीक्षण उपकरण, ड्रोन पुल और विशेष सुरंग बचाव उपकरण सहित सहायता मांगी है। 18 भारतीय फॉरेंसिक विशेषज्ञों की एक टीम डीएनए पहचान में सहायता कर रही है। मयूर की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: मौसम विभाग ने आज उड़ीसा के सुंदरगढ़ और क्योंझर के लिए तेज वर्षा का रेड अलर्ट, 6 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 12 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।
4: उड़ीसा में एक बार फिर भारी से बहुत भारी बारिश हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने आज सुंदरगढ़ और केउंझर के लिए रेड वार्निंग जारी की है। झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, देवगढ़, अनुगुल और मयूरभंज के लिए ऑरेंज वार्निंग लागू है, जबकि 12 जिलों येलो वार्निंग में है। ये बारिश गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल और उससे सटे उड़ीसा के उत्तरी तटीय इलाकों में बने वेल मार्क लो प्रेशर एरिया के कारण हो रही है। IMD का अनुमान है कि कल के बाद बारिश कम हो जाएगी। आकाशवाणी समाचार भुवनेश्वर।
0: पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने के लिए चौथा भारत जर्मनी पर्यावरण मंच सम्मेलन आज नई दिल्ली में होगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और जर्मनी के पर्यावरण और परमाणु सुरक्षा मंत्री कार्स्टेन श्नाइडर इस मंच की सह अध्यक्षता करेंगे। रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज 2 सप्ताह तक चलने वाले स्वच्छता पखवाड़े का उद्घाटन करेंगे।

इस अभियान का उद्देश्य एक बार उपयोग होने वाले प्लास्टिक के उन्मूलन के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि 28 अगस्त तक खरीफ फसलों के अंतर्गत 171 लाख

0: अन्वेषण अभिकरण ने इस साल जनवरी में हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ पुलिस स्टेशन पर हुए विस्फोट के सिलसिले में 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले अभिकरण ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने तेजाब की खुदरा बिक्री को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार से इसकी बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के बारे में जानकारी मांगी है। ये निर्देश वर्ष 2013 में दिए निर्देश के बावजूद तेजाब की आसानी से उपलब्धता पर चिंताओं के बीच आया है। न्यायालय ने केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 6 सप्ताह के भीतर तेजाब हमले के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए उचित नीति तैयार करने का भी निर्देश दिया। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर कल 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है। उन्होंने अर्जेंटीना को विश्व कप, 2 कोपा अमरीका खिताब जिताने में बड़ी भूमिका निभाई। मेसी ने अर्जेंटीना के लिए रिकॉर्ड 207 मैच खेले। AFC अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप क्वालिफायर में भारत ने सीरिया को 1-0 से हरा दिया है। ताशकंद में कल सिंगा मयूम शमी ने 86वें मिनट में भारत के लिए मैच का एकमात्र गोल किया। भारतीय टीम का अगला मैच बृहस्पतिवार को मेजबान उज्बेकिस्तान से होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRNews हिंदी और पब्लिक पर @AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
2: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, किर्गिस्तान में प्रधानमंत्री मोदी बोले, यूक्रेन युद्ध का अंत आवश्यक। नवभारत टाइम्स के अनुसार प्रधानमंत्री ने कहा, युद्ध का हर दिन मानवता को पीछे ले जाता है। जनसत्ता की सुर्खी है, किर्गिस्तान में SCO शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री की ईरान के राष्ट्रपति से भी वार्ता और कूटनीति से पश्चिम एशिया के संघर्ष के समाधान की अपील की। अमर उजाला के शीर्षक है, वैश्विक बाधाओं के बाद भी रफ्तार में भारत, विकास दर 7.8% पहली तिमाही में भारत की GDP सबसे तेज, खपत और निर्यात ने संभाला मोर्चा। दैनिक जागरण के अनुसार संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, अगर हिंदू जागते हैं तो दुनिया जागती है, मानवता की निस्वार्थ सेवा के जरिए भारत विश्वगुरु बना। राजस्थान पत्रिका ने समुद्र में शक्ति शीर्षक से सचित्र दिया है, INS निपुण नौसेना में शामिल, समुद्र में गहराई तक मदद पहुंचाने में सक्षम है स्वदेशी पोत।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आज शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की GDP 7.8% बढ़ी, रिजर्व बैंक के 7% के अनुमान से अधिक। अमेरिका ने भारत को गतिशील, मजबूत और अनुकूल अर्थव्यवस्था बताया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय का फैसला ठुकराया। नेपाल में बचाव दल ने पन बिजली संयंत्र के कर्मचारियों की तलाश में पहाड़ी पर विस्फोट किया। और अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया, 21 साल के शानदार करियर का अंत। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to address SCO summit in Kyrgyzstan's capital, Bishkek today. Country's GDP grows 7.8% in first quarter of current financial year, beating RBI's projection of 7%. US describes India as a dynamic, strong and resilient economy. New Delhi rejects Court of Arbitration award on Indus Water Treaty. Nepal rescuers blast hillside in search of hydropower workers as families wait anxiously. And Lionel Messi announces retirement from international football, ending legendary 21-year career with Argentina national team. Prime Minister Narendra Modi will address the 26th Shanghai Cooperation Organization, SCOC,

लोक संगीत का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से सुन रहे हैं। इस कार्यक्रम में अभी आप काशीराम झा के गाए कुछ लोक गीत सुन रहे हैं।

0: काशीराम झा के गाए इस लोकगीत के साथ ही लोक संगीत का एक अनुभव सुन
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में छठे विश्व घुमंतू खेलों के आधिकारिक उद्घाटन समारोह में भाग लिया। प्रधानमंत्री श्री मोदी आज 26वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 3 दिन के शिवपुरी दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन आज श्री सिंधिया शिवपुरी में छात्रावास, सड़कों और अमृत भारत रेलवे स्टेशन का जायजा लेंगे और कोलारस रेलवे स्टेशन पर उज्जैनी एक्सप्रेस के नए ठहराव की शुरूआत करेंगे। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कल दतिया में मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने बाढ़ प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता देने की भी बात कही। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में भोपाल के महात्मा गांधी उच्चतर माध्यमिक सांदीपनी विद्यालय की शिक्षिका डॉ. अर्चना शुक्ला को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित करेंगी। ओरछा में भारतीय जनता पार्टी की 2 दिन की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में संगठन को मजबूत करने और प्रदेश के विकास पर चर्चा हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 साल के लोक सेवा कार्यकाल के सम्मान में 17 सितम्बर से 18 अक्टूबर तक अभियान चलाने पर भी फैसला लिया गया। और मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र और टर्फ के असर से 4 सितंबर तक कई संभागों में तेज बारिश की संभावना है। आज उमरिया और बालाघाट में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर।

खबरों और नगमों का ये कार्यक्रम जिसका नाम है गुड मॉर्निंग ग्वालियर में, मैं हूँ आपकी रेडियो मित्र इला आपके साथ। श्रोता मित्रों, भारत में हर साल की तरह इस बार भी 1 सितंबर से यानी आज से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य है संतुलित आहार, सही पोषण और स्वस्थ जीवन शैली के प्रति लोगों को जागरूक करना। देश से कुपोषण और एनीमिया यानी खून की कमी जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए सही खान पान की जानकारी देना। ये अभियान

भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय और खाद्य एवं पोषण बोर्ड द्वारा साल 1982 से चलाया जा रहा है। जब खान पान की बात आती है तो पहले बच्चों को ही शामिल किया जाता है। अब देखिए ना, बच्चों का वजन लगातार बढ़ रहा है, तो अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो स्वस्थ ही हों। शहर में बच्चों के खान पान में बदलाव के साथ ऐसी स्थिति सामने आ रही है जिसमें पेट तो कैलोरी से भर जाता है, लेकिन शरीर को पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, आयरन, विटामिन और मिनरल्स नहीं मिल पा रहे हैं। चिप्स, बिस्किट्स, नमकीन, पिज्ज़ा, बर्गर, इंस्टेंट नूडल्स और मीठे पेय बच्चों की थाली का हिस्सा बनते जा रहे हैं। इससे बच्चों में वजन बढ़ने के साथ ही पोषण की कमी का भी खतरा बढ़ रहा है। बच्चों के पोषण को लेकर राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 के आंकड़े ये बताते हैं कि 6 से 23 माह तक की उम्र के बच्चों के लिए पर्याप्त और संतुलित आहार की स्थिति अभी भी कमज़ोर है। सर्वेक्षण में केवल 18% बच्चों की को ही पर्याप्त आहार मिलता पाया गया है। हालांकि 5 वर्ष पहले ये आंकड़ा 11.6% था, लेकिन मौजूदा स्थिति में भी 5 में से 4 से अधिक बच्चों को उम्र के अनुरूप पर्याप्त आहार नहीं मिल पा रहा है। अक्सर होता क्या है कि जब बच्चों को भूख लगती है तो वो आसानी से बाज़ार से मिलने वाले पैक्ड फूड या कोल्ड ड्रिंक का सहारा लेते हैं, जैसे कि चिप्स का या नमकीन का या कोई बिस्किट्स का पैकेट्स लिया और फटाफट खोला और खाया। ये भी उनके मोटापे का कारण हो सकती है। बच्चों के भोजन में केवल पेट भरने वाले खाद्य पदार्थों की बजाय प्रोटीन, सब्जियां, फल, साबुत अनाज और पर्याप्त पानी को शामिल करना है। नाश्ते में पोहा, उपमा, दलिया, अंडा, दूध जैसे विकल्प दिए जा सकते हैं। दोपहर और रात के भोजन में दाल, सब्जी, रोटी या चावल के साथ ही दही, सलाद को भी शामिल किया जा सकता है। मीठे पेय और अत्यधिक पैकेट वाले खाद्य पदार्थों की बजाय यदि घर का बना पौष्टिक खाना दिया जाए तो सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। विशेषज्ञों के अनुसार जंक फूड में कैलोरी, नमक, चीनी और वसा अधिक हो सकते हैं, लेकिन शरीर के विकास के लिए ज़रूरी पोषक तत्व अपेक्षाकृत कम मिलते हैं। ऐसे में बच्चा देखने में स्वस्थ और वजन में सामान्य से अधिक हो सकता है, लेकिन उसे आयरन या प्रोटीन की कमी हो सकती है। लगातार ऐसी डाइट लेने से बच्चों की शारीरिक वृद्धि, रोग प्रतिरोधक क्षमता और एकाग्रता प्रभावित होती है। लेकिन केवल बच्चों की ही खान पान का ध्यान नहीं रखना है, हमें अपना भी खान पान का ध्यान रखना है। इसके लिए भी आपको भी पौष्टिक आहार की ज़रूरत है, तो साथ इसमें आप अपने खाने में शामिल करें साबुत अनाज और घर का बना खाना। बहरहाल बातें तो और भी हैं, जानकारियां और भी हैं, लेकिन इस वक्त क्यों ना गुनगुना लिया जाए एक प्यारा सा गीत।

बेदी की जयंती है। राजेंद्र सिंह बेदी एक हिंदी और उर्दू उपन्यासकार, निर्देशक, पटकथा लेखक और नाटककार थे। इनका जन्म 1 सितंबर 1915 को सियालकोट

0: ले जाते हैं। वे निर्देशक के रूप में दस्तक, जो कि 1970 में बनी थी, उसमें संजीव कुमार और रेहाना सुल्ताना थे, के कारण भी जाने जाते हैं। उन्हें विभाजन पर लिखी गई उनकी मन को विचलित कर देने वाली दुखद कहानियों के लिए जाना जाता है। उनके ही नाम से पंजाब सरकार ने राजेंद्र सिंह बेदी पुरस्कार की भी घोषणा की है, जिसे उर्दू साहित्य में अपना योगदान देने वालों को पुरस्कार दिया जाता है। इनके द्वारा रचित एक उपन्यास एक चादर मैलीसी के लिए उन्हें सन 1965 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
1: दर्शकों, खबरदार, अगर ब्रेकिंग न्यूज बनने से बचना है तो पैसे भेजते समय नाम और धनराशि हमेशा दोबारा जांच लें।
2: RBI कहता है, किसी को भी पेमेंट करते समय थोड़ा ध्यान से।
0: श्रोता मित्रों, एक खबर आपके लिए। 12 सितंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसमें नगर निगम में लंबित संपत्ति कर और जल कर प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। बकाया राशि जमा करने पर अधिभार में 100% तक की छूट दी जाएगी। निगमायुक्त ने बताया है कि लोक अदालत नगर निगम के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों, वार्ड कार्यालय क्रमांक 1 से 25 और जिला न्यायालय परिसर में आयोजित होगी। संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर और अधिभार सहित 50,000 रुपए तक बकाया है, उनमें अधिभार पर 100% छूट मिलेगी। 50,000 से 1,00,000 रुपए तक बकाया होने पर 50%, जबकि 1,00,000 रुपए से अधिक बकाया होने पर अधिभार में 25% छूट दी जाएगी। जल कर में भी इसी तरह राहत मिलेगी। 10,000 रुपए तक बकाया पर अधिभार में 100%, 10,000 से 50,000 तक 75%, जबकि 50,000 रुपए से अधिक बकाया होने पर 50% छूट मिलेगी। ये छूट केवल एक बार ही दी जाएगी। लोक अदालत में बकाया जमा कर अधिभार की राशि में राहत के साथ ही लंबित प्रकरण भी समाप्त कराए जा सकेंगे। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने उच्च दाम यानी HT बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। अब कनेक्शन स्थायी रूप से कटने के बाद सुरक्षा निधि और अस्थायी अग्रिम मद की बची राशि वापस लेने के लिए आपको बिजली दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। कंपनी ने रिफंड की पूरी प्रक्रिया को अब ऑनलाइन कर दिया है। कंपनी द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार ऑफलाइन आवेदन पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। अब पात्र उपभोक्ता अपने स्मार्ट बिजली पोर्टल या कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर OTP आधारित लॉगिन कर सीधे ऑनलाइन क्लेम जमा करेंगे। स्मार्ट बिजली पोर्टल पर जाकर OTP के जरिए लॉगिन करें और उपभोक्ता विवरण सत्यापित करें। रिफंड श्रेणी और बैंक खाते का विवरण भर के कैंसिल चेक, पैन कार्ड, पहचान प्रमाण, हस्ताक्षरित आवेदन और शपथ पत्र अपलोड करें। आवेदन सबमिट होते ही उपभोक्ता को एक्नॉलेजमेंट और एप्लीकेशन ID मिल जाएगी, जिससे स्टेटस टैग किया जा सकेगा। आवेदन सीधे संबंधित अधीक्षण अभियंता कार्यालय में पहुंच जाएगा। दस्तावेज सही मिलने पर अधिकतम 3 दिन के भीतर सत्यापन पूरा कर केस को सेंट्रल बिलिंग सेल भेजा जाएगा। यदि दस्तावेज अधूरे या त्रुटिपूर्ण मिले तो पोर्टल पर ही आपत्ति दर्ज होगी। उपभोक्ता द्वारा सुधार करते ही 3 दिन में आगे की कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा सफाई शरीर में हो या अपने आसपास जरूरी होती है, ये तो हम सभी जानते हैं। और स्वच्छता की आदत बच्चों को यदि बचपन से ही डाल दी जाए तो फिर कहना ही क्या है। स्वच्छता को लेकर बच्चों में जागरूकता बढ़ाने और उन्हें स्वच्छ सर्वेक्षण से जोड़ने के उद्देश्य से नगर निगम ने आयोजित स्वच्छ स्कूल प्रतियोगिता का प्री कॉम्पिटिशन कल यानी 2 सितंबर को बाल भवन में होगा। शहर के 22 शासकीय, अर्धशासकीय और केंद्रीय स्कूलों के विद्यार्थियों के बीच होने वाली प्रतियोगिता से फाइनल के लिए बच्चों को चयनित किया जाए।

इसके बाद 3 सितंबर को राजमाता विजया राजे कृषि विश्वविद्यालय के दंतोपत ठेंगड़ी भवन में फाइनल प्रतियोगिता होगी। निगम की स्वच्छता टीमें स्कूलों में पहुंचकर विद्यार्थियों को स्वच्छता के साथ स्वच्छ सर्वेक्षण मापदंडों की भी जानकारी दे रही हैं। बच्चों के बीच स्कूल स्तर पर वाद विवाद और ड्राइंग प्रतियोगिता भी कराई जाएगी। 3 सितंबर को होने वाली फाइनल प्रतियोगिता में विजेता विद्यार्थियों को आकर्षक पुरस्कार भी दिए जाएंगे। प्रथम पुरस्कार 21,000, द्वितीय पुरस्कार 11,000 और तृतीय पुरस्कार 5,100 रुपये रखा गया है। इसके साथ वेस्ट टू वंडर ट्रॉफी और प्रमाण पत्र भी प्रदान किए जाएंगे। कार्यक्रम में स्वच्छता का संदेश देने के लिए नुक्कड़ नाटक भी प्रस्तुत किया जाएगा। बहरहाल खबरें तो और भी हैं, पर क्यों न गुनगुना लिया जाए एक प्यारा सा गीत।

श्रोता मित्रों, आपने इस वक्त ट्यून किया है आकाशवाणी ग्वालियर को और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर। और इस कार्यक्रम में मैं हूं आपकी रेडियो मित्र इला आपके साथ। अगली खास खबर है उन श्रोताओं के लिए जो कि एमपीपीएससी का एग्ज़ाम देने वाले हैं। एमपीपीएससी की राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2026 में अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने के बाद 3 स्तर की जांचों से गुजरना होगा। आयोग ने नई त्रिस्तरीय जांच व्यवस्था लागू की है। अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने के 90 मिनट पहले केंद्र पर पहुंचना जरूरी होगा। ये परीक्षा 7 से 12 सितंबर तक चलेगी। इसके अलावा अब जो बात मैं आपको बताने वाली हूँ वो बात लगभग सभी के लिए है। यदि आप कोई वाहन चलाते हैं, आपका अपना कोई वाहन है, तो खास तौर पर आपके लिए बिना बीमा वाले वाहनों को पेट्रोल डीजल अब नहीं मिलेगा। सरकार आने वाले दिनों में ये व्यवस्था करेगी। इसके लिए पेट्रोल पंपों पर मॉडर्न कैमरे लगेंगे, ये वाहन पर लगी नंबर प्लेटों को स्कैन करेंगे। वाहनों का बीमा ना होने पर डीजल नहीं देने के लिए पंप संचालकों को अलर्ट भेजा जाएगा। ये व्यवस्था पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत चुनिंदा जिलों में लागू होगी। इसके लिए ऐसे जिलों को चुना जाएगा जहां सबसे ज्यादा बिना बीमा वाले वाहन दौड़ रहे हैं। सड़क हादसे में कमी लाने के लिए भोपाल, इंदौर और उज्जैन में भी जीरो फर्टिलिटी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चलाया जाएगा। बहरहाल यदि वाहन के सारे पेपर्स ओके हैं और आप फिट हैं तो घूमने फिरने का आनंद पूरी तरह से लिया जा सकता है ना?

इसके साथ ही अब घड़ी का इशारा है कार्यक्रम यहीं खत्म करने का। तो हम समेटते हैं अपने इस कार्यक्रम को, कल फिर नई खबरों और नगमों को लेकर हाजिर होंगे आपके अपने इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग ग्वालियर।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब लीजिए प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में सुनिए अभी कुमार सरकार का सरोद वादन, राग है अहिर भैरव।

इसके साथ ही शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। इस कार्यक्रम में भी आप अभी कुमार सरकार का सरोदवादन सुन रहे थे। राग था अहिर भैरव और तबला संगतकार थे निसार हुसैन। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी, जिसे हम अपने भोपाल केंद्र से रिले करेंगे।

इंदौर नगर निगम ने शहर में सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करने और हरियाली बढ़ाने के लिए आधा किलो प्लास्टिक लाएं एक पौधा ले जाएं अभियान चलाया। 20 से 31 अगस्त तक चले इस अभियान में 4,644 नागरिकों 61 जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान 2,196 किलो प्लास्टिक जमा किया गया और प्लास्टिक देने वाले लोगों को 4,041 से ज्यादा अलग अलग प्रजातियों के पौधे बांटे गए। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के नगरीय विकास और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की मौजूदगी में बिजासन टेकरी के सामने वन विभाग की जमीन रमना में 50,000 पौधे लगाए गए। मंत्री ने बताया कि इस साल जिले में 21 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य है। इसके अलावा इंदौर ने एक स्थान पर बड़ी संख्या में पौधे लगाकर और 2 साल तक उनका संरक्षण कर उन्हें पेड़ बनाने का विश्व रिकॉर्ड भी बनाया है। रेवती रेंज में लगाए गए पौधों की गणना के बाद एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने 13,10,012 पेड़ होने की घोषणा की है। एक ही स्थान पर लाखों पौधे लगाकर उन्हें 2 साल तक संरक्षित करने का ये रिकॉर्ड है। इसी तरह इंदौर पुलिस ने जिले भर में नशे से दूरी है जरूरी 2.0 नाम से 15 दिन का जन जागरूकता अभियान चलाया। स्कूल कॉलेजों कोचिंग संस्थानों और बस्तियों में लोगों को नशे से दूर रहने के लिए जागरूक किया। अभियान के दौरान 8,534 पुलिसकर्मियों समाजसेवियों विद्यार्थियों और नागरिकों ने मानव श्रृंखला बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। इंदौर में विकास से जुड़ी एक बड़ी सौगात मिली। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लवकुश चौराहे पर 175 करोड़ रुपए की लागत से बने प्रदेश के पहले डबल लेयर फ्लाईओवर ब्रिज की

भुजा का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंहस्थ 2028 के दौरान ये फ्लाईओवर इंदौर उज्जैन मार्ग पर बढ़ते यातायात को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इंदौर जिले की फोटोयुक्त मतदाता सूची का वार्षिक पुनरीक्षण पूरा होने के बाद 27 जुलाई को अंतिम सूची प्रकाशित की गई। अंतिम सूची के अनुसार जिले में नगरीय निकाय और पंचायत क्षेत्रों को मिलाकर कुल 25,08,181 मतदाता हैं। इनमें 12,62,983 पुरुष, 12,45,93 महिलाएं और 105 अन्य मतदाता शामिल हैं। आम लोगों की शिकायतों और समस्याओं के जल्द समाधान के लिए जिले में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान चलाया जा रहा है। 7 अगस्त से शुरू हुआ यह अभियान 8 जनवरी 2027 तक चलेगा। इसके तहत हर शुक्रवार नगर निगम, नगर परिषद और जनपद पंचायत क्षेत्रों में शिविर लगाए जा रहे हैं। युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए जिला रोजगार कार्यालय, ITI और जिला उद्योग केंद्र ने मिलकर एक दिवसीय युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन किया। मेले में निजी क्षेत्र की 26 कंपनियों ने हिस्सा लिया और 531 अभ्यर्थियों का प्रारंभिक चयन किया गया। आपदा के समय लोगों को तुरंत मदद देने के लिए इंदौर जिले में 900 आपदा मित्र तैयार किए जाएंगे। पहले चरण में SDRF केंद्र पर 7 दिन का प्रशिक्षण आयोजित किया गया, जिनमें 150 आपदा मित्रों को प्रशिक्षण दिया गया। उन्हें प्राथमिक उपचार, CPR, खोज और बचाव, बाढ़ प्रबंधन, आग से बचाव के शुरुआती उपाय और घायलों को सुरक्षित स्थान तक पहुँचाने का प्रशिक्षण दिया गया। इंदौर जिला मुख्यालय पर इनहेंसिंग एक्सेस टू जस्टिस विषय पर 2 दिवसीय वेस्ट जोन रीजनल कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इसका शुभारंभ भारत के मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रमुख संरक्षक जस्टिस सूर्यकांत ने किया। इस दौरान विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाओं के हिंदी संस्करण और ब्रेल लिपि में गाइड का विमोचन किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में बच्चों से जुड़े न्याय कार्यक्रम और मध्यस्थता पर सर्टिफिकेट कोर्स भी शुरू किया गया। संगीत में रुचि रखने वाले युवाओं के लिए भी इंदौर में मौका है। जिला मुख्यालय स्थित शासकीय लता मंगेशकर संगीत महाविद्यालय में 10 सितंबर को संभागीय लता मंगेशकर सुगम संगीत प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता में 8 से 15 साल और 16 से 25 वर्ष की 2 आयु वर्गों में प्रतिभागी हिस्सा ले सकेंगे। इसके लिए 4 सितंबर तक आवेदन किए जा सकते हैं। इंदौर जिले में HIV/AIDS को लेकर भी 12 अगस्त से सघन जागरूकता अभियान 3.0 चलाया जा रहा है। 12 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान में लोगों को HIV संक्रमण के कारण, बचाव के तरीकों और जांच तथा इलाज की जानकारी दी जा रही है। जिले को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए जिला प्रशासन सुपोषण अभियान चला रहा है। अभियान के तहत कलेक्टर शिवम वर्मा ने गंभीर कुपोषित बच्चों के लिए 1,000 न्यूट्रिशन किट बांटी है। अभियान का उद्देश्य 6 महीने से 6 साल तक के गंभीर कुपोषित बच्चों के पोषण स्तर में सुधार कर उन्हें स्वस्थ और सामान्य श्रेणी में लाना है। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे इंदौर जिले की चिट्ठी। आलेख मनिंद्र दुबे का था, वाचन स्वर था दीपा सिंह का। ये आकाशवाणी भोपाल है, प्रस्तुत है कार्यक्रम।
1: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब लीजिए प्रस्तुत है फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश।

कलंक फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे श्रेया घोषाल और साथियों की आवाज़ों में। इस गीत को सुनना चाहा था हमारे श्रोता मित्रों ने न्यू बजरंग कॉलोनी गोलपहाड़िया लश्कर ग्वालियर से नेत्राम गोड़िया, सरोज गोड़िया, शशि कुमार गोड़िया, भावना गोड़िया, नीरज गोड़िया, अर्चना गोड़िया, आध्या, श्रेया और दिव्यांशु। मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा बिरड़ी से नानाजी लामसे, मीना लामसे, तेजस लामसे, जया लामसे और हर्षिता लामसे, ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और उनके परिवार के सभी सदस्य, शिवाजी नगर वड़ाली से राजेश खोबरखेड़े, शिवसागर खोबरखेड़े, इंद्रताई खोबरखेड़े, छगुलीताई खोबरखेड़े, खांडवी बुलढाणा से दीपाली रामधड़ी, स्वराज रामधड़ी, थिलोरी अमरावती से सुनैना पवन भोंडे और तनुज पवन भोंडे, पाकुड़ झारखंड

से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, केसु भगत, अर्णव आनंद, सत्यम आनंद, बोहड़ागाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत,

रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, वर्षा सुमन, भानुप्रिया, मेघा राशि और माधुरी किरण। कार्यक्रम का अगला गीत सुनने की फरमाइश की है उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश और गीतिका। जींद हरियाणा से जसविंदर सिंह अरोड़ा, जतिंदर अरोड़ा, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर। हिंदुस्तान रेडियो मित्र बन्ने बुजुर्ग, पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा, आशीष विश्वकर्मा। जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले और प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवनकर, निर्मला और विशाल। मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान और आशीष। तेलंगाना भोंगीर से मोहम्मद बुरहानुद्दीन, फजान लल्ला, फरहान लल्ला और उनके परिवार के सभी सदस्य। पूर्णा जंक्शन मस्तानपुर से अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतन भगत और सुलोचना भगत। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोध, निखिल कांगड़ा और तन्वी बोट। जिला खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बोड़ाना। सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, रितु और मुकेश जगताप। सेक्टर 5 कुड़ी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान और बेबी गर्वी। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म रहना है तेरे दिल में का ये गीत प्रीति, पिंकी और शेखर की आवाजों में।

रेडी फिल्म का ये गीत लीजिए, सुनिए केके और तुलसी कुमार की आवाज़ों में। इस गीत को सुनना चाहा है हमारे इन श्रोता मित्रों ने, कोल सिटी बरकाकाना से अफजल ताज, शाहिन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, निप्पी साहनी और उनके परिवार के सभी सदस्य, समस्तीपुर बिहार से मीरा सिंह, ज्योति सिंह, रोहतास बिहार से सोनम सिंह और अनामिका सिंह, बीड शहर महाराष्ट्र से नंद किशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे और जयश्री महत्रे, अंजलि करवा, बाला साहब करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय और उनके परिवार के सभी सदस्य, अनारकली बाजार जगराओं पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक और विनोद पुरी, गांधी चौक पंजाब से मीका जयदेव और उनके परिवार के सभी सदस्य, कभी रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहार बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामोरिया, अजय देव तामोरिया, तुषार से देव तामोरिया, डॉली बेबी पूजा तामोरिया, राधिका और प्रभा देवी तामोरिया, सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा और सोनम वर्मा, टोरूवाला जिला नवा शहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत थांदी, डॉक्टर प्रियम थांदी, बेबी वामिका और वाणी थांदी, नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर खुशनसीब, अब्दुल हक डावर और जिया हक डावर, भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी और उनके परिवार के सभी सदस्य।

0: दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे।
1: इतनी वफादारी, आजकल कौन सोचता है ये सब। जीने के हैं चार दिन तो जियो जी भर के।
2: तुम्हें पता नहीं है शायद, संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंधों से HIV एड्स और यौन संक्रमण का खतरा सबसे अधिक होता है। इसीलिए वफादारी बहुत जरूरी है और कंडोम का उपयोग भी स्वस्थ यौन व्यवहार के लिए जरूरी है। उससे HIV एड्स के साथ ही यौन संक्रमणों और अनचाहे गर्भ से भी सुरक्षा मिलती है, समझे?
1: हाँ भाई समझा।
2: तो संयम, वफादारी और कंडोम अपनाओ, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। और हाँ, अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें।
3: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
4: रामलीला फिल्म का ये गीत लीजिए, सुनिए साहिल हाड़ा की आवाज में। इस गीत को सुनना चाहा है कोपर गांव से सुरेश मालोदे, वर्षा मालोदे, शेवगांव से श्रीराम गोंडली और उषा गोंडली, नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, रॉबिन राणा, सनावत से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा और राजकुमार बोड़ाना, ऑरेंज सिटी नागपुर से बिट्ठल जाधव, अनसुईया जाधव और पवन राजे जाधव, छत्रपति संभाजी नगर से मंगेश इंगली, संध्या इंगली और स्वराज विराज।

आज लोरमी चचेड़ी छत्तीसगढ़ से कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज मरावी और ऋषभ मरावी, बुक बुड़वा पथरिया छत्तीसगढ़ से नरेंद्र नेताम और कुसुम नेताम, धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, अंशिका, आदित्य और अंजलि जंघेल, लोहगढ़ ठगुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत गिल, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह और अविराज सिंह, जिला सिरसा हरियाणा से सतवीर सिंह बजरनिया, देवेंद्र, राजपाल, अभिषेक, योगेश, पूजा, आरजू और नव्या, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कलका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज, धनोरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और अयान बाबू, सहावर रोड गंजडुंडवारा से मोहम्मद उस्मान अंसारी, मोहम्मद कलीम अंसारी और शमसुल कमर राही, उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खेरवाल, कमला रानी, गीतिका और भानु प्रकाश, ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सैयद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सरफराज अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और उनके परिवार के सभी सदस्य, फुल चिंचोली तालुका पंढरपुर से जाकिर मुलानी, सुमैया मुलानी, सुबन मुलानी, समीर मुलानी, सलमा मुलानी, मुमताज मुलानी, दिलशाद मुलानी, नसीर मुलानी, बानू भी मुलानी, बादशाह मुलानी और उनके परिवार के सभी सदस्य, ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जमुना देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, बीबी आराध्या और उनके परिवार के सभी सदस्य, पश्चिम सिंहभूम चाईबासा झारखंड से शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल गोप, शिवांश गोप, संगीता गोप, लिपि गोप और दीपाली गोप, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेश्वरपुरी ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी।

कहीं प्यार ना हो जाए। आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत अलका याग्निक और कुमार शानू की आवाज़ों में। इस गीत को सुनने की फरमाइश की है नांदेड़ से प्रकाश जैन, लातूर से संगीता जैन, सूरज जैन और पीआर जैन, नेहरू चौक पैठण से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता जाधव, आरती पूजा प्रसाद जाधव, सोनल जाधव, बेबी सिया जाधव, जालना शहर से सोमनाथ जाधव, गीता जाधव, ओम जाधव, सुभाष जाधव, चंदन जाधव, एकनाथ जाधव और संगीता जाधव, कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा, सुनीता शिंदे, यशराज शिंदे, प्रशांत शिंदे, ऋषि शिंदे, कृष्णा घोड़के, रोहिदास चौक पंढरपुर शहर से, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव, पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू और सीमा साहू, ग्राम लोहेडी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र अरविंद, रागिनी रेनू रिया, दिव्यांशी आराधना, रोनिका यादव, चंद्रेश गुहर और सुनील पाठक, कंवर कॉलोनी बड़वा जिला खरगोन मध्य प्रदेश से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली और उनके परिवार के सभी सदस्य, अडार नांदघाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी भूपेश और दीपेश वर्मा, नई बस्ती गजडुंडवारा से मोहम्मद यासिन हाशमी, नजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ हाशमी, मोहम्मद तैमूर हाशमी और मोहम्मद कलीम अंसारी, पटिया याली रोड गजडुंडवारा से एम खलील कुरैशी, नुसरत बेगम, एजाद कुरैशी और बेबी आरिबा हबीबा। आइए सुनते हैं आपकी पसंद पर ये गीत।

कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय, मुक्काम पोस्ट कालेगांव जफाराबाद से श्री सुधाकर राजे जाधव देशमुख, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव देशमुख, जगुताई राजे जाधव देशमुख, कुमार संचित देशमुख, प्रथमेश सर्वत, हर्षदा सानवी और प्रणाली देशमुख, दंतरेंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा, मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा, कुंडलवाणी महाराष्ट्र से गंगाधर सावनकर, विजयलक्ष्मी सावनकर, राजेश, राकेश और ऋषिता, कुंभर गली कोलगांव से पांडु चंदन, उषा चंदन, रानी चंदन, प्रतीक्षा चंदन, अभिषेक चंदन, सार्थक चंदन, प्रथमेश चंदन, संतोष चंदन, पांडुरंग कुंभार, सुनीता शिंदे, यशराज शिंदे, प्रशांत शिंदे, ऋषि शिंदे, कृष्णा घोड़की, रोहिदास चौक पांडुपुर शहर से, कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा और सीटी दीवाना, समस्तीपुर बिहार से मीरा सिंह, ज्योति सिंह, रोहतास बिहार से सोनम सिंह और अनामिका सिंह, पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति वर्मा और शिवांश वर्मा, छत्रपति संभाजीनगर से मंगेश इंगले, संध्या इंगले और स्वराज इंगले, मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान तायड़े, मोहन करांगले, जिगांव विदर्भ से वसंतराव भोजने और पीएस नभनकर। आप सभी सुनना चाहते हैं खूबसूरत फिल्म का ये गीत, अभिजीत और नीरज पंडित की आवाज़ों में।

आर आर आर। आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत राग पटेल की आवाज़ में। इस गीत को सुना चाहा है सौदागर संतर मुरार से गुड्डू मिश्रा, निशा मिश्रा, ग्राम संदलपुर आत्री से कालीचरण यादव, दीपक कुमार यादव, चांदनी यादव और उर्मिला देवी यादव, प्रमिलागंज आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई वर्मा, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, प्रियांश वर्मा और ऋषि वर्मा, नया पारा भिरई से श्री बसंत कुमार सूर्यवंशी, श्रीमती सरोज सूर्यवंशी, ईशराज सूर्यवंशी, श्री चंद्रकांत सूर्यवंशी और कुमारी प्राचीन सूर्यवंशी, बटिंडा रोड डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग, गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित।

कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए फिल्म रॉकी हैंडसम का ये गीत अंकित तिवारी की आवाज़ में। इस गीत को सुनना चाहा है रिग्नी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, दंतरेंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाब दास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू और चिरडोंगरी पिपरिया से दुर्गाराम साहू ने।

0: इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश अब संपन्न होता है। मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आयोजित 26वें शंघाई सहयोग संगठन में संबोधित करेंगे। शंघाई सहयोग संगठन की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित एसईसीओ बैठक में भारत, चीन और रूस सहित 10 अन्य सदस्य देश शामिल हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP में 7.8% की वृद्धि दर्ज हुई है। श्री मोदी ने कहा कि वृद्धि 140 करोड़ देशवासियों की मेहनत और सामूहिक संकल्प का परिणाम है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि आर्थिक विकास की इस गति को बनाए रखने के लिए आत्मनिर्भर भारत बनाना जरूरी है। उन्होंने देशवासियों से स्वदेशी अपनाने, वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने, भारत में बने उत्पादों का समर्थन करने का आग्रह किया। अमेरिका के एशवेले में आयोजित हो रही 2 दिवसीय G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर्स की बैठक का आज अंतिम दिन है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं। नेपाल के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार बाढ़ से 939 लोगों की मौत हो चुकी है। 3,925 लोग लापता हैं। इन लापता लोगों में 592 विदेशी नागरिक शामिल हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज उमरिया बालाघाट में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। और फुटबॉल में AFC Under-20 फुटबॉल एशियाई कप की क्वालिफायर में भारत ने सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
2: ये आकाशवाणी भोपाल है, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के कार्यक्रम का पहला गीत आपके लिए प्रस्तुत है श्रेया घोषाल और सोनू निगम की आवाज़ में, फिल्म वजीर से।

शांतनु मैत्रा का संगीत विधु विनोद चोपड़ा के लिखे बोल, श्रेया घोषाल और सोनू निगम की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म वजीर से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है शाहिद माल्या की आवाज़ में फिल्म उड़ता पंजाब से।

अमित त्रिवेदी का संगीत लेट श्री शिव कुमार बटालवी के लिखे बोल, शाहिद माल्या की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म उड़ता पंजाब से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है पिपॉ की आवाज़ में फिल्म सुल्तान से।

विशाल शेखर का संगीत इरशाद कामिल के लिखे बोल। पैपों की आवाज़ में आपने गीत सुना फिल्म सुल्तान से। कार्यक्रम है फिल्म संगीत का और अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है फिल्म तुम मिंटू से। आवाज़ है अरिजीत सिंह और तुलसी कुमार की।

मनोज मुंतशिर के लिखे, मनोज मुंतशिर का संगीत शकील आज़मी के लिखे बोल, अरिजीत सिंह और तुलसी कुमार की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म तुम बिन टू से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है अरिजीत सिंह और पलक मुछाल की आवाज़ में फिल्म रुस्तम से।

जीत गांगुली का संगीत मनोज मुंतशिर के लिखे बोल, अरिजीत सिंह और पलक मुछाल की आवाज़ में एक गीत सुना आपने फिल्म रुस्तम से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है अरिजीत सिंह की आवाज़ में फिल्म राज रिबूट से।

जीत गांगुली का संगीत कौसर मुनीर के लिखे बोल, अरिजीत सिंह की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म रास रिबूट से। कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत अरिजीत सिंह की ही आवाज़ में सुनिए द स्काई इज पिंक से।

प्रीतम का संगीत गुलजार के लिखे बोल अरिजीत सिंह की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म द स्काई स्पिंक से, और इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की गरिमामयी उपस्थिति में सशस्त्र सीमा बल द्वारा आयोजित समारोह का सजीव प्रसारण कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: सीमाबल एसएसबी के अलंकरण समारोह का सजीव विवरण सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं अतर सईद और डी एंड्रू। आइए विज्ञान भवन चलें।
1: नमस्कार, मैं अतर सईद अपने सहयोगी कमेंटेटर डी एंड्रू के साथ आकाशवाणी की ओर से विज्ञान भवन नई दिल्ली में सशस्त्र सीमा बल द्वारा आयोजित सशस्त्र सीमा बल अलंकरण समारोह में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर सशस्त्र सीमा बल के जवानों की उत्कृष्ट सेवाओं और उपलब्धियों को सम्मानित किया जाएगा। आज का ये अलंकरण समारोह माननीय केंद्रीय गृह सचिव श्री गोविंद मोहन की अध्यक्षता में उनकी गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न होने जा रहा है। हम देख पा रहे हैं कि गणमान्य व्यक्तियों का आगमन का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो गया है। एंड्रयू,
2: आज का दिन हमारे बल के लिए, in fact, the chief guest, Central Home Secretary, श्री गोविंद मोहन has arrived and seated next to him are Mr. Anish Dayal, the Deputy National Security Advisor, and Dr. Rajendra Kumar, the Secretary of Border Management. And today they are celebrating the investiture ceremony of the Sashastra Seema Bal, and this is being held in the plenary hall of Vigyan Bhavan. The hall is packed with personnel of the SSB in their khaki uniforms.
1: बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण और गौरवपूर्ण अवसर है जब राष्ट्र की सुरक्षा, सीमाओं की रक्षा और देश सेवा के लिए समर्पित सशस्त्र सीमा बल के वीर अधिकारियों और जवानों की उत्कृष्ट सेवाओं, साहस और उपलब्धियों को सम्मानित किया जाएगा, उन्हें अलंकृत किया जाएगा। समारोह में माननीय केंद्रीय गृह सचिव श्री गोविंद मोहन जी का आगमन यहाँ पर हो चुका है। श्रोताओं के लिए जानना भी महत्वपूर्ण है कि सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी देश के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सशस्त्र सीमा बल की स्थापना वर्ष 1963 में विशेष सेवा ब्यूरो, स्पेशल सर्विस ब्यूरो के रूप में की गई थी। बाद में इसे भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई और भारत भूटान सीमा की सुरक्षा का दायित्व भी।

0: That was the anthem of the Sashastra Seema Bal, or the SSB song. And now the welcome address by the Director General, Sashastra Seema Bal, Shri Sanjay Singhal, IPS officer of the 1993 branch.
1: हम देख पा रहे हैं कि आज के मुख्य अतिथि महोदय माननीय केंद्रीय गृह सचिव इस समय यहां पर मौजूद हैं. उनको उनका सम्मान किया जा रहा है, उनका आगमन का आभार व्यक्त किया जा रहा है, उन्हें पौधा भेंट किया जा रहा है और यहां पर उपस्थित जन तालियां बजाकर उनका अभिवादन कर रहे हैं. सभी गणमान्य व्यक्ति एक बार फिर अपने आसन पर बैठते हुए
2: तत्वों से लोहा लेने तक सशस्त्र सीमा बल राष्ट्र की सुरक्षा का एक मजबूत स्तंभ है. अलंकरण समारोह के इस विशेष अवसर पर भारत के केंद्रीय गृह सचिव श्री गोविंद मोहन जी की उपस्थिति न केवल इस स्तंभ को और अधिक मजबूती प्रदान कर रहा है, बल्कि आज समस्त सशस्त्र सीमा बल आपकी उपस्थिति से अभिभूत है. महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल श्री संजय सिंघल सशस्त्र सीमा बल परिवार के इसी भाव को व्यक्त करने तथा स्वागत संबोधन हेतु सादर आमंत्रित हैं.
1: और अब सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक श्री संजय सिंघल द्वारा स्वागत संबोधन हम सुन पाएंगे. माइक्रोफोन पर श्री संजय सिंघल.
3: आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह सचिव श्री गोविंद मोहन जी, सचिव सीमा प्रबंधन श्री राजेंद्र कुमार जी, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों एवं अन्य संगठनों के महानिदेशकगण, सशस्त्र सीमा बल के पूर्व महानिदेशकगण, विशिष्ट अतिथिगण, आज अलंकृत होने वाले सशस्त्र सीमा बल के वीर एवं समर्पित पदक विजेता, उनके गौरवान्वित परिवारीजन, एसएसबी परिवार के सभी सदस्यगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आए हमारे साथी देवियों और सज्जनों, आप सभी का सशस्त्र सीमा बल की ओर से मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ. मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि अपरिहार्य कारणवश माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी इस कार्यक्रम में उपस्थित होने में असमर्थ हैं, परंतु उन्होंने वीरता पदक के अलंकरण अधिकारियों, कर्मियों और परिवारजनों को एवं समस्त एसएसबी परिवार हेतु अपनी हार्दिक शुभेच्छाएँ प्रेषित की हैं. मैं समस्त एसएसबी परिवार की ओर से माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का उनकी शुभेच्छा हेतु हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं. मैं माननीय केंद्रीय गृह सचिव महोदय का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपनी व्यस्तताओं के बीच इस कार्यक्रम के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया और अपनी उपस्थिति से हमारे अधिकारियों, जवानों और उनके परिवारों का उत्साहवर्धन किया. आज हमारे लिए गर्व और प्रेरणा का अवसर है. आज न केवल हमारे 18 साथियों को वीरता एवं पराक्रम के सर्वोच्च समर्पण के लिए एवं 5 साथियों को डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए सम्मानित किया जाएगा, बल्कि राष्ट्र सेवा की हमारी प्रतिबद्धता को सशक्त रूप से आगे बढ़ाने वाली 248 करोड़ रुपए लागत की आधारभूत संरचना परियोजनाओं का भी आभासी माध्यम से महोदय द्वारा लोकार्पण किया जाएगा. सशस्त्र सीमा बल की स्थापना वर्ष 1963 में भारत चीन युद्ध के पश्चात हुई थी और वर्ष 2001 में बल को भारत नेपाल तथा वर्ष 2004 में भारत भूटान की कुल 2450 किलोमीटर लंबी खुली अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सुरक्षा का दायित्व सौंपा गया. इन सीमाओं की अपनी विशिष्ट चुनौतियां हैं. भारत नेपाल सीमा पर प्रतिदिन लगभग 46,000 वाहन और 3.25 लाख से अधिक व्यक्ति तथा भारत भूटान सीमा पर लगभग 8,000 वाहन और एवं 50,000 से अधिक व्यक्तियों का आवागमन होता है. इतनी बड़ी संख्या में वैध आवागमन के बीच सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए सुरक्षा, संवेदनशीलता और मित्र संबंधों के बीच संतुलन बनाए रखना हमारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है. हमारे अधिकारी और जवान मादक पदार्थों, हथियारों, जाली मुद्रा, मानव तस्करी, अवैध आवर्जन तथा अन्य संगठित अपराधों के विरुद्ध निरंतर प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं. इसके साथ ही सशस्त्र सीमा बल आंतरिक सुरक्षा, वामपंथी उग्रवाद, CI ऑपरेशंस, इलेक्शन ड्यूटी, कानून व्यवस्था तथा आपदा प्रबंधन से संबंधित विभिन्न दायित्वों में भी महत्वपूर्ण

0: योगदान दे रहा है। वर्तमान में नेपाल में आई भयावह त्रासदी से निपटने के लिए बिहार तथा उत्तर प्रदेश में भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र में एसएसबी के बचाव व राहत दल अपने दायित्वों का पूरी निष्ठा से निर्वहन कर रहे हैं। आज सुरक्षा का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। हाइब्रिड वारफेयर, साइबर एवं इंफॉर्मेशन वारफेयर, ड्रोन आधारित खतरे और तस्करी के नए नए तौर तरीके हमारे सामने नई चुनौतियां प्रस्तुत कर रहे हैं। इन चुनौतियों से प्रभावी रूप से निपटने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय गृह मंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व तथा गृह मंत्रालय के मार्गदर्शन में सशस्त्र सीमा बल का आधुनिकीकरण निरंतर जारी है। बल के तकनीकी आधुनिकीकरण के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति की है। आधुनिक निगरानी प्रणालियों, आधुनिक संचार साधनों, ड्रोन एवं अन्य तकनीकी उपकरणों के प्रभावी उपयोग के माध्यम से हमारी परिचालन क्षमता को निरंतर मजबूत किया जा रहा है। बदलती सुरक्षा चुनौतियों के अनुरूप तकनीकी दक्षता और आधुनिक साधनों का समावेश हमारी प्राथमिकताओं में है। सीमावर्ती क्षेत्र में विन हार्ट्स एंड माइंड हमारी कार्य संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सिविक एक्शन प्लान के माध्यम से हम सीमावर्ती नागरिकों तक सुरक्षा के साथ साथ विकास और विश्वास का संदेश पहुंचाने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत हमारा लक्ष्य केवल सीमाओं को सुरक्षित करना ही नहीं बल्कि सुरक्षित सीमा, समृद्ध सीमांत, सजग समाज के संकल्प के साथ सीमावर्ती क्षेत्रों का समग्र विकास सुनिश्चित करते हुए एक जागरूक और सशक्त सीमावर्ती समाज का निर्माण करना भी है। एसएसबी ने विगत 5 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में 28 स्वर्ण, 25 रजत एवं 40 कांस्य पदक समेत कुल 93 पदक जीते हैं। खेलों को बढ़ावा देने के लिए एवं खिलाड़ियों के प्रोत्साहन करने के लिए विशेष प्रदर्शन करने वाले 19 खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन भी दिया गया है। पर्यावरण संरक्षण, सौर ऊर्जा के उपयोग, नशा मुक्ति भारत अभियान, प्लास्टिक मुक्त भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत तथा आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में भी एसएसबी निरंतर सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। माननीय गृह मंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व एवं गृह विभाग के मार्गदर्शन में सीमा सुरक्षा, सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास, आधारभूत सुविधाओं के विस्तार, जल कल्याण, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के आधुनिकीकरण और कार्मिक कल्याण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की जा रही हैं। सशस्त्र सीमा बल इन पहलों के प्रभावी क्रियान्वयन में अपना जिम्मेदारी के अनुरूप पूरी निष्ठा एवं प्रतिबद्धता के साथ योगदान दे रहा है। आज इस अवसर पर मैं गृह मंत्रालय के प्रति भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ जिनके निरंतर मार्गदर्शन, सहयोग और सहायता के कारण ही सशस्त्र सीमा बल आज एक आधुनिक, प्रोफेशनल और जन केंद्रित सीमा प्रहरी के रूप में उभरा है। अंत में मैं पुनः गृह सचिव महोदय का एसएसबी परिवार की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आपकी गर्मयमयी उपस्थिति और प्रेरणादायक मार्गदर्शन से आज के इस अवसर को विशेष बना दिया है। आज यहाँ उपस्थित सभी अतिथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय एसएसबी।
1: That was a welcome address by the Director General, Shri Sanjay Singhal, an IPS officer of the 1993 cadre. And now, we have the online inauguration of the SSB projects by the Honorable Chief Guest, the Home Secretary, Shri Govind Mohan. And this will be followed by unveiling of the SSB e-magazine.
2: बहुत ही गौरव के क्षण यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सभागार जवानों से खचाखच भरा हुआ है और गणमान्य व्यक्ति मंचासीन। इस समय हम देख पा रहे हैं कि समारोह के मुख्य अतिथि और माननीय केंद्रीय गृह सचिव भारत सरकार श्री गोविंद मोहन महोदय एसएसबी परियोजनाओं का ऑनलाइन माध्यम से उद्घाटन कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य।
1: Press the button and there it comes on the screen right behind them and it has been inaugurated and what a beautiful sight it is over here with people clapping and of course the SSB
3: सशस्त्र सीमा बल परिसर फरीदाबाद हरियाणा में 440 अत्याधुनिक पृथक आवासीय भवन बनकर तैयार हैं। हर जरूरत का सम्मान करते हुए इस परिसर में टाइप 2 के 336 आवास, टाइप 3 के 96 आवास और अधिकारियों के लिए टाइप 4 के 8 विशिष्ट आवास, सोलर सिस्टम, वाटर हार्वेस्टिंग, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, सीसीटीवी सर्वेलेंस, मल्टी लेवल पार्किंग, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और एक भव्य मल्टीपर्पस हॉल के निर्माण का कार्य 170 करोड़ रुपए की लागत से पूर्ण किया गया है। इसी क्रम में केंद्रीयकृत प्रशिक्षण केंद्र सपड़ी हिमाचल प्रदेश में अधीनस्थ अधिकारी आवासीय मैस तथा टाइप 2 के 48, टाइप 3 के 6 एवं टाइप 5 के 3 आवासीय भवनों के निर्माण का कार्य 31 करोड़ 69 लाख रुपए की लागत से पूर्ण किया गया है। इसके अतिरिक्त 30वीं वाहिनी दिरांग अरुणाचल प्रदेश में टाइप 2 के 80 आवास एवं टाइप 3 के 28 आवास के निर्माण का कार्य 46 करोड़ 12 लाख रुपए की लागत से पूर्ण किया गया है। यह उपलब्धि माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व एवं निरंतर मार्गदर्शन का प्रत्यक्ष परिणाम है। इन परियोजनाओं के सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर सशस्त्र सीमा बल, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता है।
2: तो हमने देखा कि एसएसबी परियोजनाओं का ऑनलाइन माध्यम से उद्घाटन यहां पर हुआ माननीय केंद्रीय गृह सचिव द्वारा। और अब सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी की ई स्मारिका का अनावरण माननीय श्री गोविंद मोहन जी के कर कमलों से किया जा रहा है। बहुत ही शानदार दृश्य यहां पर नजर आ रहा है विज्ञान भवन नई दिल्ली के इस सभागार में।
4: And now, the chief guest, the secretary, he is going to unveil the e-magazine of the SSB.
2: SSB e-smarika ka anavaran is samay screen par patrika ke prishth ulatte hue. बहुत ही गौरवशाली क्षण यहाँ पर है। सशस्त्र सीमा बल का आदर्श वाक्य है सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व, और यही भावना यहाँ पर नजर आ रही है। यही भावना बल के कार्यों में नजर देती है। सीमा की सुरक्षा के साथ साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के साथ विश्वास, सहयोग और सौहार्द का संबंध बल यहाँ पर रखता है।
4: That was the unveiling of the SSB e-magazine, and now we are going to start the investiture ceremony. And the Central Home Secretary, Shri Govind Mohan, he is the chief guest for this gathering over here. And he is going to give away the awards to the ones who have really done their yeoman work. And of course, for the selfless duty towards the safety of the country and of contribution towards the security of their motherland, that is India. And now it will be starting in a very short while. And of course, about 18 people are going to get the awards for the fantastic service which they have done for the safety of the country and of course the selfless contribution towards the security of their motherland.
2: असाधारण साहस, उत्कृष्ट सेवा और कर्तव्य के प्रति अदम्य निष्ठा का प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों और जवानों को सम्मानित किया जाना यकीनन पूरे बल के मनोबल को नई ऊंचाई प्रदान करता है।
5: 23 नवंबर 2020 छत्तीसगढ़ के उत्तर बस्तर कांकेर जिले के माटला रिजर्व फॉरेस्ट क्षेत्र में चल रही रावघाट रेलवे लाइन परियोजना के पास सीओबी कुसरुंडा 33वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल केवटी के 30 जवानों की रोड सिक्योरिटी ऑपरेशन पार्टी पर लगभग 130 से 150 नक्सलियों ने हथियार व गोला बारूद लूटने के उद्देश्य से घात लगाकर हमला किया, जिसके उपरांत तत्काल ही उप निरीक्षक चंद्रमोनि मजुमदार व उनकी टीम ने अत्यंत दिलेरी के साथ बेहतर रणनीतिक समझ का परिचय देते हुए न सिर्फ उस हमले को विफल किया बल्कि 3 दुर्दांत नक्सलियों को मार गिराया। इनके अदम्य साहस, दृढ़ता और असाधारण कार्य हेतु इन्हें वीरता पदक से सम्मानित किया जाता है।
6: इसी क्रम में दिवंगत मुख्य आरक्षी रवि शर्मा, जिन्होंने इस ऑपरेशन के दौरान अदम्य साहस का परिचय दिया जिस हेतु मरणोपरांत वीरता पदक हेतु आमंत्रित हैं, दिवंगत मुख्य आरक्षी रवि शर्मा की धर्मपत्नी श्रीमती रजनी शर्मा।

0: every person who's
1: Sahaya Kup Nirikshak Aman Kumar
0: scroll and a medal on their even though they retired, and they walk with the real attention. They gave the salute, the chief guest, and he puts the medal on their chest. Yeah. And he gives them the scroll and they salute the chief guest, the Home Secretary, and they walk back. One person was given posthumously, whose wife came and collected the scroll.
1: Mukhya Arakshi Narendra.
2: Kendri Krihi Sachiv Bharat Sarkar Shri Govind Mohan ki garima mein upasthiti mein unke karkamalon se yahan par alankaran samaroh chal raha hai. Karkal dhwani se yahan par upasthit jawan utsah badhate hue sadhiv kadmon se मंच
3: दिनांक 11 फरवरी 2021 को बिहार के लखी सराय के चिरोन कुंडासी के घने व दुर्गम जंगलों में नक्सली गतिविधि के संदर्भ में पुख्ता खुफिया जानकारी पर कार्यवाही करते हुए उप कमांडेंट हेमंत कुमार और उनकी टीम ने उत्कृष्ट शौर्य रणनीतिक समझ और साहस का परिचय देते हुए एक सशस्त्र नक्सली को मार गिराया व एक इंसास राइफल तथा भारी मात्रा में गोला बारूद के बरामदगी में सफलता हासिल की. उप कमांडेंट हेमंत कुमार व उनकी टीम के चार सदस्यों को उनके असाधारण वीरता, अदम्य साहस और शौर्य को सम्मान देते हुए वीरता पदक से सम्मानित किया जाता है.
2: यह क्षण केवल
1: आमंत्रित है उप कमांडेंट हेमंत कुमार
2: बल्कि उनके परिवार, उनके साथियों और पूरे सशस्त्र सीमा बल के लिए गर्व का क्षण है. वर्दी केवल एक परिधान नहीं बल्कि राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी, अनुशासन और समर्पण का प्रतीक है. सभागार में उपस्थित जवान करतल ध्वनि से स्वागत करते हुए उत्साह वर्धन करते हुए
0: द मोटो ऑफ एसएसबी इज सर्विस
1: सहायक कमांडेंट सैयद अफसर
0: ब्रदरहुड दे रिस्क देयर लाइफ दे फाइट अगेंस्ट द नक्सलाइट्स हु आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स बट फॉर देम Service comes first, risking the life for the safety of the country. And for that, they are being awarded today. They are getting a scroll and a medal.
2: Seema par tainat hamare jawanon ka jeevan kathin
1: parishtiyon ke beech Arakshi Raut Yogendra Ramchandra
2: Nirantar satarkata aur seva ka jeevan hai. Alankaran samaroh yahan par Vigyan Bhavan ke sabhagar mein garv ka kshan गौरवशाली क्षण तमाम जवानों के लिए, सशस्त्र सीमा बल के लिए और हम सब के लिए.
1: आरक्षी जुनमुनि बरुआ
2: सदे हुए कदमों से सीना ताने हुए ये जवान अपना पुरस्कार ग्रहण करने के लिए केंद्रीय गृह सचिव के सामने मेडल और प्रशस्ति पत्र उनके हाथ में छायाकार इन क्षणों को कहते हुए
1: आरक्षी रितेश कोंगारी
0: दिस सेरेमनी इज हेल्ड एवरी ईयर टू ऑनर द पर्सनल फॉर देयर सेल्फलेस कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द सिक्योरिटी ऑफ देयर मदरलैंड एंड द हॉल ऑफ कोर्स इट्स पैक्ड यू कैन सी इन फैक्ट यू कैन जस्ट इफ यू वर हियर यू वुड हैव रियली एंजॉयड सीइंग द साइट ओवर हियर ऑल इन द खाकी यूनिफॉर्म्स सिटिंग इन अ वेरी डिसिप्लिन्ड मैनर ऑफ कोर्स व्हेन यू आर इन द आर्मी लाइफ यू ऑलवेज लीड अ वेरी डिसिप्लिन्ड लाइफ
1: दिनांक 8 जून 2022 16वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल को विभिन्न स्रोतों से पुलिस स्टेशन गढ़ी के वीरगोड़ा गांव के अंतर्गत 4 से 5 नक्सलियों के एक समूह के उपस्थिति के संदर्भ में खुफिया जानकारी प्राप्त हुई, जिस पर कार्रवाई करते हुए कमांडेंट 16वीं वाहिनी के मार्गदर्शन में निरीक्षक शिवशंकर कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्राप्त आसूचना के आधार पर नक्सलियों के संभावित स्थान पर दबिश दी और विपरीत परिस्थितियों में भारी गोलाबारी के बीच अपने जान की परवाह न करते हुए एक कुख्यात नक्सली मतलू तुरी को मार गिराया व भारी मात्रा में हथियार व गोला बारूद बरामद किया. उनके अदम्य साहस और पराक्रम को सम्मान देते हुए निरीक्षक शिवशंकर कुमार व उनकी टीम के 4 सदस्यों को वीरता पदक से सम्मानित किया जाता है. आमंत्रित है निरीक्षक शिवशंकर कुमार.

0: उप निरीक्षक कुमारजीत।
1: कुमारजीत जी सदैव कदमों से मंच की ओर। कुमारजीत सिंह को पदक पहनाते हुए मुख्य अतिथि महोदय, सीने पर पदक, हाथ में प्रशस्ति पत्र और दिल में भारत की रक्षा का प्राण साफ नजर आ रहा है।
0: मुख्य आरक्षी अनिल कुमार कुम्हार।
2: अनिल कुमार, he walks to the place where the secretary is standing, and of course he salutes, gives a crisp salute, and then he takes the award on his chest, and now the scroll is handed over to him, gives a salute to the home secretary, and marches out. In fact, the way they march.
0: Arakshi Ziaul Haq Ansari.
1: और अब जियाउल हक अंसारी मंच की ओर अग्रसर, सदैव कदमों से केंद्रीय गृह सचिव के सामने आज के मुख्य अतिथि के सम्मुख सीना ताने हुए, सीने पर पदक सजा, हाथ में प्रशस्ति पत्र और अद्भुत दृश्य को कैद करते हुए यहाँ पर छायाकार हाथ मिलाते हुए।
3: सितंबर 2022 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बारामूला जम्मू कश्मीर से ग्राम यादीपुरा पत्तन में खूंखार आतंकवादियों के छिपे होने की गुप्त सूचना प्राप्त हुई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अनुविभागीय पुलिस अधिकारी द्वारा तत्काल अतिरिक्त परिचालन बल की मांग की गई। तत्कालीन कमांडेंट मुकेश कुमार के कुशल नेतृत्व में त्वरित विचार विमर्श के पश्चात एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण और जोखिम भरे अभियान की व्यूह रचना की गई। 29 राष्ट्रीय राइफल्स एवं विशेष अभियान समूह के साथ तालमेल बिठाते हुए अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियों, निरंतर मंडराते खतरे और दुश्मनों की ओर से हो रही अंधाधुंध गोलाबारी के बीच श्री मुकेश कुमार और उनकी जाबाज टीम ने अदम्य साहस, श्रेष्ठ रणनीतिक सूझबूझ और अद्भुत युद्ध कौशल का परिचय दिया। मुठभेड़ के दौरान अपने जान की परवाह न करते हुए की गई इस सटीक और घातक जवाबी कार्रवाई में भारी हथियारों से लैस दो कुख्यात आतंकवादियों यावर शफी भट्ट और आमिर हुसैन भट्ट को ढेर कर दिया गया। मौके से भारी मात्रा में स्वचालित हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया।
0: कर्तव्य पथ पर प्रदर्शित इस अदम्य साहस, अद्वितीय शौर्य और उत्कृष्ट नेतृत्व के लिए उप महानिरीक्षक श्री मुकेश कुमार एवं उनकी टीम के 3 सदस्यों को वीरता पदक से अलंकृत किया जाता है। आमंत्रित है उप महानिरीक्षक मुकेश कुमार।
1: वीरता पदक के लिए मुकेश कुमार और उनके 3 साथी इस समय मंच पर नजर आते हुए। मुकेश कुमार के सीने पर पदक टांगते हुए केंद्रीय गृह सचिव श्री गोविंद मोहन और सारे ही जवान कर्तव्य ध्वनि से स्वागत करते हुए अपने साथी का अद्भुत दृश्य यहां पर नजर आ रहा है।
0: उप कमांडेंट रणजीत सिंह।
2: द एसएसबी पर्सनल इनिशियली दे वर पुट ओनली फॉर द बॉर्डर ऑफ नेपाल एंड भूटान, बट ओवर द इयर्स एज टेररिज्म एंड ऑल द क्रॉस बॉर्डर प्रॉब्लम स्टार्टेड, देयर एरिया ऑफ कवरेज हैज बीन इंक्रीज्ड एंड दे आर कवरिंग ऑल द स्टेट्स व्हिच आर बॉर्डरिंग ऑन नेबरिंग कंट्रीज, दैट इज पाकिस्तान, चाइना एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बांग्लादेश एंड बर्मा।
0: मुख्य आरक्षी मेडिक्स रितेश शर्मा।
1: मंच पर उप कमांडेंट रणजीत सिंह के बाद अब मंच पर अग्रसर हमारे जवान, बहुत ही अद्भुत दृश्य यहां पर नजर आ रहा है।
0: आरक्षी मोहम्मद सैदुल्लाह मीर।
1: आरक्षी मोहम्मद सैदुल्लाह मीर। सैदुल्लाह मीर इस समय मंच की ओर अग्रसर, पदक प्राप्त करते हुए, पुरस्कृत होते हुए। इस सम्मान दरअसल एक जवान का नहीं बल्कि देश का सम्मान है, उन भावनाओं का सम्मान है जो भावनाएं
3: विशिष्ट सेवा के लिए
1: रक्षा करती हैं।
3: पदक से सम्मानित हैं डॉक्टर परेश सक्सेना, महानिदेशक नागरिक सुरक्षा बिहार।
2: बिहार से दिस इज मिस्टर परेश सक्सेना हु वॉक्स अप एंड द मेडल दैट दे आर गेटिंग, in fact it is a lifetime achievement for them, and the scroll, the commendation letter, I'm sure they'll definitely frame it and put it in the house that

0: remember it all their life, as long as they are alive. And what a wonderful sight it is over here. I mean, every moment of this program is being photographed, clicked away to glory. And I'm sure this is going to be a wonderful experience, lifetime experience for everyone over here.
1: और अब रतन सिंह जी इस समय मंच पर दरअसल आज प्रदान किया जा रहा प्रत्येक अलंकरण राष्ट्र की ओर से सेवा और समर्पण के प्रति सम्मान का प्रतीक है और ये भावना यहाँ पर नजर आती हुई साफ तौर पर विज्ञान भवन में प्रतिध्वनि से जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जा रहा है
2: श्री सोमित जोशी महानिरीक्षक
1: और अब सोमित जोशी अपना पुरस्कार ग्रहण करने के लिए मंच पर मौजूद मुख्य अतिथि के सम्मुख उनके सीने पर पदक और ये प्रशस्ति पत्र उनके हाथों में मुख्य सचिव श्री गोविंद मोहन इस समय
2: श्री वंदन सक्सेना महानिरीक्षक
0: मिस्टर वंदन सक्सेना ही वॉक्स ही कम्स फॉरवर्ड ही हैज द मेडल पुट ऑन हिज चेस्ट एंड सैल्यूट्स द होम सेक्रेटरी द चीफ गेस्ट and takes the scroll, the commendation letter, which he gets it in his hand. And I'm sure they're going to frame it, of course, as I said earlier. They'll frame it and put
2: Shri
0: it, hang
2: Jagdish
0: it in their house.
2: Ram, Up-Commandant.
1: Shri Jagdish Ram, Up-Commandant. Ab apna padak prapt karne hetu manch par maujood. Anushasan ke saath yahan par apne padak grahan karte hue jawan. सैल्यूट करते हुए केंद्रीय सचिव
2: धन्यवाद महोदय महानिदेशक महोदय से पुनः अनुरोध है कि विमाननीय मुख्य अतिथि महोदय को समस्त बलकर्मियों तथा उपस्थित जनसमूह को संबोधित करने के लिए आमंत्रित करने की कृपा करें
0: दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द इन्वेस्टिचर सेरेमनी एंड नाउ वी हैव फॉर यू द एड्रेस बाय द ऑनरेबल चीफ गेस्ट फॉर टुडे दैट इज श्री गोविंद मोहन द चीफ सेक्रेटरी ऑफ द होम मिनिस्ट्री
3: सर्वप्रथम मैं माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी का संदेश आप सबके समक्ष पढ़ना चाहूंगा मैं आरंभ करता हूं सशस्त्र सीमा बल के अलंकरण समारोह के अवसर पर बल के सभी जांबाज अधिकारियों जवानों पदक विजेताओं तथा उनके परिवारजनों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कुछ अपरिहार्य प्रतिबद्धताओं के कारण इस गरिमामय कार्यक्रम में मैं व्यक्तिगत रूप से आप सबके बीच उपस्थित नहीं हो सका हूं परंतु मेरी आत्मीय भावनाएं और शुभकामनाएं आपके साथ हैं नेपाल में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ में जान गंवाने वाले सभी लोगों को मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तथा शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं इस आपदा के दौरान एसएसबी मानवीय सहायता और बचाव कार्यों में अत्यंत सराहनीय भूमिका निभा रही है संकट की इस घड़ी में एसएसबी की त्वरित समन्वित और संवेदनशील कार्रवाई उसके ध्येय वाक्य सेवा सुरक्षा और बंधुत्व का जीवंत स्वरूप है राष्ट्र की सेवा करते हुए आज तक अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले एसएसबी के 51 वीर जवानों को मैं श्रद्धापूर्वक नमन भी करता हूं उनकी वीरता कर्तव्य निष्ठा और राष्ट्रभक्ति एसएसबी की अमूल्य विरासत है वीरता पदक और विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित हो रहे सभी अधिकारियों एवं जवानों को मैं हृदय से बधाई देता हूँ ये अलंकरण आपके साहस अनुशासन और उत्कृष्ट सेवा भाव के साथ आपके परिवारों के त्याग एवं सहयोग का भी सम्मान है पदक विजेता अधिकारी और जवान बल के युवा कार्मिकों के लिए आदर्श हैं मेरा आग्रह है कि आप अपने अनुभव कार्य पद्धति और कठिन परिस्थितियों में लिए गए निर्णयों को नई पीढ़ी के साथ साझा करें सीमाओं पर तैनात एसएसबी का प्रत्येक जवान देश का सजग प्रहरी आपदा के समय प्रथम सहायक और भारत की सद्भावना का प्रतिनिधि है मित्रवत सीमा पर आम नागरिकों की सुविधा और सुरक्षा के बीच संतुलन एसएसबी की सबसे बड़ी शक्ति है। एसएसबी की विशिष्ट पहचान उसकी शक्ति और संवेदना के अद्भुत समन्वय में है। हिमालय जैसी अडिग दृढ़ता और गंगा जल जैसी पवित्र संवेदना के साथ एसएसबी भारत की मित्रवत सीमाओं की सुरक्षा, सीमावर्ती नागरिकों की सेवा तथा पड़ोसी देशों के साथ आत्मीय संबंधों को निरंतर सुदृढ़ करता रहे। सशस्त्र सीमा बल के सभी अधिकारियों, जवानों, पदक विजेताओं और उनके परिवारों को पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्र सेवा के आपके संकल्प, साहस, त्याग और समर्पण को कोटि कोटि नमन। वंदे मातरम। भारत माता की जय। अब मैं अपनी ओर से कुछ शब्द कहना चाहूँगा। मंच पर मेरे साथ जो मेरे सहयोगी बैठे हुए हैं, एसएसबी के महानिदेशक संजय सिंघल जी, गृह मंत्रालय में मेरे सहयोगी श्री राजेंद्र कुमार सेक्रेटरी बॉर्डर मैनेजमेंट, श्रीमती रेखा लोहानी एडिशनल डीजीपी, श्री रामलू नायक आईजी ऑप्स एसएसबी, इस सभागार में उपस्थित सीएपीएफ और अन्य पुलिस प्रतिष्ठानों के वरिष्ठतम नेतृत्व, उनके डीजीज, अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण और एसएसबी परिवार के सभी अधिकारी और कर्मीगण, गृह मंत्रालय की ओर से कुछ विषय हैं जो आज चूंकि मेरे को मौका मिला है तो मैं यहां रखना चाहूंगा। भारत की सीमाओं की सुरक्षा हमारे मंत्रालय का और अंततः भारत सरकार का एक बहुत ही अहम, महत्वपूर्ण और संवेदनशील लक्ष्य है। 15,000 किलोमीटर की लगभग भारत और अन्य देशों की सीमा की निरंतर चौकसी और उसकी सुरक्षा जब तक हम मजबूत ढंग से नहीं कर पाएंगे, तब तक भारत की आंतरिक सुरक्षा का भी जो हमारा लक्ष्य है वो कहीं ना कहीं अधूरा रह जाता है। इसलिए जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस विभिन्न सीमाओं पर काम करती हैं वो देश के प्रति एक बहुत उच्चतम उनका बलिदान है और देश निर्माण के काम में एक बहुत बड़ी उनकी भूमिका है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने कुछ दिन पूर्व एक चतुष्कोणीय सुरक्षा व्यवस्था भारत के सभी बॉर्डर्स के लिए परिकल्पित करी है। इस चतुष्कोणीय सीमा व्यवस्था में जो चार प्रमुख स्तंभ हैं वो हैं बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस, राज्य सरकारों के जो प्रथम पंक्ति में बॉर्डर्स पर कार्यरत कर्मचारी हैं, जिसमें बॉर्डर के जिलों के जिला अधिकारी, वहाँ के पुलिस निरीक्षक और अन्य जो पूरी व्यवस्था है बॉर्डर के जिलों पर जो राज्य सरकार ने स्थापित की हुई है, वो इसका दूसरा स्तंभ है। तीसरा स्तंभ है भारत सरकार की विभिन्न संस्थाएं, जिसमें बैंक्स हैं, जिसमें आयकर विभाग है, जिसमें नारकोटिक्स का पूरा व्यवस्था है। इस तरह के जो 15 से 20 प्रमुख निकाय हैं भारत सरकार के, जो आर्थिक अपराधों पर, नारकोटिक्स पर, फेक करेंसी पर निगाह रखते हैं, वो इसका तीसरा स्तंभ है। और अंततः इसका चौथा स्तंभ है जो वहाँ का समुदाय है, जो वहाँ के आम नागरिक हैं। ये शायद पहली बार भारत के, स्वतंत्र भारत के लगभग 75 से 80 वर्ष के इतिहास में एक ऐसी परिकल्पना को जन्म दिया गया है जिसके प्रणेता गृह मंत्रालय के माननीय मंत्री, हमारे गृह मंत्री जी हैं, उनके आदर्श से ये परिकल्पना विकसित हुई है। और यहाँ मुझे इस परिकल्पना के बारे में बताते हुए इसलिए मुझे हर्ष भी हो रहा है और ये प्रासंगिक भी है कि इस व्यवस्था को आत्मसात किया जाए सभी स्टेक होल्डर्स में और इसको ग्राउंड पर सुचारू रूप से उतारा जाए। इसका पहला जो बड़ी मीटिंग हुई थी वो एस एस

एसएसबी के ही तत्वाधान में भारत नेपाल बॉर्डर में बिहार के किशनगंज और लगे हुए जो जिले हैं उनको सम्मिलित करते हुए लगभग आज से 6 से 7 महीने पहले हुई थी। तो इस पूरी व्यवस्था जो कि आने वाले कुछ महीनों में कुछ वर्षों में एक बहुत ही पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के रूप में उभरेगी, इसका जन्म एसएसबी के ही कर्मभूमि में हुआ था और इसलिए इस पूरी व्यवस्था को आरंभ करने की जो बधाई है उसके पात्र एसएसबी के महानिदेशक, उसके अधिकारीगण और उसके कर्मी हैं। उसके उपरांत इस व्यवस्था को और विकसित किया गया गुजरात के बॉर्डर्स पर, राजस्थान के बॉर्डर्स पर, त्रिपुरा के बॉर्डर पर और अंत में बंगाल के जो बांग्लादेश से सटे हुए बॉर्डर्स हैं उनमें इसकी अंतिम बैठक लगभग आज से 1 महीने पहले हुई थी। इन्हीं बैठकों के क्रम में हम और जगह भी जाएंगे और जितने भी हमारे बॉर्डर जिले हैं उनके साथ वार्तालाप करके इसको और आगे बढ़ाया जाएगा। तो एक ये नई पहल जो गृह मंत्रालय में आरंभ हुई है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपने आप में एक प्लानिंग है और इसमें एसएसबी जो हमारी एक अहम बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है उसका बहुत बड़ा योगदान है। जो दूसरा विषय मैं एसएसबी के बारे में आप सबके समक्ष रखना चाह रहा हूँ वो ये है कि उनका जो कार्य क्षेत्र है वो अपने आप में एक अनोखा कार्य क्षेत्र है क्योंकि वहाँ जो हमारी सीमाएं हैं वो मित्र देशों से लगी हुई हैं, इसलिए वहाँ बाड़ लगाने का कोई प्राविधान नहीं है और बाड़ जो सुरक्षा प्रदान करता है उस सुरक्षा के बगैर एसएसबी को उस सीमा को सुरक्षित रखना है। पिछले 2 वर्ष में मेरा जो अपना अनुभव रहा है सीमा सुरक्षा के विषय में वो ये है कि ये अपने आप में एक कठिनतम कार्य है। बिना किसी फिजिकल बैरियर के एक बॉर्डर को सेफ रखा जाए इसकी कल्पना शायद विश्व में बहुत कम जगह पर की गई है और एक बहुत ही हर्ष का विषय है कि एसएसबी ने पिछले कुछ वर्षों में इस बॉर्डर को सुरक्षित करने के लिए कई प्रकार के नवाचार किए हैं जो टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं लेकिन जिनका प्रभाव लगभग लगभग उतना ही है जैसे कि वहाँ पे एक भौतिक बाड़ की व्यवस्था हो। इसमें डिटेल में मैं अभी नहीं जाना चाहूँगा लेकिन फेशियल रिकग्निशन के माध्यम से, रडार और सीसीटीवीज के माध्यम से और अन्य प्रणालियों को विकसित करके आज एसएसबी ये सुनिश्चित करता है कि नेपाल से और भूटान से जो भारत में आवागमन हो रहा है उस पर एक पैनी निगाह रखी जाए और किसी भी हालत में कोई भी संदिग्ध व्यक्ति, कोई भी ऐसा तत्व जो भारत में किसी भी प्रकार का उपद्रव करने में के लिए यहाँ आ रहा हो उसको हम बॉर्डर पे ही उसको रोक सकें और उसको वहीं पे अपनी गिरफ्त में ले सकें। इसमें सफलताएं भी मिली हैं और अभी हाल में ही गृह मंत्री जी सिलीगुड़ी गए थे, वहाँ एसएसबी ने एक विस्तृत उनके समक्ष प्रस्तुति भी की थी और उसके माध्यम से बताया था कि मानव तस्करों से लेके एफआईसीएन के स्मगलर से लेके नारकोटिक्स और आर्म्स के जो नेटवर्क्स हैं उन तक एसएसबी ने अपनी पकड़ मजबूत करी है और एक हमें एक कॉन्फिडेंस भी मिला और एक इस बात का सामने प्रत्यक्ष उदाहरण भी मिला कि एसएसबी के प्रयासों के चलते आज नेपाल और भूटान से जो भारत की सीमाएं हैं वो काफ़ी हद तक हमने सुरक्षित कर ली हैं। अंत में एसएसबी की उभरती भूमिकाओं के बारे में जो मंत्रालय का एक विजन है उसके बारे में कुछ कहना चाहूँगा। जैसा कि महानिदेशक महोदय ने बताया एसएसबी का जब जन्म हुआ था 1961-62 के कालखंड में तब उसका मुख्य ध्येय था बॉर्डर के गांवों में एक भारत के प्रति एक सद्भाव

पैदा करना, जो गांव के निवासी हैं उनके साथ मिलके एक आसूचना का सुदृढ़ तंत्र बनाना भारत के बॉर्डर्स पर, और जो बाकी अन्य आर्म्ड फोर्सेस

0: सौहार्दपूर्ण वातावरण विकसित करना, आसूचना के तंत्र को और सुदृढ़ करना, वो कहीं ना कहीं कम होता हमको दिखा है। तो अब आने वाले समय में मंत्रालय का ये मत है कि एसएसबी को अपना जो ओरिजिनल रोल था उस ओर फिर कदम उठाने चाहिए, जिससे कि जो इसकी मूल परिकल्पना थी उसके भी उसके भी निरूपण के लिए हम एक व्यवस्था बना सके। और जो आर्म्ड बॉर्डर गार्डिंग फोर्स का रोल है वो तो रहेगा ही रहेगा, बट उसके अतिरिक्त जो ओरिजिनल रोल था उस ओर भी हम अपनी क्षमताओं को सुदृढ़ कर सके। तो हमें पूरा विश्वास है कि वर्तमान महानिदेशक के नेतृत्व में ये जो नई परिकल्पना विकसित हुई है, इस पर भी एसएसबी पूरे बल से और पूरे अपने मन से, अपने कार्यों से इस ओर भी काम करेगा। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जाते जाते एसएसबी के अलंकरण समारोह में गृह मंत्रालय की ओर से फिर सभी एसएसबी कर्मियों को बधाई, उनको हार्दिक शुभकामनाएं और उनको पूरा पूरा गृह मंत्रालय का सहयोग रहेगा आने वाले समय में, इसका आश्वासन देते हुए आप सभी को फिर से मैं बधाई देता हूं। जय हिंद, जय भारत।
1: That was the address by the Honorable Chief Guest, Shri Govind Mohan, the Central Home Secretary.
2: और अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय के ओजपूर्ण संबोधन के बाद अब मंच पर हम देखेंगे कि सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे।
1: And our memento will be presented to the Honorable Chief Guest by the Director General of the Sashastra Seema Bal. A memento is being given, and a beautiful one, a beautiful memento, a big one, and it's being shown to the public, the people over here.
2: और अब अपर महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल द्वारा धन्यवाद ज्ञापन होगा। धन्यवाद ज्ञापन के लिए अपर महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल पोडियम पर।
3: माननीय केंद्रीय गृह सचिव भारत सरकार श्री गोविंद मोहन जी, सचिव सीमा प्रबंधन श्री राजेंद्र कुमार जी, मंचासीन महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल श्री संजय सिंघल जी, आईजी ऑप्स श्री एमआर नायक, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों एवं अन्य संगठनों के महानिदेशक गण एवं वरिष्ठ अधिकारी गण, सशस्त्र सीमा बल के पूर्व महानिदेशक गण, सभागार में उपस्थित विशिष्ट अतिथि गण, आज अलंकृत किए गए सशस्त्र सीमा बल के वीर एवं समर्पित पदक विजेता कार्मिक गण, मीडिया के प्रतिनिधि गण, देवियों एवं सज्जनों, आज सशस्त्र सीमा बल के इस अलंकरण समारोह के अवसर पर आप सभी की गरिमामयी उपस्थिति ने इस आयोजन को अत्यंत सार्थक एवं गौरवपूर्ण बना दिया है। सर्वप्रथम मैं आज के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह सचिव भारत सरकार जी का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। मान्यवर, आपने अपनी व्यस्तताओं के बीच इस समारोह के लिए समय निकालकर न केवल हमारा मान बढ़ाया है, बल्कि यह भी दर्शाया है कि देश की सीमाओं की सुरक्षा में समर्पित सीमा प्रहरियों के प्रति आपका स्नेह, सम्मान एवं विश्वास अटूट है। सशस्त्र सीमा बल आपको यह विश्वास दिलाता है कि आपके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन को हम सभी अपने कार्य एवं जीवन में आत्मसात करते हुए और अधिक निष्ठा, समर्पण एवं ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। मेरा विशेष आभार माननीय सचिव सीमा प्रबंधन श्री राजेंद्र कुमार जी के प्रति भी है, जिनका स्नेह एवं मार्गदर्शन सशस्त्र सीमा बल को सदैव मिलता रहा है। महोदय, आपकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए अनेक धन्यवाद। मैं आज सम्मानित किए गए सभी पदक विजेताओं, उनके गौरवान्वित परिवारजनों को भी हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देती हूँ। इन पदकों के पीछे आपकी कर्तव्य निष्ठा, समर्पण एवं आपके परिवारों का त्याग और निरंतर सहयोग भी निहित है। मैं मीडिया के सभी

0: ऐसे प्रतिनिधियों का भी विशेष धन्यवाद करती हूँ जिनके माध्यम से इस बल के कार्मियों को की उपलब्धियों एवं राष्ट्र सेवना की भावना को देशवासियों तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण योगदान मिलता है। एक बार पुनः मंचासीन अति विशिष्ट अतिथिगणों एवं सभागार में उपस्थित विशिष्ट अतिथियों, पदक विजेताओं एवं उनके परिवारजनों को बल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं एवं धन्यवाद। जय हिंद।
1: That was the vote of thanks by the Additional Director General of Sashastra Seema Bal.
2: और अब अपनी मातृभूमि के प्रति श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करने के लिए सभी उपस्थित जन राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के लिए सावधान मुद्रा में खड़े हो रहे हैं।
3: आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।

0: राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के उपरांत सभी लोग अपने आसन पर एक बार फिर विराजमान होते नजर आ रहे हैं। और जहां तक गणमान्य व्यक्तियों का प्रश्न है तो उनका प्रस्थान यहां पर शुरू हो गया है। गणमान्य व्यक्ति प्रस्थान करते हुए नजर आ रहे हैं और अब ये अलंकरण समारोह अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर गया है। आज विज्ञान भवन में आयोजित ये सशस्त्र सीमा बल अलंकरण समारोह 2026 हमें एक बार फिर याद दिलाता है कि राष्ट्र की सुरक्षा एक सतत दायित्व है। सीमा पर तैनात जवान कठिन परिस्थितियों में देश की सुरक्षा के लिए अपना वर्तमान समर्पित करते हैं ताकि हमारे देश का भविष्य सुरक्षित रह सके। आज जिन अधिकारियों और जवानों को अलंकरण प्रदान किया गया उनकी वीरता, सेवा और समर्पण पूरे राष्ट्र के लिए गौरव का विषय है। इसी के साथ विज्ञान भवन नई दिल्ली में सशस्त्र सीमा बल SSB द्वारा आयोजित सशस्त्र सीमा बल अलंकरण समारोह संपन्न होता है। अब मैं अतहर सईद, अपने साथी कमेंटेटर डी एंड्रयू और OB प्रभारी विवेक कुमार तोमर और हमारी तकनीकी टीम के सदस्य अशोक कुमार मिश्रा और सुमित कटियार के साथ आपको आकाशवाणी स्टूडियोज वापस लिए चलता हूँ। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे प्रमोद कुमार। नमस्कार, जय हिंद।
1: ये आकाशवाणी भोपाल है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

ये आकाशवाणी भोपाल है, माफ कीजिएगा, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत लीजिए अब सुनिए रेडियो धारावाहिक जमुनिया की 14वीं कड़ी।

0: रहा तुम भी, ए भैया वही रहा तुम भी चुनो मेरे भैया, वही रहा तुम भी चुनो मेरे भैया, जमुनिया की कहनी सुनो मेरे।
1: अभी तक आपने सुना कि जमुनिया अपने पति रतन के साथ बहुत खुश थी, किंतु धोखेबाज दीवान और उसके भाई करण ने मिलकर रतन को कर्ज के जाल में फंसा दिया, जिसके चलते रतन को आत्महत्या करनी पड़ी। बाद में करण ने जमुनिया को भी उसकी दुधमुही बच्ची के साथ घर से निकाल दिया और जमुनिया के बेटे को हथिया लिया। उधर जमुनिया को पास के गांव के एक व्यक्ति झुल्लन ने सहारा दिया। जमुनिया बांस की डलिया और पंखे बनाकर जीवन यापन करने लगी। अचानक जमुनिया को लगा कि उसकी बदहाली की सबसे बड़ी वजह उसकी अशिक्षा है। उसने पढ़ने की इच्छा प्रकट की। गांव के गुरुजी से शिक्षा प्राप्त कर वो शीघ्र ही पढ़ने लिखने लगी। गांव का सरपंच दीवान था, किंतु गांव की सीट महिला सीट घोषित होने पर उसने अपनी पत्नी को पर्चा भरवाया, तो दूसरी ओर गांव वालों के आग्रह पर जमुनिया भी अपना पर्चा भरकर चुनाव के मैदान में कूद पड़ी। दीवान अपनी कुटिल चाले चलता रहा, पर जमुनिया ने सभी का सामना सच्चाई और धैर्य के साथ किया। अब आगे।
2: माई, उठो माई, सुबह हो गई।
3: अरे हाँ बिटिया, रात जरा देर से सोई तो थोड़ी ज्यादा देर हो गई। तुमने हाथ मुंह धोया?
2: हाँ माई, हमने तो चना चबेना भी खा लिया, और बाबा कह रहे थे कि जमुनिया को अभी सो लेने दो, उसे आज बहुत भाग दौड़ करनी है ना।
3: बाबा भी ना, कितनी चिंता करते हैं हमारी। कितने दिनों से एक भी पंखा डलिया नहीं बनाया, अकेले बेचारे लगे रहते हैं और हम सब का पेट भर रहे हैं।
4: अरे बिटिया।
3: हाँ बाबा।
4: अब तू मेरा गुणगान बंद कर और थोड़ा बहुत जो भी है खा कर जा। चुनाव का मोर्चा संभाल, परसों चुनाव है, इन्हीं दो दिनों में बहुत इधर का उधर होता है, समझी?
3: ठीक है बाबा। हाँ। पूरी कोशिश करूंगी कि इस बार ऐसा ना हो।
4: हाँ।
3: अरे आप लोग आ गए पुलिस भैया, नमस्ते।
5: जी जमुनिया जी।
3: आप लोग इतने दिनों से हमारे साथ हैं और हम आप लोगों की कोई आवभगत नहीं कर पाए, वो तो आप देख ही रहे हैं। हमारे पास आप लायक कुछ खाने को भी नहीं है।

0: माफ करिएगा।
1: अरे जमुनिया बहन, हम तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और फिर आपको हमारी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम देख रहे हैं कि आप पूरी सच्चाई और ईमानदारी से गांव के भले के लिए लगी हुई हैं, हम सब समझते हैं। बस आप हमें एक गिलास पानी पिला दीजिए, यही हमारे लिए बहुत है।
0: जी अभी मंगवाती हूँ। आप लोग कितने अच्छे हैं।
1: अरे नहीं नहीं,
0: खामखा लोग पुलिस को बदनाम करते हैं। भैया
1: हाँ,
0: मैं आप लोगों से एक मदद मांग रही हूँ।
1: हाँ हाँ बोलो बहन।
0: हो सके तो हाँ कीजिएगा। हाँ नहीं तो मेरी बड़ी किरकिरी हो जाएगी।
2: बोलिए बहन, बोलिए।
0: हमने गांव की औरतों से विनती की है कि जिनके आदमी शराब पीते हैं वो अपनी कसम दे कि चुनाव के एक दिन पहले खाली एक दिन शराब ना पिए। और सबने हमारी बात भी मानी है।
1: अच्छा, अच्छा।
0: वो लोग अपने अपने आदमियों से बात भी कर चुकी हैं।
2: अच्छा, अच्छा। वो तो हम लोग देख रहे हैं।
1: हाँ।
2: बहुत अच्छा सोचा है आपने।
1: हाँ हाँ बिल्कुल, पर आप हमसे क्या सहायता चाहती हैं?
0: आज मैं शराब की दुकान पर जाकर उसके मालिक है ना शंकर भैया,
1: हाँ हाँ,
0: उनसे कहने वाली हूँ कि वो एक दिन के लिए चुनाव से पहले वाले दिन अपनी दुकान बंद रखे, दारू ना बेचे।
1: अच्छा तो इसमें हमें क्या करना होगा?
2: हाँ बताइए।
0: शंकर भैया मान जाएंगे, मुझे यकीन है। एक दिन की बात ही तो है।
1: हाँ हाँ।
0: वो मान भी सकते हैं, पर मान लो नहीं माने
1: तो
0: क्या आप लोग उन्हें रोक सकते हैं दुकान खोलने से?
2: हम तो आपके साथ ही चलेंगे।
1: हाँ।
2: और आपके कहने से मान गया तो ठीक है, वरना हम चुनाव को साफ सुथरा करवाने के नाम पर दुकान बंद करने को कहेंगे उससे।
1: हाँ हाँ और क्या, और हमें तो लगता है कि बात बन जाएगी बहन।
0: अरे वाह, तुझ पे चलिए।
1: हाँ हाँ चलिए
2: चलिए चलिए,
1: आइए
2: चलिए।
3: अरे सुना।
4: जी मालिक।
3: जरा उस करण को तो बुला के लाओ।
4: आजकल तो उसका कोई ठिकाना ही नहीं है मालिक। अरे कभी घर जाता है कभी नहीं। हाँ, और किसी ने कुछ खिला दिया तो ठीक, नहीं तो ऐसे ही पड़ा रहता है मालिक।
3: अच्छा अच्छा, अब ये कहानियां मत सुनाओ मुझे, जाओ उसे ढूंढ के लाओ।
5: ठीक है मालिक, देखता हूँ कहाँ है।
4: हाँ हाँ मालिक, हाँ।
3: जल्दी निकलो, जल्दी।
5: जी मालिक।
3: जल्दी बुला के लाओ उसे।
5: कहाँ ढूंढे उसको
4: यार, अब देखते चलते।
5: दारू गड्ढे पे।
4: अरे कुआं पे देख, चलते कुआं पे।
6: अरे ये लो भैया, जिसे खोज रहे थे वो तो यही लुड़का पड़ा है।
4: क्यों रे?
6: अरे करण, क्या अभी तक रात की उतरी नहीं?
7: अरे कहा भैया, तुम पीने की बात करते हो, कोई पानी को तो पूछता नहीं है। दारू कौन देगा भाई, घर पर भी कौन है? यहीं के लोगों के बीच बैठ जाता हूँ, वक्त कट जाता है। अरे कभी कभार कोई पुराना यार दोस्त मिलता है तो एक आध घूट पिला देता है बस।
4: अच्छा सुन, जीवान जी बुला रहा है तुझे, चल।
7: अब क्यों बुला रहे हैं?
4: चल।
7: बर्बाद तो कर दिया मुझे, अब क्या बचा है मेरे पास? भैया माफ करो हमें।
4: अच्छा?
6: तो क्या जाके बोल दूं कि तुमने आने से मना कर दिया?
7: अरे अरे थोड़ी सी जान बची है क्या, ये भी नहीं देखा जा रहा है तुम लोगों को? चलता हूँ।
4: चल चल चल
7: चलो।
4: बस भैया खत्म हो गई सारी एकड़ी।
7: अब काहे की एकड़ी भैया, चलो ना।
4: चलो चल आजा।
0: ये तो करण है, तो अभी तक इन्हें चेत नहीं आया, दारू की दुकान को ही घर बना लिया है यही लगता है।
8: अरे भैया।
9: हाँ?
8: ये तो जमुनिया है।
9: हाँ भैया।
8: अरे हाँ? ये जहाँ दारू की दुकान पर क्या करने आई है? अरे करण रुक रुक रुक, एक हाँ? मिनट रुक। हाँ? अबे देख तेरी भाभी।
7: अरे मुझे मत रोको भैया।
8: काय?
7: मुझे मत रोको, मैं उसके आगे नहीं जाना चाहता।
8: रुक
6: रुक के देख तो सही।
7: छोड़ छोड़ छोड़ छोड़
8: इधर क्या करती है?

0: साथ में दो दो पुलिस लेके घूमती है।
1: हाँ
0: इसका कुछ भी नहीं कर सकते।
2: हाँ ये जमुनिया जी, इधर कैसे?
1: नमस्ते।
3: शंकर भैया है क्या?
1: अरे घर में होंगे भीतर। हाँ या तो आपके देवर जी है। देवर जी।
3: आपको बताने की जरूरत नहीं है, अपने देवर को मैं जानती हूं और जब जरूरत होगी खुद समझ लूंगी। तभी तो शंकर भैया से काम है।
1: अरे भाई आता हूं आता हूं आता हूं भाई। कम वक्त सुबह सवेरे से ही दारू पीने आ जाते हैं। अरे आप जमुनिया बहन
3: जी,
1: यहाँ कैसे? कहिए क्या बात है?
3: शंकर भैया वो आपसे एक विनती करने आए हैं।
1: विनती? कैसी विनती?
3: आपसे विनती है कि कल दारू की दुकान बंद रखें, ना पिलाएं और ना बेचें, खाली एक दिन के लिए बस।
1: भाई ये तो पहली बार सुन रहा हूँ जमुनिया बहन। नहीं तो चुनाव के पहले तो दारू रोज से चौगुनी बिकती है और बिकती रही है, ऐसा क्यों?
3: अनजान मत बनिए शंकर भैया, आप सब समझते हैं, हमसे मत कहलाइए।
2: अरे वाह, ये तो कोई बात नहीं हुई जमुनिया बहन। किसी की रोजी रोटी पर रोक लगाने की बात ठीक नहीं है।
1: और क्या?
2: दीवान जी ऐसा नहीं होने देंगे।
3: देखो भैया, हम आप लोगों से कुछ नहीं कह रहे।
1: अच्छा?
3: रही रोजी रोटी की बात, तो दुनिया की रोजी रोटी दारू के भरोसे नहीं चल रही है।
1: देखो भैया, बहन जी आप भी और आप भी भैया आपस में मत लड़ो। आपस में मत झगड़ो भैया।
2: अच्छा?
1: बहन जी मैं सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ, आप मुझे सोचने दीजिए।
2: अच्छा तो हमें पुलिस का रौब दिखाया जा रहा है?
3: आप अगर ऐसा सोचते हैं तो ये ही सही।
1: अरे भाई शांत भी तो रहो, शांत। चलो सोच लिया, अब कल दुकान बंद।
3: हाँ भैया जी जी बिल्कुल।
4: आप दुकान खोलिए। हम लोग आकर खड़े रहेंगे। अरे देखते हैं कौन दुकान बंद कराता है।
1: तुम दोनों जाओ यहाँ से, चलो।
4: अरे?
1: चलो। और जमुनिया बहन
3: जी
1: आप निश्चिंत रहिए,
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: कल दुकान नहीं खुलेगी।
4: ज्यादा बात हुई है। दुकान तो खुल के रहेगी। हाँ और नहीं खुली तो हम ठेला लगा कर यही दारू बेचेंगे। चल बे करण, चल।
5: लगता है ये दीवान का आदमी है।
1: लगता तो है जी साहब, कानून कायदा जानता नहीं है ना, समझता है जो दीवान बोल दे वही कानून है, कुछ कर नहीं पाएगा वो। निश्चिंत रहें
3: जी,
1: हमारा विश्वास करिए बहन जी
3: जी,
1: कल दारू नहीं बिकेगी, यानी नहीं बिकेगी। हाँ
3: बस शंकर भैया, एक दिन की ही बात है। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
6: चल।
7: आ गए करण बाबू।
6: जी मालिक, अब हमारे पास क्या बचा है मालिक?
7: देखा हमारा काटा पानी भी नहीं मांगता। हाँ
6: देखा मालिक, देखा।
7: अब तुम्हारे पास केवल तुम बचे हो और उसी से कर्जा वसूलूंगा बच्चू।
6: हे मालिक, एक ही बार में मार डालो, क्यों धीरे धीरे हलाल कर रहे हो हमें? अरे हमसे क्या गलती हो गई?
7: अरे बच्चे, हम किसी को गलती करने का मौका ही नहीं देते
1: मालिक। ये उसी दारू का

0: घंटे पर मिला था।
1: अच्छा,
0: हाँ वहीं सो जाता है। मालिक,
1: हाँ
0: आपसे एक बात बतानी थी।
1: अच्छा बोलो बोलो, क्या बात है?
0: मालिक,
1: अरे बोलो ना, क्या बात है?
0: मालिक वहां जमुनिया आई थी।
1: क्या कहा? जमुनिया आई थी?
0: हाँ,
1: शराब की दुकान पर जमुनिया आई थी?
0: यही तो बात है मालिक। हाँ मालिक, वो शंकर भैया से कह रही थी कि चुनाव के एक दिन पहले दुकान बंद रखे।
1: हाँ, अच्छा उसके बाप का राज है क्या? हैं? दुकान खुलेगी
0: और क्या भैया,
1: हम खुलवाएंगे।
0: हाँ, देखा,
1: और तुम लोग तैयार है ना रे?
0: मालिक मालिक एक बात और, बस साथ में पुलिस भी थी जमुनिया के।
1: क्या?
0: हाँ कह रही थी बिनती मान लो तो अच्छा, नहीं तो कानून से मनवाएंगे।
2: हाँ मालिक।
0: अरे मालिक मैं तो हड़का आया कि दुकान खुलकर रहेगी। कहा भैया?
2: हाँ मालिक।
1: ये तुमने बड़ी बात बताई।
0: और क्या,
1: पुलिस भी थी वहां पर?
0: हाँ मालिक।
1: इस जमुनिया ने तो नाक में दम कर रखा है। ओहो, कानूनन तो वो दुकान बंद करवा भी सकती है भाई।
2: तो क्या मालिक, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे?
1: अबे सोचने दो मुझे, जो मन में आता है अनाप शनाप कुछ भी कहीं भी बोल के आ जाते हो तुम, और बाद में झेलना तो दीवान को पड़ता है ना। सोचने दो मुझे, सोचने दो। अरे अब सर पर क्यों खड़े हो मेरे, चल भागो यहाँ से, भागो
3: जी।
1: वैसे भी ले जाओ साथ में
3: जी।
1: मूड खराब हो गया मेरा तो। और सुनो
3: जी मालिक,
1: दो रोटी डाल देना, इसके पेट में जाएगी रोटी।
3: हाँ,
1: तो ठीक रहेगा, फिर
3: अच्छा
1: बात करेंगे से। हाँ जाओ ले जाओ ले जाओ।
3: अच्छा
0: मालिक,
2: चल
3: चल चल चल चल।
4: अरे कहाँ उड़ गई, कहाँ है चिरैया?
5: मैं यहाँ हूँ माई, क्या बात है, बड़े गुस्से में हो?
4: दादी की तरह सवाल मत पूछ, ला पानी पिला।
5: अभी लाई माई।
6: क्या बात है बिटिया, कोनू झड़प हो गई का किसी से? हैं? सचमुच गुस्से में दिख रही हो बिटिया तुम।
4: अरे कुछ नहीं बाबा।
6: हाँ?
4: रोज सोचती हूँ दीवान के आदमियों से सामना ना हो, पर हो ही जाता है, खून खोलता है। पर सोचती हूँ हमें अभी अपनी बात से सबको समझाने बुझाने की जरूरत है।
6: हाँ बिटिया,
4: झगड़ा टंटा से अपना नुकसान ही होगा, पर दीवान के लोग उलझ ही जाते हैं।
6: अरे बिटिया हुआ क्या आखिर, बात ज्यादा बढ़ गई क्या?
4: अरे नहीं बाबा, बात कुछ नहीं
6: है?
4: मैं तो शंकर भैया से इतना कहने गई थी कि परसों चुनाव है ना, वोट डाले जाएंगे, वो कल भर अपनी शराब की दुकान बंद रखें।
6: अच्छा।
4: वो मान भी गए, पर दीवान का आदमी वहीं खड़ा था, वो उलझ गया, बोलने लगा किसी की रोजी रोटी कैसे रोक सकती हो।
6: अरे बिटिया फिर क्या हुआ?
4: होना क्या था, पुलिस भैया ने समझाया, पर वो बोला कि मैं ठेला लगा के यही शराब बेचूंगा, देखूं कौन रोकता है। और पापा वो मुआ करन, करन वो भी वही मर रहा था बाबा।
6: अरे तो बिटिया असली बात बोलना कि करन से आमना सामना हो गया तेरा। अरे गुस्सा कहाँ है बिटिया, और निकाल कहाँ रही हो तुम?
5: माई लो ये पानी पियो।
6: हाँ।
5: और गुस्सा ठंडा करो।
4: ला

0: आओ शंकर भैया आओ
1: भैया,
0: मालिक आपको ही याद कर रहे थे। हाँ मैं आने वाला था आपको बुलाने, आप खुद ही आ गए। मैंने तो मालिक को सारी बात बता दी है।
1: भैया अभी बताई।
2: पता था मुझे कि तुम चुप रहने वाले।

0: वाले तो हो नहीं।
1: अरे कौन है भाई उधर? शंकर है क्या?
0: जी मालिक, मैं शंकर।
2: मालिक जी खुद ही आ गए, इन्हीं से पूछ लीजिए मालिक।
1: हाय शंकर, क्या सच्ची जमुनिया आई थी दुकान बंद करवाने?
0: जी मालिक आई तो थी।
1: तो फिर तुमने क्या सोचा है?
0: सोचना का मालिक, बस एक दिन की बात है, रख देते हैं बंद। सबके फायदे की ही बात है मालिक।
1: कौन से सब हैं? कौन से सब हैं जिनके फायदे की बात है?
0: और कौन मालिक, पूरा गांव ही तो है मालिक।
1: हट गांव! अरे साफ बात तो ये है कि ये जमुनिया के फायदे की बात है। कब पहली बार चुनाव हो रहा है गांव में हैं? अरे हर बार हमने तुम्हारी मदद की है, मुफ्त की दारू दी कि पिलाओ सबको। कभी पैसे धेले की बात की हो तो बताओ। यही तो मौका होता है कि सब लोग मौज मजा करें, खुश रहें। अरे बाद में किसको पड़ी है?
0: वो तो ठीक है मालिक, पर मुझे भी ठीक लगता है। अरे एक दिन बंद रखें दुकान, नहीं तो उसी दिन मुफ्त की दारू पीकर सभी अंट शंट लड़ते झगड़ते हैं। अरे पैसे से पीते हैं तो कम पीते हैं, इतना झंझट नहीं होता मालिक।
1: डर गए शंकर, डर गए तुम शंकर। अरे जमुनिया से डर गए तुम? अरे हम तुम्हारे हाँ। साथ खड़े हैं शंकर, और तुम जमुनिया से डर गए?
0: डरने की बात नहीं है मालिक, उसकी बात हमें ठीक लगी सो मान गए। हम यही बताने आए थे, हमें डर था कि आपका ये आदमी अनाप शनाप बोलकर बात का बतंगल ना बना दे। हमें मालूम था, सीधे जमुनिया से लड़ बैठा कि देखूं कैसे दुकान बंद करवाती हो। मैं यही दारू का ठेला लगा दूंगा।
3: हाँ।
0: इसने बोला ये।
3: हाँ, यही बोला।
0: बात बढ़ाने से क्या फायदा मालिक?
1: बस समझ गए हम, सब समझ गए शंकर, हमें ज्यादा ना समझाओ। हाँ अगर डर कर दुकान बंद करने वाले हो तो साफ साफ बताओ हमें, अरे हम तुम्हारे लिए आदमियों का इंतजाम कर देंगे।
0: अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है मालिक।
1: अरे देख रहे हो तुम लोग
3: मालिक,
1: आज ये शंकर हमें सिखा रहा है कि क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है।
0: देखिए मालिक, मुझे रोज का धंधा करना है, मेरा लाइसेंस कैंसिल हो गया तो धंधा ही चौपट हो जाएगा मालिक।
1: अरे तो तुम्हें लाइसेंस दिलाया किसने था?
0: आपने मालिक।
1: फिर क्या कल हम फिर से तुम्हें लाइसेंस नहीं दिलवा सकते?
0: अरे जानबूझकर मुसीबत क्यों बुलाना मालिक, और फिर अगर मुफ्त में ही दारू देना है तो मेरी दुकान से ही क्यों? अरे आप तो जहां से चाहे बांट सकते हैं मालिक।
1: बस समझ गए, तुम भी बदले बदले से लग रहे हो शंकर। अरे हमारी बिल्ली हम ही से म्याऊ।
0: मालिक आप मुझे गलत समझ रहे हैं।
1: गलत समझे थे अब तक, अब आज सही समझ रहे हैं। अरे जे मत समझना कि जमुनिया जीत जाएगी, अरे दीवान हरगिज ऐसा नहीं होने देगा। और मान लो वो ससुरी जीत गई तो भी गांव को चैन से बैठने नहीं दूंगा मैं। अरे देखता हूँ ये जमुनिया क्या कर लेती है। अरे अभी जरा चुनाव का माहौल है तो थोड़ा चुप्पी साधे, नहीं तो

0: ठीक को बता देते हम।
1: और क्या? हाँ।
2: मैं चलूं मालिक।
0: बड़ी जल्दी में हो, लगता है दुकान खोलने की जल्दी है तुम्हें।
2: जी मालिक, आज तो दुकान खोलना ही है।
0: लेकिन तुम्हारे हाथ दारू मुफ्त इसलिए बंटवाते हैं शंकर कि सभी पीने वाले तुम्हारे पास ही आते हैं। बेचारे आस भी लगाए बैठे रहते हैं कि दीवान जी उनके नशे पत्ते का इंतजाम करते हैं।
2: एक ही बात बार बार कहने से क्या फायदा मालिक, मुझे इस बार माफ करिए बस। प्रणाम मालिक,
0: प्रणाम। चलता हूं। अरे माफ तो हम करेंगे तुम्हें अच्छे से, जरा ये चुनाव हो जाने दो शंकर। ए
3: जी मालिक। जी
0: सुनो।
3: जी जी मालिक,
0: ये बेमतलब बातें गलत दीवान की इज्जत दांव पे मत रखा करो।
3: वो मालिक
0: समझ गए? अरे टाइम अभी नासुक है। और सुनो।
3: हाँ भाई।
0: पता करो कि ई शंकर कोई और खिचड़ी तो नहीं पका रहा है।
3: ठीक ठीक है मालिक, ठीक है।
0: और हाँ,
3: हाँ।
0: जा बुला के ला उस करण को हमारे पास।
3: जी मालिक।
4: जे लो।
3: तो करण भी आ गया। अरे भैया खुद ही आ गया।
4: खुद ही आ गया।
0: कुछ खाया तुमने?
5: जी मालिक, बड़ी भूख लगी थी।
0: और पिए कितने दिन हो गए तुम्हें?
5: याद ही नहीं मालिक।
0: ठीक है, तैयार हो जाओ।
5: हाँ।
0: पर आज नहीं, कल छक्के पीना। और हाँ, अपने जान पहचान वालों को भी पिलवाना, पर ये बात पक्की कर लेना कि पीने वाले वोट के दिन मालकिन को ही वोट दें।
5: हाँ, पक्का मालिक, पक्का।
0: समझ गए ना?
5: हाँ,
0: चल अच्छा। हाँ। भाग, तैयारी कर।
5: जी।
0: और हाँ,
5: अगर
0: कामयाब हुआ तो हम तेरी बहुत सारी परेशानियां खत्म कर देंगे। पर जी जान लगा दे करण, जी जान लगा दे हमारे लिए, इस मालकिन को जिताने में जी जान लगा दे तू।

0: मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे।
1: प्रणाम गुरुजी।
0: प्रणाम प्रणाम। खुश रहो जमुनिया, आज तो तुम बहुत व्यस्त होगी। कल चुनाव है ना, मतदान होगा।
1: जी गुरुजी, पर भीतर बहुत बेचैनी है, सो आपके पास आ गई। लोग कहते हैं टेंशन बुरी चीज है।
0: वाह भाई वाह, टेंशन टेंशन, जानती हो बेटा क्या होता है?
1: जी, जब दिमाग पर बहुत बोझ हो उसी को टेंशन कहते हैं, है ना गुरुजी?
2: रेडियो धारावाहिक जमुनिया की 14वीं कड़ी अभी आप सुन रहे थे संग्रहालय से कार्यक्रम के अंतर्गत। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। इस बैठक में भारत, चीन और रूस सहित 10 अन्य सदस्य देश शामिल हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल में आयोजित कार्यक्रम से प्रदेश के करीब 1,22,000 विद्यार्थियों के खातों में लैपटॉप खरीदने के लिए 25,000 रुपये की राशि अंतरित की। ये राशि 12वीं में पहली

0: बार में 75% या उससे ज्यादा अंक लाने वाले विद्यार्थियों को दी गई। भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 7.8% की वृद्धि दर्ज हुई है। अमरीका ने भारत को एक गतिशील, मजबूत और लचीली अर्थव्यवस्था बताते हुए कहा कि भारत की विशाल और विस्तारित अर्थव्यवस्था अमरीकी कंपनियों और निवेशकों के लिए बड़े अवसर प्रदान करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जीडीपी वृद्धि 140 करोड़ देशवासियों की मेहनत और सामूहिक संकल्प का परिणाम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आर्थिक विकास की इस गति को बनाए रखने के लिए आत्मनिर्भर भारत बनना जरूरी है। श्री मोदी ने देशवासियों से स्वदेशी अपनाने, वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने और भारत में बने उत्पादों का समर्थन करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कल ग्वालियर में बलराम जयंती महोत्सव और सहकारी किसान समागम में शामिल होंगे। ये कार्यक्रम मेला मैदान परिसर में आयोजित किया जाएगा, जहां विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। और बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दाब क्षेत्र और ट्रफ के असर से 4 सितंबर तक प्रदेश के कई संभागों में तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने आज उमरिया और बालाघाट में अति भारी बारिश जबकि 15 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आकाशवाणी के इंदौर केंद्र के योगदान से लीजिए सुनिए महिला कार्यक्रम।

आप हमारी सखी सहेली, हमारी दोस्त, हमारी जान हो, कार्यक्रम के सबसे खूबसूरत हिस्से की पहचान हो। कार्यक्रम महिला सभा में आपके साथ हूँ मैं दुर्गेश नंदिनी। नमस्कार सखियों, प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 सितंबर से 7 सितंबर तक मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को सही खान पान और संतुलित आहार के महत्व के बारे में जागरूक करना है। देश से कुपोषण, एनीमिया और बच्चों में कम वजन जैसी समस्याओं को दूर करने के उपाय भी बताना है। इस दौरान स्कूल, कॉलेज और आंगनवाड़ी केंद्रों में स्वास्थ्य और पोषण पर विशेष कार्यक्रम होते हैं। जी हां सखियों, बच्चों और युवाओं के लिए पोषण और स्वस्थ जीवन शैली से जुड़ी गतिविधियां आयोजित की जाती है। इस वर्ष राष्ट्रीय पोषण माह के विषय हैं मोटापा नियंत्रण, पोषण भी पढ़ाई भी, आहार व्यवहार के साथ ही क्षेत्रीय और पारंपरिक पौष्टिक खान पान को बढ़ावा देना है। उम्मीद करते हैं हमारी प्यारी सखियां इन बातों का ध्यान रखेंगी। और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना से आप कैसे लाभ उठा सकती हैं। जी हां सखियों, ये भारत सरकार की एक छोटी बचत योजना है जिसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत शुरू किया गया है। ये बालिकाओं के उच्च शिक्षा और विवाह के लिए आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। पात्रता की बात करें तो बालिका की आयु 10 वर्ष से कम होनी चाहिए। खाता माता पिता या कानूनी अभिभावकों द्वारा खोला जा सकता है। सखियों, प्रति बालिका केवल एक खाता, जहां एक परिवार में अधिकतम 2 बालिकाओं के लिए जुड़वा बच्चों के मामले में छूट के साथ खाते खोले जा सकते हैं। न्यूनतम 250 रुपए और एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक जमा किए जा सकते हैं। सखियों, निवेश अवधि की बात करें तो खाता खोलने की तारीख से 15 साल तक पैसे जमा करने होते हैं। खाता खोलने की तारीख से 21 साल बाद ये परिपक्व होता है और 18 वर्ष की आयु के बाद बालिका के विवाह के समय बंद किया जा सकता है। ये राशि कर मुक्त होती है। सखियों, आवश्यक दस्तावेज में बालिका का जन्म प्रमाण पत्र, अभिभावक का आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता का पहचान पत्र और पासपोर्ट, एड्रेस प्रूफ के लिए सखियों बिजली का बिल या राशन कार्ड और बालिका की फोटो। सखियों, भरा हुआ SSY आवेदन फॉर्म को आप किसी भी अधिकृत बैंक या डाकघर में जमा कर सकती हैं। अब सुन लेते हैं एक प्यारा सा मीठा सा गीत।

0: गीत हमने सुन लिया और भरते हैं हौसलों की उड़ान। क्यों हर कलाकार अपनी रूह में प्रश डुबोता है और अपनी ही प्रकृति को अपनी तस्वीरों में उकेर देता है। जी हाँ, कलाकार अपनी अनोखी दृष्टि के लिए पहचाना जाता है। एक ऐसे ही हुनरमंद कलाकार रचना जोशी श्रृंखला मेरी उड़ान में हमारे साथ रूबरू हो रही हैं। नमस्कार रचना जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
1: नमस्ते
0: रचना जी, हम देख रहे हैं कि कला के एक से एक नायाब नमूने हमारे चारों ओर हैं और यहाँ कई छोटे छोटे बच्चे भी जो है वो आपसे प्रशिक्षण ले रहे हैं और उनके साथ ही उनकी मम्मी जो है वो भी के साथ जुड़ी हुई है। कॉलेज जा रही लड़कियां भी हैं, तो इन सब को लेकर आप चल रही हैं, प्रशिक्षण दे रही हैं। इस सफर की शुरुआत कैसे हुई, आप हमें बताएं।
1: जी, आपका कहना बिल्कुल सही है कि मैं छोटे बच्चों से लेकर बड़ी महिलाएं और कॉलेज गर्ल्स सभी को ट्रेनिंग दे रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे कोर्सेज अलग अलग जगहों से किए हैं, तो मुझे इन चीजों का बहुत ही डिटेल्स में पता चल चुका है कि कौन से प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए क्या चीज की जाती है। तो इन सब के लिए मैंने अच्छे से पहले शिक्षा प्राप्त की, खुद मैंने इतना स्टडी किया, उसके बाद मैंने अपनी क्लास स्टार्ट की, जो कि मैंने सबसे पहले घर से शुरुआत की। इसके लिए मुझे थोड़ा स्ट्रगल भी करना पड़ा, बट मैंने किसी की बात पर ध्यान ना देते हुए अपना छोटा सा पहले एक इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया। उसी के साथ में मैं अपनी पढ़ाई भी कर रही थी। पढ़ाई करते करते ही मैंने सारी ये क्लासेस वगैरह स्टार्ट किए। मैंने फाइन आर्ट्स में मास्टर्स किया हुआ है, प्लस NIFD से मैंने अपना फैशन डिजाइनिंग का कोर्स भी किया हुआ है, और मैंने अहमदाबाद से एक डिजाइन इनोवेशन करके एक ट्रेनिंग होता है वो भी मैंने लिया था। तो आर्ट की हर एक फील्ड का इतने अच्छे से सारा नॉलेज है कि मैं छोटे से लेके बड़े बच्चे तक सभी को ट्रेन कर सकती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि हम जो भी चीज करते हैं, पहले उसके लिए हमें अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जब आप कोई चीज बता रहे हो तो वो बच्चे को तभी समझ में आएगी जब आपको उस चीज का अच्छे से नॉलेज होगा। जब तक आपके पास नॉलेज नहीं है, आप दूसरों को नहीं दे सकते। और टीचिंग ऐसी फील्ड है, ज्ञान ऐसी चीज है कि आप जितना बांटोगे उतना ही आपका ज्ञान बढ़ेगा। तो मेरे लिए टीचिंग कि मेरा एक पेशन है। अच्छा लगता है मुझे बच्चों से इंटरेक्ट करना, बच्चों को नई नई चीजों के बारे में बताना। तो मुझे ऐसा लगता है कि आर्ट की प्रतिभाओं को उभारने के लिए हमें उन्हें बताना पड़ेगा कि इस चीज में वो लोग क्या क्या कर सकते हैं। और स्कूल्स में भी मैं जॉब करती हूँ, तो मैं स्कूल के बच्चों को भी ये बताती हूँ कि ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई में अच्छे हो तो ही आप कुछ कर सकते हो। पढ़ाई के अलावा भी बहुत सी चीजें हैं जिसमें आप अगर इंटरेस्ट दिखाते हैं तो आप एक अच्छे लेवल पे पहुंचते हैं।
0: बहुत ही विस्तार से आपने जानकारी दी ना जी। आप स्कूल में भी पढ़ा रही हैं, बच्चों को सिखा रही हैं, तो ये एक ऐसा माध्यम है जो महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है। हम कह सकते हैं वो स्वावलंबी बन सकते हैं, आर्थिक उपार्जन में भी कला जो है वो उनको अपना योगदान दे सकती है। तो क्या इसके लिए बहुत ज्यादा एजुकेशन की जरूरत है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि आर्ट क्लासेस जो है वो अक्सर महिलाएं घर पर भी चलाती हैं, और सुनने में ऐसा आता है कि कोई जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा पढ़ाई की जरूरत है। आप क्या सोचती है, हमारी जो सखियां हैं सुन रही हैं, उन्हें आप क्या मार्गदर्शन देना पसंद करेंगी कि वो अगर इस क्षेत्र में अपनी पहचान बनाना चाहती हैं तो उनके लिए क्या जरूरी है?
1: सबसे पहले तो एजुकेशन तो इम्पोर्टेंट है। आप जैसा कि जानते हैं कि 12th क्लास तक तो हमें एजुकेशन लेना ही रहती है। तो अगर आप एक 10th क्लास के बाद ही अपना एक टारगेट फिक्स कर लें कि हमें ये चीज करनी है, तो उससे आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आगे जाके सॉल्व हो जाती है। जैसे कि मेरे साथ

0: हुआ था कि जब मैं छोटी थी तो मुझे कोई समझाने वाला नहीं था कि आर्ट में आप ये कर सकते हो, तो कहीं ना कहीं मेरे मन में ये चीज़ आई कि मैं अगर फाइन आर्ट्स में कुछ करती हूँ तो मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, और मैंने फिर उस दौरान कॉमर्स से बैचलर्स किया। तो मुझे लगता है कि मेरा वो 3 साल मैंने वेस्ट किए। तो अगर बच्चों को पहले से हम ये चीज़ बताएं कि आगे आपको इस चीज़ में ये कोर्सेस करने से ये फ़ायदे मिलेंगे, तो वो उनका कुछ समय वो बचा सकते हैं। अगर उन्हें पता ही नहीं होगा तो जो गलती आज मैंने की ऐसे कितने ही लोग कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि पढ़ाई के साथ में बच्चों का ग्रूमिंग भी ज़रूरी है। अगर उनका ग्रूमिंग होता है तो वो हर चीज़ का नॉलेज रखते हैं। तो ऐसी कुछ जगहें रहती हैं जहाँ पे इन सब चीज़ों का नॉलेज दिया जाता है। तो पेरेंट्स को ये चाहिए कि हमारे बच्चों को उन जगहों पे भेजें और उनको इस चीज़ की डिटेल्स पता करें और बताएं उन्हें कि ये सब चीज़ों से आप ये कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप डॉक्टर इंजीनियर बनोगे और बस आईटी और यही कर सकते हो। आप देख सकते हैं कि इस फील्ड में भी मैंने एक छोटा सा इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने लेवल पे बहुत कुछ कर लिया है। तो ऐसी कोई भी घरेलू महिला अगर चाहे तो कर सकती है। बस ये है कि आप अपने आप को पहले इतना प्रशिक्षित करो कि आप किसी और को अच्छे से प्रशिक्षित कर पाओ। अदरवाइज क्या होगा कि थोड़े दिन तक तो आप अपना कर लेंगे जो भी आपको अधूरा ज्ञान है, तो लेकिन एक लेवल पर जाके फिर आप स्टक हो जाओगे। इसलिए बेटर ऑप्शन ये है कि आप पहले खुद अपने आप को प्रोफेशनल स्किल्स में डेवलप करो, देन आप किसी को गाइड करो।
1: बहुत ही अच्छी आपने जानकारी दी रचना जी, और जैसा कि आपने बताया कि आपने काफ़ी अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से जो है डिग्री कोर्सेज भी किया, डिप्लोमा करा और अपनी पढ़ाई पूरी करी, बाहर भी आप गई इसके लिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ बच्चे हैं जो कुछ तैयारी कर रहे हैं, जैसा आपने बताया था कि वो एंट्रेंस एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ हम चाहेंगे आप जानकारी दें।
0: जी, इसके लिए कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होती हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी से डिज़ाइन के कोर्सेज होते हैं, जैसे फैशन डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, और इसके साथ में डिजाइन एनिमेशन में भी कोर्सेज हैं, ग्राफिक्स में कोर्सेज हैं। तो मेरे यहाँ जो भी बच्चे हैं ये सब इसकी प्रिपरेशंस कर रहे हैं इनके एंट्रेंस की, ताकि इनको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सके। इनके कॉलेजेस, जैसे कि आपको थोड़ा सा मैं बता दूं ब्रीफली कि मुंबई महाराष्ट्र में इसका जे कॉलेज नाम से एक कॉलेज है जो काफी प्रसिद्ध है, प्लस अहमदाबाद में NID तो सभी जानते हैं, उसकी भी मैं एंट्रेंस की प्रिपरेशंस वगैरह करवाती हूं, बच्चों को गाइड करती हूं उसके बारे में। तो इस तरह से और भी काफ़ी इंडिया में कॉलेजेस हैं जिसमें डिज़ाइन को लेके काफ़ी कोर्सेज हैं। तो अगर बच्चों को वो चीज़ पता रहती है और उसकी एंट्रेंस की वो प्रिपरेशन करते हैं तो काफ़ी अच्छा फ्यूचर है उसके अंदर, काफ़ी इनकम सोर्स है उसके अंदर। लेकिन उसके लिए यही है कि उन्हें अपने आप को पहले उसके लिए एक टारगेट निश्चित करना होगा कि हमें यही चीज़ करनी है और हमको इसमें फुल्ली डिवोशन रखना है, तभी वो चीज़ कर पाते हैं। क्योंकि वो भी जिस तरह IT टफ है, वैसे ही उन एग्जाम्स के भी लेवल बहुत टफ होते हैं।
1: रचना जी, आपने बताया कि आप इनको तैयारियां करवा रही, प्रिपरेशन करवा रही हैं, तो क्या यहाँ पर आप बताएंगे कि 12th में जो बच्चे इस तरह के एग्जाम में अपीयर होंगे उनके लिए कुछ परसेंटेज वगैरह भी निश्चित रहता है?
0: एज सच तो अभी ऐसा कुछ नहीं है, बट फिर भी 50% अबाव तो परसेंटेज मांगते ही हर कॉलेजेस में, अच्छे कॉलेजेस में अगर चाहिए तो, जैसे NIFT और NID इनका लेवल थोड़ा सा हाई रहता है। तो उनके लिए बच्चों के GK बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर उनका जनरल नॉलेज अच्छा है, उसमें करंट अफेयर्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए और डिज़ाइन वगैरह तो होनी ही चाहिए अच्छी, साथ में पढ़ाई के उन्हें सारी चीज़ों से अपडेट होना ज़रूरी है।
1: चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि आपके माध्यम से हमारी सखियों को मार्गदर्शन मिल रहा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो माताएं हैं उनको ये थोड़ा सा दबाव रहता है जब बच्चा 12th में आता है कि अब आगे क्या करना है। तो कुल मिलाकर आपकी जो कला है वो उसने आपको पहचान दी, आपको सभी तरह से सफल बनाया। रचना जी, आप हमारी सखियों से क्या कहना चाहेंगे, जो सखियाँ इस ओर आगे बढ़ना चाहती हैं, जो सीख रही हैं?
0: मैं सभी महिलाओं के लिए बस एक यही चीज़ बोलना चाहती हूँ कि कभी भी हमें किसी के ऊपर आश्रित नहीं होना चाहिए। हमें अपने लिए जो भी करना है, जो भी सोचना है, उसके लिए हमें सोचना है। हम हमेशा ये चीज़ क्यों सोचते हैं कि हम एक महिला हैं तो हम किसी और के पीछे चलें? हम हमारे बारे में खुद सोचेंगे तभी दुनिया हमें आगे बढ़ने देगी। तो कभी भी कोई भी परेशानी आपको लाइफ में आएगी भी तो आप अच्छे से उसको हैंडल कर लो।
2: रचना जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, निश्चित रूप से हमारी सखियों को मार्गदर्शन मिला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और सखियों, सुन लेते हैं एक और गीत।

गीत हमने सुन लिया सखियों, और अब बात करते हैं रूप लावण्य की। जैसा कि हमारा सौंदर्य केवल बाहरी रूप रंग तक सीमित नहीं होता, बल्कि ये आंतरिक गुणों, आत्मविश्वास और व्यक्तित्व का भी एक अनूठा मेल होता है। किसी भी महिला का आत्मविश्वास और उसकी मुस्कान उसके चेहरे के आकर्षण को कई गुना बढ़ा देती है। साथ ही सखियों, सादगी और विनम्रता बाहरी दिखावे से कहीं ज्यादा आकर्षित करती है। जी हाँ, विशेष बात सखियों, सेहतमंद त्वचा और बालों के लिए ताजे फल, हरी सब्जियाँ और भरपूर मात्रा में पानी पीना बहुत जरूरी है। सखियों, रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद लेने से चेहरे पर प्राकृतिक चमक बनी रहती है। रासायनिक उत्पादकों के बजाय घरेलू और प्राकृतिक नुस्खों का उपयोग त्वचा के लिए ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात सखियों, नियमित योग, ध्यान और व्यायाम रूप लावण्य को बनाए रखने में बहुत मददगार साबित होता है। और अब सुन लेते हैं एक और प्यारा सा गीत जो आपके चेहरे की चमक को दुगना कर देगा।

और सखियों, खाने पीने में हमें पौष्टिक चीजों का सेवन करना है, ये हम सभी जानते हैं। तो आज हम आपको बता रहे हैं मिलेट्स यानी श्री अन्न से बनने वाली एक बेहद स्वादिष्ट और पौष्टिक रेसिपी। जी हाँ, मिलेट वेजिटेबल पुलाव, जिसे आप आसानी से अपने घर पर बना सकती हैं। सामग्री आप झटपट से नोट कर लें। मिलेट्स, कोदो या फॉक्सटेल 1 कप, 10 मिनट पानी में भिगोए हुए, घी या तेल 2 बड़े चम्मच, बारीक कटा 1 छोटा प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 छोटा चम्मच, 1 टीस्पून जीरा, कटी हुई सब्जियां जिसमें गाजर, मटर, बीन्स, कैप्सिकम जो भी आपको पसंद हो 1 कप, नमक, मिर्च, हल्दी स्वादानुसार, पानी 2 कप। विधि बहुत ही आसान है सखियों। एक गहरे बर्तन में घी या तेल गर्म करें, जीरा चटकाएं, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट और प्याज डालकर सुनहरा होने तक भुनें। अब इसमें कटी हुई सब्जियां, हल्दी, नमक डालकर 2 मिनट तक पकाएं। भीगे हुए मिलेट्स का पानी निकालकर बर्तन में डालें। 2 कप पानी डालकर उबाल आने दें। आंच धीमी करके ढककर तब तक पकाएं जब तक कि सारा पानी सूख न जाए और हाँ, मिलेट्स नरम हो जाएं। जब ये पक जाएं तब ऊपर से हरा धनिया डालकर गर्मा गर्म सेहतमंद मिलेट वेजिटेबल पुलाव सर्व करें। और आइए सुनते हैं एक और मधुर गीत।

गीत हमने सुन लिया सखियों, अब करते हैं काम की कुछ बातें। जी हाँ, अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज सुरक्षित रखने के लिए फिजिकल फाइल और डिजिटल सुरक्षा दोनों का उपयोग करें। सभी मुख्य दस्तावेज जैसे आधार, पैन, वोटर आईडी और जन्म प्रमाण पत्र एक वाटरप्रूफ प्लास्टिक फोल्डर में रखें। यदि कोई कीमत या संपत्ति के कागजात हैं तो उन्हें बैंक लॉकर में रखना सबसे उत्तम है। सखियों, सरकार के डिजी लॉकर पर अपने सभी मुख्य डिजिटल फॉर्मेट में सेव करें, ये पूरी तरह सुरक्षित और वैध होते हैं। सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों की स्पष्ट फोटो या पीडीएफ बनाकर अपने व्यक्तिगत ईमेल आईडी या गूगल ड्राइव पर सेव करें। ध्यान रखें सखियों, ड्राइव पर पासवर्ड जरूर लगाएं। अपना फोन या लैपटॉप पर मजबूत पासवर्ड या पिन रखें ताकि कोई अनजान व्यक्ति इन्हें ना खोले। अपना मोबाइल नंबर, पता और नाम अपडेट करने के लिए समय पर चेक करें, बस आप पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगी। बातों बातों में सखियों पता ही नहीं चला कि समय सीमा कार्यक्रम की कब समाप्त हो गई। आपको बता दें, कार्यक्रम संयोजन डॉक्टर प्रीति छड़ीदार का था। अब दुर्गेश नंदनी को इजाजत, नमस्कार।

0: आकाशवाणी के इंदौर केंद्र के योगदान से अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम, प्रसारण आकाशवाणी मध्य प्रदेश से किया गया। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, समय है एक अंतराल का।
1: 5 महीने हो गए ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए, नए स्किल सीखने हैं पर पैसे भी कमाने हैं, समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं।
2: तो फिर सोच कि तेरी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई।
1: क्या, कैसे?
2: अरे मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, 12th ITI डिप्लोमा और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, जहां तुम स्किल्स भी सीख सकते हो और 10,000 तक का स्टाइपेंड भी कमा सकते हो।
1: वाह, अच्छा रजिस्टर कैसे करें?
2: mmsky.mp.gov.in पर। MMSky, सीखो भी कमाओ भी।
3: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।

0: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा
1: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
2: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
0: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
1: आकाश

0: फनी है ना।
1: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
2: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
3: शाम सुहानी हो,
4: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना।
5: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, 1:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम लोक संगीत, प्रस्तुति आकाशवाणी के इंदौर केंद्र की है। आज इसमें आप सुनेंगे भैरू सिंह चौहान और साथियों के गाए लोकगीत।

इसी के साथ लोक संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। प्रस्तुति आकाशवाणी के इंदौर केंद्र की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम सुगम संगीत। प्रस्तुति आकाशवाणी के इंदौर केंद्र की है और आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे यूनुस मलिक की आवाज़ में चंद्र रचनाएं।

यूनुस मलिक की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे चंद रचनाएं। इसी के साथ सुगम संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, समय है एक अंतराल का। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से श्रोताओं, महत्वपूर्ण सूचना। पुलिस आयुक्त नगरीय पुलिस भोपाल द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत भोपाल के पॉलिटेक्निक चौराहा, आकाशवाणी चौराहा एवं किलोल पार्क चौराहा तथा इन चौराहों के मध्य आने वाले समस्त स्थानों पर किसी भी प्रकार के हड़ताल, धरना, प्रदर्शन, आंदोलन एवं पुतला दहन कार्यक्रम आयोजित किए जाने के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। यह प्रतिबंधात्मक आदेश आगामी 2 माह यानी 20 अक्टूबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। अतः आम नागरिकों से अपील है कि उक्त प्रतिबंधात्मक आदेशों का पालन करें तथा कानून व्यवस्था एवं लोक शांति बनाए रखने में पुलिस एवं प्रशासन का सहयोग करें। महत्वपूर्ण सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

अंतराल का समय पूरा हुआ, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत। सबसे पहले सुनवाते हैं तपस्या फिल्म का गीत, किशोर कुमार और आरती मुखर्जी की आवाज़ों में। गीत लिखा है MG हशमत ने और संगीत रविंद्र जैन का है।

तपस्या फिल्म के इस गीत के बाद अब आपको सुनवा रहे हैं साथ साथ फिल्म का गीत जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाजों में। गीत लिखा है जावेद अख्तर ने, संगीत कुलदीप सिंह का है।

जावेद अख्तर का लिखा गीत अभी आपने सुना साथ साथ फिल्म से। आवाज़ें थी जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की और इसे संगीत दिया था कुलदीप सिंह ने। इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी सदस्य देशों से आतंकवाद के वित्त पोषण, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद पर दोहरे मापदंड के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया सहित विश्व के विभिन्न भागों में जारी संघर्षों पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि युद्ध और संघर्ष किसी समस्या का समाधान नहीं है तथा सभी विवादों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल में प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत प्रदेश के 1,21,000 से अधिक विद्यार्थियों के खातों में लैपटॉप खरीदने के लिए 304 करोड़ रुपये से अधिक की प्रोत्साहन राशि सिंगल क्लिक से अंतरित की। इस कार्यक्रम में विभिन्न संभागों से चयनित 10 विद्यार्थियों को लैपटॉप भी वितरित किए गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मेधावी विद्यार्थियों से संवाद कर उनके अनुभव और भविष्य की योजनाएं भी जानी।
1: शासन ने आपको लैपटॉप दिया है, केवल इतना ही बोलना चाहूंगा कि सफलता मिली है, लेकिन सफलता को सिर पे मत चढ़ने देना। असफलता अगर आ जाए तो असफलता को भी दिल पे मत लगाना। हम जो है, जहां है, वही सामान्य बने रहे। मेरिट का बोर्ड में अगर सूची बनती है तो 50% से ज्यादा बच्चे सरकारी स्कूलों से आते हैं। आगे बढ़ने का जज्बा कायम रखें। देश आपको आगे बढ़ता देखना चाहता।
0: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज शिवपुरी जिले के दौरे पर रहेंगे। वे शिवपुरी और कोलारस में कई विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। श्री सिंधिया अमृत भारत रेलवे स्टेशन और पोहरी रेलवे ओवरब्रिज का निरीक्षण भी करेंगे। इसके अलावा स्कूल भवन, स्वास्थ्य केंद्र, सड़क और बिजली से जुड़े कई विकास कार्यों का शुभारंभ भी श्री सिंधिया करेंगे। कोलारस में उज्जैनी एक्सप्रेस के नए ठहराव का शुभारंभ भी किया जाएगा। वहीं मौसम की खबर में, प्रदेश में अगले 4 दिन तक भारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज उमरिया और बालाघाट में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि सतना, रीवा, पन्ना, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, कटनी, मैहर, शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी, जबलपुर, मंडला, सिवनी और छिंदवाड़ा में भारी बारिश की चेतावनी है। सतना जिले में बारिश के बाद मंदाकिनी, गंगा और सेमरावल नदियों का जल स्तर फिर बढ़ रहा है। सतना सांसद गणेश सिंह ने लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है।
2: मैं नागरिकों से अपील करता हूं कि सभी लोग अपने परिवार के साथ सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। प्रशासन ऑलरेडी इन सारी व्यवस्था में लगा है, हमारे कार्यकर्ता भी इस काम पर लगे हैं, लेकिन चूंकि पानी फिर से बढ़ता जा रहा है इसलिए सतर्क होने की जरूरत है। भोजन और दवाइयां, पानी आदि का इंतजाम कई समाजसेवी संस्थाओं के और प्रशासन की तरफ से और पंचायतों की तरफ से किया जा रहा है।
0: अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पहले दौर में विश्व वरीयता प्राप्त एरिना सबालेंका ने न्यूयॉर्क में कोलंबिया की कैमिला ओसोरियो को 6-2, 6-4 से हरा दिया है। सबालेंका का अगला मुकाबला रूस की पोलिना इयासेंको से होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। महू स्थित इन्फेंट्री स्कूल ने अपना 78वां स्थापना दिवस आज मनाया। इस अवसर पर स्कूल के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल विजय बी नायर ने युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। नर्मदापुरम में बीपीएल श्रेणी की बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विशेष प्रशिक्षण के तहत शासकीय आईटीआई में फैशन डिजाइनिंग, कोपा और स्टेनोग्राफी में प्रवेश दिया गया है। झाबुआ कलेक्टर डॉ. योगेश तुकाराम ने ओवर स्पीडिंग, मॉडिफाइड व सुपर बाइक चालकों के खिलाफ व्यापक अभियान चलाने और सोशल मीडिया के जरिए निगरानी तथा कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए हैं। मुरैना में कृषि उपज मंडी परिसर में 4 सितंबर को आयोजित बलराम कृषि महोत्सव के जिला स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव वर्चुअली जुड़कर जिले के किसानों से संवाद करेंगे। और आगरमालवा के सरस्वती शिशु मंदिर में आज से शुरू हुई 37वीं 3-दिवसीय क्षेत्रीय खेल प्रतियोगिता में मध्य भारत, मालवा, महाकौशल और छत्तीसगढ़ के करीब 350 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे दोपहर समाचार।

0: रेलवे ने उत्तरी रेलवे के लिए मुरादाबाद संभाग के शेष 712 किलोमीटर रेल मार्ग पर कवच योजना के चौथे चरण के लिए 170 करोड़ रुपए मंजूर किए। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 987 हुई। आकाशवाणी एफएम गोल्ड आज अपनी रजत जयंती मना रहा है और छत्तीसगढ़ में बारिश का रेड अलर्ट। झारखंड, ओडिशा और पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी सदस्य देशों से आतंकवाद के वित्त पोषण, आतंकवादियों की भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के प्रति कतई बर्दाश्त न करने की नीति और दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के विभिन्न भागों में जारी संघर्षों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि युद्ध और संघर्ष किसी समस्या का समाधान नहीं है तथा सभी विवादों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को सुगम बनाते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। हालांकि इन प्रयासों में सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना अत्यंत आवश्यक है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले वर्ष भारत ने शंघाई सहयोग संगठन सभ्यता संवाद मंच का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि इसका पहला सत्र इस वर्ष भारत में आयोजित किया जाएगा। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: आज किर्गिस्तान में हुए शिखर सम्मेलन के बाद शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेताओं ने बिश्केक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। संगठन की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जारी बिश्केक घोषणा पत्र के साथ साथ सदस्य देशों ने संस्थागत ढांचों को बेहतर बनाने और नए सुरक्षा खतरों का मुकाबला करने के उद्देश्य से व्यापक प्रस्तावों पर भी हस्ताक्षर किए। वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारामन ने आयातित ऊर्जा और उर्वरकों पर देश की निर्भरता को स्वीकार करते हुए कहा है कि भारत ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों के अनुरूप ढलने की क्षमता प्रदर्शित की है। इसके बावजूद उसकी विकास दर पटरी से नहीं उतरती। वित्त मंत्री ने भारत को एक जीवंत और प्रतिक्रियाशील अर्थव्यवस्था बताया जो बाहरी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर 7.8% रही। ये भारतीय रिजर्व बैंक के 7% के अनुमान से अधिक है। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में जीडीपी वृद्धि दर 6.9% थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि को देशवासियों की मेहनत और सामूहिक संकल्प का परिणाम बताया है। आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अस्थिरता जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है।
2: देशवासियों को मैं बधाई देता हूं उनके संकल्प शक्ति के लिए, उनके पुरुषार्थ के लिए। एक सामूहिक शक्ति का एक प्रतिबिंब है। दुनिया युद्ध में डूबी हुई है, चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही है, विश्व संकटों से घिरा हुआ है, सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब है। 2020 में कोविड काल से लेकर अब तक कहीं पर भी स्थिरता नजर नहीं आ रही, उसके बावजूद भी भारत तेज गति से प्रगति कर रहा।
0: नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 987 हो गई है। अधिकारियों के अनुसार सुरक्षा बलों ने देश के 8 जिलों से और शव बरामद किए हैं। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 583 विदेशियों और कई सुरक्षा कर्मियों समेत करीब 4000 लोग अभी भी लापता हैं, जबकि लगभग 12000 लोगों को बचा लिया गया है। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने नेपाल में बाढ़ पीड़ितों के शवों की पहचान और स्वदेश वापसी से संबंधित जानकारी साझा की है। दूतावास ने बताया कि नेपाल सरकार के अनुसार विदेशी नागरिकों के शवों को सौंपने के लिए कई चरणों की आवश्यकता होती है। इनमें शवों का दस्तावेजीकरण, तस्वीरें और विवरण रिकॉर्ड करना, पोस्टमार्टम, मृत्यु के कारण का सत्यापन, औपचारिक पहचान, उंगलियों के निशान, डीएनए और अन्य फॉरेंसिक नमूनों का संग्रह, मृतक के पासपोर्ट या पहचान पत्र का सत्यापन और दूतावास या वाणिज्य दूतावास के साथ समन्वय शामिल है। दूतावास ने कहा कि यदि रिश्तेदार और परिवार के सदस्य नेपाल पुलिस की वेबसाइट

0: उपलब्ध तस्वीरों और विवरणों के माध्यम से शवों की पहचान कर पाते हैं तो दूतावास शवों को सौंपने और स्वदेश वापसी के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय करने में मदद करेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नेपाल त्रासदी के दौरान मानवीय सहायता और बचाव कार्यों में सशस्त्र सीमा बल SSB की भूमिका अत्यंत सराहनीय है। बल के शपथ ग्रहण समारोह पर अपने लिखित संदेश में श्री शाह ने कहा कि संकट के समय SSB की त्वरित, समन्वित और संवेदनशील कार्रवाई उसके आदर्श वाक्य सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व का जीवंत प्रमाण है। समारोह में गृह सचिव गोविंद मोहन ने कहा कि देश की सीमाओं की सुरक्षा गृह मंत्रालय और सरकार के लिए महत्वपूर्ण है। SSB के 18 जवानों को वीरता पदक और 5 जवानों को विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए गए। गृह सचिव ने SSB की आवासीय परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और यूट्यूब पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रेलवे ने उत्तरी रेलवे के अंतर्गत मुरादाबाद संभाग के शेष 712 किलोमीटर रेलमार्ग पर कवच योजना के चौथे संस्करण के लिए 170 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। रेल मंत्रालय ने कहा कि इससे रेलवे सुरक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। कवच स्वदेशी रूप से निर्मित स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली है। भारतीय रेलवे ने पूर्वी मध्य रेलवे के समस्तीपुर डिवीजन के 21 स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के लिए 233 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। रेल मंत्रालय ने कहा कि इस आधुनिक प्रणाली से पूरे डिवीजन में रेलवे सिग्नल के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। ये स्वदेशी स्वचालित रेलगाड़ी सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन को भी सुगम बनाएगी। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज कहा कि सरकार ने 2029 तक 3,00,000 करोड़ रुपए के वार्षिक रक्षा उत्पादन और 50,000 करोड़ रुपए के रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा है। नई दिल्ली में सेंटर फॉर ज्वाइंट वॉरफेयर स्टडीज के दूसरे वार्षिक ट्राइडेंट व्याख्यान में श्री सेठ ने कहा कि देश का रक्षा उत्पादन लगभग 1.78 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इसने भारत की बढ़ती रक्षा आत्मनिर्भरता को प्रदर्शित किया। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू आज शाम अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाओं का उद्घाटन करेंगे। एयर इंडिया द्वारा संचालित पहली इजी कनेक्ट सेवा उड़ान अहमदाबाद से रवाना होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये उड़ान दिल्ली होते हुए दुनिया भर में अलग अलग स्थानों तक यात्री सेवा उपलब्ध कराएगी।
2: अहमदाबाद में इस फैसिलिटी की शुरुआत के साथ गुजरात का यह प्रमुख शहर भारत के बढ़ते हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क में वाराणसी और अमृतसर के बाद तीसरा क्षेत्रीय केंद्र बन जाएगा। यह पहल सरकार की उस व्यापक योजना का हिस्सा है जिसका मकसद छोटे और गैर मेट्रो शहरों से विदेश जाने वाले यात्रियों के हवाई सफर को आसान और सुविधाजनक बनाना है। इजी कनेक्ट सुविधा के तहत यात्री अब अपने आखिरी विदेशी गंतव्य के लिए चेक इन, सामान जमा करने से लेकर कस्टम और इमिग्रेशन जैसी सभी जरूरी औपचारिकताएं सीधे अहमदाबाद एयरपोर्ट पर पूरी कर सकेंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि दिल्ली जैसे प्रमुख हब एयरपोर्ट पर उतरने के बाद यात्रियों को अपना सामान दोबारा लेने, फिर से सुरक्षा जांच कराने या इमिग्रेशन की लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे सीधे अपने अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट के प्रस्थान गेट तक जा सकेंगे। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि हर गुजरते साल के साथ AI समाज में तेजी से शामिल हो रहा है। उन्होंने कहा कि अब कम उम्र के विद्यार्थी भी पढ़ाई और रोजमर्रा के कामों में AI का इस्तेमाल कर रहे हैं। श्री जोशी आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT के 66वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। आकाशवाणी FM गोल्ड आज अपनी रजत जयंती मना रहा है। ये चैनल वर्ष 2001 में 1 सितंबर को शुरू हुआ था। ये AIR FM गोल्ड के नाम से प्रसिद्ध है। FM गोल्ड पर समाचार, समसामयिक मामलों और मनोरंजन के विभिन्न कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। एक रिपोर्ट।
3: श्रोताओं, इस धुन को सुनते ही आपके मन में आकाशवाणी की अमर विरासत से जुड़ा एक अद्भुत उत्साह उमड़ने लगा होगा। जी हाँ, ये वही धुन है जिसने पीढ़ियों को ज्ञान और मनोरंजन से जुड़े कार्यक्रमों के माध्यम से आकाशवाणी से जोड़ा। पिछले कुछ वर्षों में एफएम गोल्ड आकाशवाणी की प्रमुख रेडियो सेवाओं में से एक बनकर उभरा है। इस चैनल पर नियमित समाचार बुलेटिन और सुर्खियाँ प्रसारित होती है। साथ ही इस चैनल पर समसामयिक और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। एफएम गोल्ड के कुछ लोकप्रिय कार्यक्रमों में स्पॉटलाइट, मार्केट मंत्रा, स्पोर्ट्स स्कैन और कंट्री वाइड शामिल हैं। वहीं आज सवेरे और परिक्रमा जैसे कार्यक्रम भी श्रोताओं को खासे पसंद आते हैं। ये तो बात हुई एफएम गोल्ड के प्रमुख कार्यक्रमों की, लेकिन इसके अलावा भी इस चैनल ने पिछले दो दशकों में श्रोताओं को मनमोहक संगीत से मनोरंजित किया है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के वाक्य के साथ आकाशवाणी लगातार जनता के बीच विश्वसनीय और सटीक जानकारी का माध्यम बना हुआ है। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और पीबी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। उत्तराखंड में पिछले दो दिन से हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित है।
5: मैदानी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर जलभराव के कारण आमजन को आवाजाही में परेशानी हो रही है। वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में कई स्थानों पर भूस्खलन के कारण 100 से अधिक ग्रामीण संपर्क मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए अवरुद्ध हैं। उधर अल्मोड़ा में भारी बारिश के चलते सोमेश्वर के बड्यूडा में देर रात एक मकान के भूस्खलन की चपेट में आने से 3 लोग की मृत्यु हो गई। वहीं देहरादून के प्रेमनगर क्षेत्र में तेज बहाव में आने से एक वाहन में सवार 2 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। इस बीच मौसम विभाग ने आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: झारखंड में तेज बारिश जारी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।
6: मौसम केंद्र के अनुसार आज झारखंड के लगभग सभी हिस्सों में बादल छाए रहने के साथ मध्यम से भारी बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने राज्य के सभी जिलों में अगले 24 घंटे के लिए कम से मध्यम स्तर के फ्लैश फ्लड का खतरा जताया है। गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में अचानक तेज बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव और फ्लैश फ्लड की स्थिति बन सकती है, जिसे देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। वहीं रांची, खूंटी, चतरा और सरायकेला खरसावा में येलो अलर्ट जारी करते हुए कहीं कहीं भारी बारिश, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: घरेलू शेयर बाजारों में आज दोपहर कारोबार में गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 43 अंक की गिरावट से 76,915, जबकि निफ्टी 51 अंक की गिरावट के साथ 24,030 पर कारोबार कर रहा था। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पहले दौर में विश्व वरीयता प्राप्त एरिना सवालेंका ने न्यूयॉर्क में कोलंबिया की कैमिला ओसोरियो को पराजित कर दिया है। सवालेंका का अगला मुकाबला रूस की पोलिना यात्सेन्को से होगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद पर दोहरे मापदंड खत्म करने का आह्वान किया। भारतीय रेलवे ने उत्तरी रेलवे के मुरादाबाद संभाग के शेष 712 किलोमीटर रेल मार्ग पर कवच योजना के चौथे चरण के लिए 170 करोड़ रुपए मंजूर किए। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 987 हुई। आकाशवाणी एफएम गोल्ड आज अपनी रजत जयंती मना रहा है और छत्तीसगढ़ में बारिश का रेड अलर्ट, झारखंड, ओडिशा और पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

प्रस्तुत कर रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं अजनबी फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज में है, साथ में लता मंगेशकर की आवाज भी है।

गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत आरडी बर्मन का है। और इस गीत की फरमाइश हमें मिली है धामणी मानोरा जिला वाशिम से तुलसीराम डेरे, मायावती, संदेश, आदेश, किरण और प्रज्वल डेरे और अनुत डेरे की, घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। और इसी गीत को पसंद किया है छत्तीसगढ़ के ये हमारे श्रोता है, छत्तीसगढ़ के दतरिंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू और चरडोंगरी पिपरिया से दुर्गाराम साहू। हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद पर अजनबी फिल्म का ये गीत आपके रेडियो सेट पर।

0: आपकी फरमाइश कार्यक्रम में आइए, अब आपको हम सुनवा रहे हैं हमारे इन श्रोताओं की पसंद का गीत। ये पत्र हमें मिला है पालदा नाका इंदौर से हसीना बी मंसूरी, अमीना बी और मोहम्मद रफ़ी मंसूरी का। साथ ही साथ ये पत्र हमें मिला है यादव मोहल्ला सनावद मध्य प्रदेश से दिलीप मालाकार, सुनीता मालाकार, मुस्कान मालाकार, जितेंद्र धर्मेंद्र मालाकार का। और गोलाबाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित। हमारे ये सभी श्रोता सुनना चाहते हैं प्रेम कहानी फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और इसे सुरों से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: सुनो

आपकी फरमाइश कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं और सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में मजरू सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत। इसे संगीतबद्ध किया है आरडी बर्मन ने और फिल्म का नाम है अभिलाषा। और इस गीत को सुनने की अभिलाषा पत्र के माध्यम से हमें मिली है जयराज प्लॉट राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जासमीन और प्रयागराज भट्ट, गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस, तपस्या और करिश्मा कामले की। और थाना रोड बक्सर से ये हमारे श्रोता है ज्योत गुप्ता, आशीष गुप्ता, सतीश गुप्ता, आयुष, आयुषी और सानवी। और नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नुपुर, ऋषिका और रॉबिन। इन सभी की पसंद पर अभिलाषा फिल्म की ये गीत रचना।

बहुत ही खूबसूरत सी फरमाइश है हमारे श्रोताओं की तरफ से मिल रही है। सचमुच गीतों को सुनते सुनते एक माहौल सा बन गया है और यही माहौल और भी खूबसूरत बना रहे, इसके लिए अब हम आपको सुनवा रहे हैं विक्टोरिया नंबर 203 इस फिल्म का गीत किशोर कुमार और महेंद्र कपूर की आवाज़ों में। गीत लिखा है वर्मा मलिक ने और इसकी धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने, और इस गीत को पसंद किया है 51 नंबर पुलिस चौकी गरीब नवाज कॉलोनी इंदौर से रेखा संतोष रघुवंशी, शोभा भूपेंद्र रघुवंशी, बबीता सुरेंद्र, पूजा विकी रघुवंशी, स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, कुमारी देविका चौधरी, गणेश कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे और ललिता नारायण खर्चे। और ये खत हमें मिला है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप और कालका से सुभाष, कालका से ये है शुभचंद्र बजाज, साहिल और बिट्टा बजाज। और ये खत कवाई बारा राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी, हर्षिता, अभिषेक का हमें मिला है। और ग्राम सनोतिया से ये श्रोता है मांगीलाल चंदेल, अरविंद, अशोक और राजकुमार हिमांशु, ये सभी सुनना चाहते हैं विक्टोरिया नंबर 203 का ये गीत।

जी हाँ श्रोताओं, आप भी थोड़ा सा रुक जाइए और चलते चलते सुनिए कार्यक्रम का ये आखिरी गीत, जिसे हमने लिया है निकाह फिल्म से गुलाम अली की आवाज़ में। इसे लिखा है हसरत मोहनी ने और संगीत गुलाम अली का है। और इस गीत को पसंद करने वाले हमारे ये श्रोता हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, छाबड़ा राजस्थान से आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और शमीम बानो। और ये खत हमारे पास आया है लक्ष्मीबाई अनाज मंडी रोड वंदना नगर इंदौर से राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न खर्चे, ललिता नारायण खर्चे, गणेश कार्तिक खर्चे, मालती स्वाति प्रयाग चौधरी और सिंहपुर बड़ा से ये हमारे श्रोता हैं राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा।

गुलाम अली की आवाज़ में निकाह फिल्म की ये गज़ल अभी आप सुन रहे थे। इसी के साथ श्रोताओं, आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अब पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी सदस्य देशों से आतंकवाद के वित्त पोषण, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल में प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत प्रदेश के 1,21,000 से अधिक विद्यार्थियों के खातों में लैपटॉप खरीदने के लिए 304 करोड़ रुपए से अधिक की प्रोत्साहन राशि सिंगल क्लिक से अंतरित की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT के 66वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि हर गुजरते साल के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाज में तेजी से शामिल हो रहा है। उन्होंने कहा कि अब कम उम्र के विद्यार्थी भी पढ़ाई और रोजमर्रा के कामों में AI का इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत के विनिर्माण क्षेत्र में अगस्त में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, वहीं विकास की गति 5 साल के निचले स्तर पर आ गई है। आज जारी की गई HSBC इंडिया विनिर्माण क्रय प्रबंधक सूचकांक एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले महीने जुलाई के 53.5 से गिरकर 52.8 हो गया। और मौसम विभाग ने आज उमरिया और बालाघाट में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि सतना, रीवा, पन्ना, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, कटनी, मैहर, शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी, जबलपुर, मंडला, सिवनी और छिंदवाड़ा जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। मीडियम वेव पर सभा समाप्त करने से पूर्व लीजिए सुनिए हमारे आज सांध्यकालीन सभा में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। मीडियम वेव पर सांध्यकालीन सभा आरंभ होगी 5 बजे से। 5:02 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी। प्रस्तुति

आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की होगी। साथ ही साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 5:33 पर, रात 8:15 पर और रात 10:00 और 6:30 पर आप सुनेंगे चित्रपट संगीत। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम होगा शाम 6:00 से। आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से 7:30 से आप सुनेंगे कार्यक्रम किसान वाणी। रात 8:00 आकाशवाणी मध्य प्रदेश से पुनः जुड़कर सुनिए कार्यक्रम सुर्खियों में। उर्दू कार्यक्रम आईना का समय है रात 9:30 का और रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होगा राग रजनी, जिसमें आज आपको सुनवाया जाएगा डॉक्टर एन राजम का वायलिन पर बजाया राग यमन। ये थी जानकारी हमारे सांध्यकालीन सभा में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की। मीडियम वेव 188.32 यानी 1593 किलोहर्ट्स डीटीएच के ऑडियो चैनल, न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन और वेव्स ओटीटी ऐप पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। दोपहर के 3:02 हुए हैं। मीडियम वेव पर अब हमारी ये सभा यहीं समाप्त करते हैं। शाम 5:00 इन्हीं मीटर्स पर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। इस दौरान डीटीएच के ऑडियो चैनल पर प्रसारण जारी रहेगा। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। डीटीएच के श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं और कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवाते हैं लोक संगीत कार्यक्रम। आज इसमें आप सुनेंगे लोकगीत भैरू सिंह चौहान और साथियों के गाए।

लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। DTH के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। सुगम संगीत कार्यक्रम में सुनिए यूनुस मलिक की गाई गजलें।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे यूनुस मलिक की गाई कुछ रचनाएं। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है और इसे आपने ट्यून किया है DTH के ऑडियो चैनल पर।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप है आकाशवाणी भोपाल के साथ और दोपहर के 3:30 हुए हैं। प्रस्तुत है चित्रपट संगीत। सबसे पहले सुनते हैं एसपी बालासुब्रमण्यम और लता मंगेशकर की आवाजों में एक दूजे के लिए फिल्म का गीत, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

और लीजिए अब सुनिए लैला फिल्म का गीत लता और मनमोहन सिंह की आवाजों में। गीत लिखा है सावन कुमार ने, संगीत

चित्रपट संगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं डीटीएच के ऑडियो चैनल पर और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का भोपाल केंद्र। आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में योगेश का लिखा गीत, जिसे संगीत से सवारा है सलील चौधरी ने और फिल्म का नाम है छोटी सी बात।

मेरे हमसफ़र। अब सुनिए इस फिल्म का गीत। लता मंगेशकर और मुकेश की युगल आवाज़ों में आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा है। संगीत कल्याण जी आनंद जी का है।

कार्यक्रम के आखिरी में सुनिए मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीत मजरू सुल्तानपुरी का है और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म के इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26वें शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद किर्गिस्तान के बिश्केक से नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल में प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत प्रदेश के 1,21,000 से अधिक विद्यार्थियों के खातों में लैपटॉप खरीदने के लिए 304 करोड़ रुपये से अधिक की प्रोत्साहन राशि सिंगल क्लिक से अंतरित की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT के 66वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि हर गुजरते साल के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाज में तेजी से शामिल हो रहा है। उन्होंने कहा कि अब कम उम्र के विद्यार्थी भी पढ़ाई और रोजमर्रा के कामों में AI का इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत के विनिर्माण क्षेत्र में अगस्त में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, वहीं विकास की गति 5 साल के निचले स्तर पर आ गई है। आज जारी की गई HSBC इंडिया विनिर्माण क्रय प्रबंधक सूचकांक की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले महीने जुलाई के 53.5 से गिरकर 52.8 हो गया है। और मौसम विभाग ने आज उमरिया और बालाघाट में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि सतना रीवा पन्ना मऊगंज सीधी सिंगरौली कटनी मैहर शहडोल अनूपपुर डिंडौरी और जबलपुर तथा मंडला सिवनी और छिंदवाड़ा में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम शब्द सागर। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे कुछ लघु कथाएं कहानीकार मेघा मेथिल से और मणिमोहन मेहता से काव्य पाठ। पहले सुनते हैं लघु कथाएं मेघा मेथिल से।
1: सभी को मेरा नमस्कार। मैं अपनी लघु कथा का पाठ कर रही हूँ। मेरी पहली लघु कथा का शीर्षक है भाग्यवान कौन। वह मायके जाने के लिए बस स्टॉप पर खड़ी बस का इंतजार कर रही थी। रह रहकर माँ का भोला वाला अपलप्त से परिपूर्ण चेहरा उसकी आंखों में तैर जाता था। आंखों से बहते हुए आंसुओं के अविरल झरने पर उसने जैसे तैसे काबू पाया। तभी अचानक उसकी बस आ गई और वह अपना बैग संभालते हुए सीट पर जा बैठी। रात भर वह ठीक से सो ना सकी थी। खिड़की से आती ठंडी हवा के झोंकों में उसकी हल्की सी आंख लग गई। वह अपने घर के सामने खड़ी है। माँ को देखते ही वह दौड़कर माँ के गले से लिपट गई। माँ ने उसे अपनी बाहों में समेटकर उसका माथा चूम लिया और बोली, अरे मेरी लाड़ो, कितनी दुबली हो गई है। आ, घर के अंदर आ, मैंने तेरी पसंद के शुद्ध घी के मालपुए बनाए हैं और चटपटा नमकीन भी। अरे लगता है तू बहुत थक गई है, आ पहले थोड़ा आराम कर ले, पहले हाथ मुंह धोकर ठंडा पानी तो पी ले। माँ बिना रुके ही बोले जा रही थी। चलो मोहन खेड़ी की सवारी हो, जल्दी जल्दी उतरो। कंडक्टर का कर्कश स्वर बस में गूंजा और वह हड़बड़ाकर उठ बैठी। उसकी मंजिल आ गई थी। वह घर में जैसे ही पहुंची, दूर से ही सफ़ेद साड़ी में लिपटी दरवाजे पर उसकी अपनी बुआ दिखाई दी। उसने सोचा, माँ की अभी उम्र ही क्या थी, कुल 60 वर्ष। भले चंगी तो थी, किस्मत ही खराब थी जो सबको यूं अचानक छोड़कर चली गई। और एक बुआ जी को देखो, कितने अच्छे भाग्य हैं जो 90 वर्ष की उम्र में भी। इतने में वह बुआ के गले से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। चल चुप जा, चुप हो जा मेरी बेटी, बुआ ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा। एक दिन तो सबको जाना ही है। तेरी माँ तो बड़ी भगवान थी जो माथे पर बिंदी सजाए सुहागन गई है। मुझ अभागन को तो देख, बरसों से सूने मांग लिए, उम्र के इस पड़ाव पर संसार सागर के थपेड़े खाने को विवश हूँ। अब वह माँ को भूलकर बुआ को सांत्वना दे रही थी। मेरी दूसरी लघु कथा का शीर्षक है रिश्ता। अरे रूपा, क्या कर रही हो? दीदी आने वाली है और तुमने अभी तक तैयारी नहीं की। ना ही तुम तैयार हुई हो। मैं बाजार से मिठाई लेकर आता हूँ, तब तक तुम तैयार हो जाना। आज भाई बहन के पावन प्रेम का प्रतीक पर्व रक्षाबंधन है ना? हाँ वो तो है, रूपा ने धीरे से कहा। रूपा भी मन ही मन अपने मायके जाने के लिए और अपने छोटे भाइयों को राखी बांधने के लिए तड़प रही थी। परंतु वह अब मायके क्या मुँह लेकर जाएगी? कुछ ही महीने पहले की तो बात है जब उसने भाइयों से लड़कर जमीन में बराबरी का हिस्सा ले लिया था। आखिर उसने अपने कानूनी अधिकार का प्रयोग करते हुए कि बेटियां भी पैतृक संपत्ति में बराबर की हकदार हैं, अपना अधिकार स्थापित किया था। उस समय माँ ने कितना समझाया था कि देखो रूपा, जमीन जायदाद की हिस्सेदारी में तुम्हारे और भाइयों के दिलों में कहीं दरार न पड़ जाए। पर माँ की नसीहत मुझे उस समय बहुत बुरी लगी थी। माँ तुम्हें तो कुछ सूझता ही नहीं है। आज खेती की जमीन तो छोड़ो, बंजर ऊसर जमीनों की कीमत भी करोड़ों में है। यदि हमें जमीन का कुछ भाग भी मिल जाए तो हम भी करोड़पति बन जाएंगे। और अभी तो राज का बिजनेस भी ठीक नहीं चल रहा है। रूपा आंखों में आंसू भरे हुए यह सब सोच ही रही थी कि तभी दरवाजे पर आहट हुई और राज की आवाज़ आई। देखो रूपा, कौन आया है? रूपा बिना देखे ही किचन के अंदर चली गई। उसने सोचा कि राज की दीदी आई होंगी, परंतु एक और आवाज़ ने उसे चौंका दिया। दीदी, मैं आया हूँ, आपका प्यारा भाई मोहन। रूपा की आंखों का समंदर छलक उठा और वह भाई की ओर खिंची चली गई, उसका हालचाल पूछने लगी। मोहन बोला, चलो दीदी, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, माँ ने कहा है कि दीदी को ले आओ। शीर्षक है विदेश यात्रा। पति के चेहरे पर परेशानी के भाव देखकर पत्नी ने यूं ही पूछ लिया, क्यों जी, कुछ परेशानी है क्या? पति ने कहा, हाँ कुछ ऐसा ही है, कल के कार्यक्रम की रूपरेखा से लेकर समापन तक की सारी जिम्मेदारी मुझे सौंप दी गई है, मनचाही अतिथियों की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो वरिष्ठ साहित्यकार वर्मा जी को आमंत्रित कर लीजिए, पत्नी ने सुझाव दिया। वर्मा जी अपने बेटे के पास विदेश गए हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया, तो शुक्ला जी को आमंत्रित कर लीजिए। शुक्ला जी दोनों पति पत्नी US गए हुए हैं, वहाँ उनकी बेटी की डिलीवरी होने वाली है। आजकल ज़्यादातर लोगों के बच्चे विदेशों में सेटल हो गए हैं, इसलिए हर कोई कभी ना कभी विदेश यात्रा पर जाने लगा है।

हाँ, कितना अच्छा लगता होगा ना हवाई जहाज से विदेश यात्रा करना। मैं तो चाहती हूँ कि हमारे बच्चे भी विदेश में नौकरी करें, फिर हम भी खूब विदेश यात्रा करेंगे। ओहो माँ, आप भी विदेश यात्रा करने के लिए, बच्चों का विदेश में नौकरी करना या वहाँ सेटल होना ज़रूरी नहीं है। माँ, मैं आपको और पापा को विदेश यात्रा ज़रूर करवाऊँगी। बेटी ने हौसले की उड़ान भरते हुए माँ का हाथ अपने हाथों में लिया और आत्मविश्वास से परिपूर्ण होकर बोली, इट्स माई प्रॉमिस मॉम। विदेश में सेटल हुए बच्चे पहले अपनी माटी से दूर होते हैं, फिर धीरे धीरे अपने रिश्तेदारों से दूर होते हैं, फिर अपने माँ बाप से दूर होते हैं और कुछ समय बाद अपनी ही दुनिया में मगन होकर रह जाते हैं। देखो ना माँ, अपने पड़ोस वाले अंकल जी को पैरालिसिस की बीमारी के कारण कितनी बुरी हालत में पड़े हैं, बस एक नौकर के सहारे जी रहे हैं। कहने को तो उनके भी दो दो बेटे विदेश में अच्छी सैलरी पर जॉब कर रहे हैं, फिर भी अंकल जी को कोई भी अब विदेश यात्रा करने के लिए नहीं बुला रहा है। चौथी लघु कथा का शीर्षक है निर्णय। अरे रेणु, तुम इतनी रात गए, यूं अचानक कैसे आ रहा हुआ? सीमा ने विस्मयपूर्वक पूछा। मैं सब बताऊंगी, पहले मुझे अपने घर के अंदर तो आने दो। घर के अंदर आते ही रेणु सोफे पर निढाल सी गिर पड़ी। सीमा ने उसे संभाला, ठंडा पानी पिलाया और खाना खिलाया। खाना खाकर उसे कुछ चेतना सी आई। रेणु, कुछ तो बताओ, तुम राहुल का घर छोड़कर यहाँ क्यों चली आई? अगर मैं वहाँ कुछ और दिन रहती तो वहीं मेरी कब्र बन जाती। बड़ी मुश्किल से जान बचा कर आई हूँ। राहुल मुझे अमानवीय यातनाएं दे रहा था, बात बात पर मुझे घर से भागी हुई कहकर ताने मारता है। कहता है कि यदि मैं किसी और लड़की से शादी करता तो मुझे दहेज में बहुत कुछ मिलता, जिससे मैं भी मजबूती से खड़ा हो पाता, छोटे छोटे खर्चों के लिए यूं जिल्लतों का सामना ना करना पड़ता और पापा का भी चहेता बना रहता। राहुल के प्रेम के आसमानी सतरंगी सपनों में पड़कर मैं तो कहीं की भी नहीं रही। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मैंने सोचा नहीं था कि राहुल का असली चेहरा ऐसा होगा। रेणु की आप बीती सुनकर सीमा ने एक लंबी आह भरी और बोली, रेणु अब तो एक ही रास्ता बचता है, वह है भगवान के घर का रास्ता। क्या? तो क्या मैं असमय मौत को गले लगा लूं? अरे नहीं यार, मेरा कहने का मतलब यह है कि अब तुम अपने माता पिता के घर चली जाओ। अब मैं वहाँ क्या मुँह लेकर जाऊँगी? मेरे घर से भाग जाने पर माँ पापा कितने परेशान हुए होंगे। हाँ मैं जानती हूँ कि तुम्हारी वजह से समाज में उनकी काफ़ी बेइज्जती हुई है। तुम्हारे पापा बहुत कड़क मिजाज हैं, आसानी से तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे, परंतु बेमन से ही सही तुम्हें घर में आसरा जरूर दे देंगे। आखिर में तुम्हारे जन्मदाता हैं और जन्मदाता ईश्वर का दूसरा रूप होते हैं, इस संसार के साक्षात भगवान। वे तुम्हारी जीवन रक्षा भी कर लेंगे। रेणु के चेहरे पर छाई चिंता और तनाव के भाव अब जीवन के प्रति आशा की किरण में बदलने लगे। मेरी पांचवी लघु कथा का शीर्षक है मूल्यांकन। आज 12वीं की बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ। विद्यार्थियों ने अपने अपने मोबाइल पर अपना परीक्षा परिणाम देखा। बहुत से बच्चे खुशी से झूम उठे तो किसी के चेहरे पर मायूसी थी। सीमा अपना परीक्षा परिणाम देखकर खुश नहीं थी। उसकी खामोशी देखकर माँ ने पूछा, सीमा क्या हुआ, इतने उदास क्यों हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप घर के ऊपर वाले कमरे में चली गई। माँ को पता था कि आज सीमा का परीक्षा परिणाम आया है, अतः वह भी दौड़ी दौड़ी उसके कमरे में पहुँच गई। सीमा माँ के गले लगकर बोली, माँ मुझे इतने कम अंकों की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मैंने तो सभी प्रश्नों के सही सही उत्तर लिखे थे, परंतु पता नहीं कहाँ चूक हो गई। मेरा इतना खराब परीक्षा परिणाम देखकर सब दोस्त हंसेंगे, मेरा तो मर जाने को जी कर रहा है। माँ ने समझाया, बेटी एक परीक्षा परिणाम बिगड़ने से कुछ नहीं होता है, जिंदगी बहुत बड़ी है, अभी तो तुम्हें बहुत सी परीक्षाएं पास करनी हैं। जान है तो जहान है, असफलता जिंदगी का अंत नहीं अपितु

0: एक नई शुरुआत होती है। तभी टीवी पर चल रहे समाचारों में बताया गया कि बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं जांचने वाले एक अध्यापक ने अपने काम का बोझ कम करने के उद्देश्य से उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य अपने ही स्कूल के एक चपरासी को सौंप दिया। यह समाचार सुनकर माँ बेटी के दिल के दरवाजे पर मानो एक जोरदार धक्का लगा और दोनों एक दूसरे को देखने लगीं।
1: मेघा मैथिल से अभी आप सुन रहे थे लघु कथाएं, और अब सुनिए मणिमोहन मेहता से काव्य पाठ।
2: कुछ कविताएं पढ़ रहा हूं। पहली कविता है जिसका शीर्षक है जंगल। एक पुराना पेड़ बार बार लौटता है जंगल के स्वप्न में। एक पुराना पेड़ बार बार लौटता है जंगल के स्वप्न में, एक उदास चिड़िया के साथ। एक पुराना पेड़ बार बार लौटता है जंगल के स्वप्न में, एक उदास चिड़िया के साथ। चिड़िया इस स्वप्न के भीतर अपना घोंसला ढूंढती है। चिड़िया इस स्वप्न के भीतर अपना घोंसला ढूंढती है और एक बार फिर भर भरा कर गिर जाता है पेड़ जंगल की छाती पर। चिड़िया इस स्वप्न के भीतर अपना घोंसला ढूंढती है और एक बार फिर भर भरा कर गिर जाता है पेड़ जंगल की छाती पर। एक दूसरी कविता है जिसका शीर्षक है पते। मधुमक्खियों के पास लताओं, झाड़ियों, दरख्तों और फूलों के पते हैं। मधुमक्खियों के पास लताओं, झाड़ियों, दरख्तों और फूलों के पते हैं। बार बार अपना घर बदलती हैं ऋतुएं। बार बार अपना घर बदलती हैं ऋतुएं। मधुमक्खियों के पास इन ऋतुओं के पक्के पते हैं। मधुमक्खियों के पास इन ऋतुओं के पक्के पते हैं। एक और छोटी सी कविता है जिसका शीर्षक है माँ। भाषा के संसार में बची रहने दो चंद्रबिंदु। भाषा के संसार में बची रहने दो चंद्रबिंदु। जरा सोचो इस तरह बिना चंद्रबिंदु के माँ लिख देने से क्या बन रहा है माँ का बिंब तुम्हारे जहन में। जरा सोचो इस तरह बिना चंद्रबिंदु के माँ लिख देने से क्या बन रहा है माँ का बिंब तुम्हारे जहन में। एक और कविता है इसका शीर्षक है मातुल। ओघड़ शिव के हिस्से में आया बीहड़ में खिलता यह फूल। ओघड़ शिव के हिस्से में आया बीहड़ में खिलता यह फूल। शिव की तरह इसे भी पसंद है एकांत। शिव की तरह इसे भी पसंद है एकांत। बिना किसी बाड़ या बागड़ के खिला हुआ अपने ही बीहड़ में उन्मत्त। बिना किसी बाड़ या बागड़ के खिला हुआ अपने ही बीहड़ में उन्मत्त। जैसे किसी की प्रतीक्षा नहीं मातुल को। जैसे किसी की प्रतीक्षा नहीं मातुल को। एक और छोटी सी कविता है इसका शीर्षक है हर सिंगार। रात में किसी वक्त खिलकर झरे हैं हर सिंगार के फूल। रात में किसी वक्त खिलकर झरे हैं हर सिंगार के फूल। सुबह के एक कोने में, सुबह के एक कोने में बिखरा हुआ है खुशबू का एकांत। सुबह के एक कोने में बिखरा हुआ है खुशबू का एकांत। अगली कविता है इसका शीर्षक है एकालाप। खुद के अलावा बस कोई एक जो कविता पढ़ सुनकर उदासी में भी मुस्करा दे। खुद के अलावा बस कोई एक जो कविता पढ़ सुनकर उदासी में भी मुस्करा दे। बस कोई एक कविता जिसे गहन विषाद में डूबने से बचा ले। बस कोई एक कविता जिसे गहन विषाद में डूबने से बचा ले। खुद के अलावा बस कोई एक जो डटा रहे हार का जश्न मनाते हुए। खुद के अलावा बस कोई एक जो डटा रहे हार का जश्न मनाते हुए। बज बजाते शोर के बीच कुछ ज़्यादा तो नहीं मांग रहा अपनी कविता से। बज बजाते शोर के बीच कुछ ज़्यादा तो नहीं मांग रहा अपनी कविता से। अगली कविता है इसका शीर्षक है रात में खिलते फूल। कुछ फूल रात को खिलते हैं, उन्हें शायद रात की नीरवता पसंद है। कुछ फूल रात को खिलते हैं, उन्हें शायद रात की नीरवता पसंद है। अंधेरे में खिलते हुए ये फूल सुबह की बाढ़ जो होते हैं। अंधेरे में खिलते हुए ये फूल सुबह की बाढ़ जो होते हैं। ये उन फूलों से कितने अलग हैं, ये उन फूलों से कितने अलग हैं जो खिलने के लिए सुबह का इंतज़ार करते हैं। ये उन फूलों से कितने अलग हैं जो खिलने के लिए सुबह का इंतजार करते हैं। एक और कविता है, इसका शीर्षक है जहर। शब्दों में भरा जा रहा है जहर,

0: को नीला होने से मैं तुमसे प्रेम करता हूँ भाषा प्रिया, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ भाषा प्रिया। अगली कविता है, इसका शीर्षक है श्वेत। सफ़ेद रंग को लेकर ये कविता लिखने की कोशिश की है। थक जाओ जब रंगों के शोर से, थक जाओ जब रंगों के शोर से, ऊब जाओ जब इन रंगों की वाचालता से, तो लौट आना चुपचाप इस रंग के करीब। थक जाओ जब रंगों के शोर से, ऊब जाओ जब रंगों की वाचालता से, तो लौट आना चुपचाप इस रंग के करीब। यह रंगों की अनुपस्थिति का रंग है, यह रंगों की अनुपस्थिति का रंग है, संसार की तमाम कलाओं का आदिम रंग, संसार की तमाम कलाओं का आदिम रंग, यह जीवनदायी स्तन्य का रंग है, यह जीवनदायी स्तन्य का रंग है। हालांकि भौतिक विज्ञान की नज़रों में, हालांकि भौतिक विज्ञान की नज़रों में यह एक निर्वासित रंग है, यह एक निर्वासित रंग है। एक और कविता है, इसका शीर्षक है कहा एक दिन कवि ने। कहा एक दिन मैंने उससे, चलो कुछ देर प्रेम कविताओं के भीतर टहलते हैं, वहीं बैठेंगे बतियाएंगे कुछ देर। कहा एक दिन मैंने उससे, चलो कुछ देर प्रेम कविताओं के भीतर टहलते हैं, वहीं बैठेंगे बतियाएंगे कुछ देर। उसने कहा वक्त नहीं है मेरे पास, उसने कहा वक्त नहीं है मेरे पास, बहुत काम करना बाकी है। उसने कहा वक्त नहीं है मेरे पास, बहुत काम करना बाकी है। मैंने कहा चलो भी, अपने सब काम समेट कर चलो, वहीं बैठकर निपटाएंगे। मैंने कहा चलो भी, अपने सब काम समेट कर चलो, वहीं बैठकर निपटाएंगे। उसने कहा सोच लो, उसने कहा सोच लो, क्या वहाँ इतनी जगह है और इतना वक्त होगा, क्या वहाँ इतनी जगह है और इतना वक्त होगा। एक और छोटी कविता है, इसका शीर्षक है इमोजी। उदास हुए हम एक इमोजी भेज दी, उदास हुए हम एक इमोजी भेज दी, खिलखिलाना था रोना था प्रेम जताना था इमोजी भेज दी। उदास हुए हम एक इमोजी भेज दी, खिलखिलाना था रोना था प्रेम जताना था इमोजी भेज दी। एक समय था जब शब्दों के कंधों से लिपटकर रो लिया करते थे, एक समय था जब शब्द के कंधों से लिपटकर रो लिया करते थे, पर लगता है अब तो यह सहारा भी छिन गया, पर लगता है अब तो यह सहारा भी छिन गया। एक और कविता है, इसका शीर्षक है डर। जैसे जैसे मनुष्य शिखर की तरफ बढ़ रहा है, पानी धरती के भीतर अंधकार में गहरा और गहरा उतर रहा है। जैसे जैसे मनुष्य शिखर की तरफ बढ़ रहा है, पानी धरती के भीतर अंधकार में गहरे और गहरे उतर रहा है। बेहद डरा हुआ है पानी, बेहद डरा हुआ है पानी, बेहद भयावह है पानी की आत्मा में दुबक कर बैठा यह डर। बेहद डरा हुआ है पानी, बेहद भयावह है पानी की आत्मा में दुबक कर बैठा यह डर, मनुष्यता के लिए, मनुष्यता के लिए। अंतिम कविता पढ़ रहा हूँ। कुछ रास्ते कहीं नहीं जाते, इन रास्तों पर आने से पहले भूलना होता है अपनी मंजिल का पता। कुछ रास्ते कहीं नहीं जाते, इन रास्तों पर आने से पहले भूलना होता है अपनी मंजिल का पता। ये रास्ते किसी मंजिल तक नहीं जाते, ये रास्ते किसी मंजिल तक नहीं जाते, इन रास्तों पर किसी परिचित से नहीं होता आमना सामना, कोई नहीं मिलता दुआ सलाम करने वाला। इन रास्तों पर जो मिलते हैं, पेड़ पौधे झाड़ झंकाड़, फूल फल जंगली परिंदे अजनबी, जिनके नाम तक पता नहीं होते मुसाफिर को, इन रास्तों पर चलने से पहले फेंक देना होती है अपनी बची खुची बोली बानी किसी झाड़ी के पीछे। इन रास्तों पर चलने से पहले फेंक देना होती है अपनी बची खुची बोली बानी किसी झाड़ी के पीछे। ये रास्ते कहीं नहीं जाते, घुमा फिरा कर खड़ा कर देते हैं खुद को खुद के सामने, खुद को खुद के सामने।
1: अभी आप मणिमोहन मेहता से काव्य पाठ सुन रहे थे। इसी के साथ शब्द सागर कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से फिल्म संगीत कार्यक्रम में सुनिए आशा भोसले और अनवर की आवाज़ में निदा फाजली के बोल। खयाम ने इसकी धुन बनाई है और फिल्म का नाम है आहिस्ता आहिस्ता।

हंसी लगने लगी हर रह गुजर आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता।

तुमसे अच्छा कौन है। इस फिल्म का गीत अब सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीत लिखा है हसरत जयपुर ने, संगीत शंकर जयकिशन का है।

0: इसी के साथ फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त करते हैं। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। संग्रहालय से कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए रेडियो धारावाहिक जमुनिया की 14वीं कड़ी।
1: जमुनिया की कहने सुनो मेरे भैया, जमुनिया की करने गुनो मेरे भैया।

0: वही राह तुम भी चुनो मेरे भैया, वही राह तुम भी चुनो मेरे भैया, जमुनियों की कहनी सुनो मेरे।
1: अभी तक आपने सुना कि जमुनिया अपने पति रतन के साथ बहुत खुश थी, किंतु धोखेबाज दीवान और उसके भाई करण ने मिलकर रतन को कर्ज के जाल में फंसा दिया, जिसके चलते रतन को आत्महत्या करनी पड़ी। बाद में करण ने जमुनिया को भी उसकी दुधमुही बच्ची के साथ घर से निकाल दिया और जमुनिया के बेटे को हथिया लिया। उधर जमुनिया को पास के गांव के एक व्यक्ति झुल्लन ने सहारा दिया। जमुनिया बांस की डलिया और पंखे बनाकर जीवन यापन करने लगी।

0: अचानक चमुनिया को लगा कि उसकी बदहाली की सबसे बड़ी वजह उसकी अशिक्षा है। उसने पढ़ने की इच्छा प्रकट की। गांव के गुरुजी से शिक्षा प्राप्त कर वो शीघ्र ही पढ़ने लिखने लगी। गांव का सरपंच दीवान था, किंतु गांव की सीट महिला सीट घोषित होने पर उसने अपनी पत्नी को पर्चा भरवाया, तो दूसरी ओर गांव वालों के आग्रह पर जमुनिया भी अपना पर्चा भरकर चुनाव के मैदान में कूद पड़ी। दीवान अपनी कुटिल चाले चलता रहा, पर जमुनिया ने सभी का सामना सच्चाई और धैर्य के साथ किया। अब आगे।
1: माई, उठो माई, सुबह हो गई।
2: अरे हाँ बिटिया, रात जरा देर से सोई तो थोड़ी ज्यादा देर हो गई। तुमने हाथ मुंह धोया?
1: हाँ माई, हमने तो चना चबेना भी खा लिया, और बाबा कह रहे थे कि जमुनिया को अभी सो लेने दो, उसे आज बहुत भाग दौड़ करनी है ना।
2: बाबा भी ना, कितनी चिंता करते हैं हमारी। कितने दिनों से एक भी पंखा डलिया नहीं बनाया, अकेले बेचारे लगे रहते हैं और हम सब का पेट भर रहे हैं।
3: अरे बिटिया।
2: हाँ बाबा।
3: अब तू मेरा गुणगान बंद कर और थोड़ा बहुत जो भी है खा कर जा। चुनाव का मोर्चा संभाल, परसों चुनाव है, इन्हीं दो दिनों में बहुत इधर का उधर होता है, समझी?
2: ठीक है बाबा। हाँ। पूरी कोशिश करूंगी कि इस बार ऐसा ना हो।
3: हाँ।
2: अरे आप लोग आ गए पुलिस भैया। नमस्ते।
4: जी जमुनिया जी।
2: आप लोग इतने दिनों से हमारे साथ हैं और हम आप लोगों की कोई आवभगत नहीं कर पाए, वो तो आप देख ही रहे हैं। हमारे पास आप लायक कुछ खाने को भी नहीं है, माफ करिएगा।
5: अरे जमुनिया बहन, हम तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और फिर आपको हमारी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम देख रहे हैं कि आप पूरी सच्चाई और ईमानदारी से गांव के भले के लिए लगी हुई हैं, हम सब समझते हैं। बस आप हमें एक गिलास पानी पिला दीजिए, यही हमारे लिए बहुत है।
2: जी अभी मंगवाती हूँ। आप लोग कितने अच्छे हैं।
5: अरे नहीं नहीं,
2: खामखा लोग पुलिस को बदनाम करते हैं। भैया
5: हाँ।
2: मैं आप लोगों से एक मदद मांग रही हूँ।
5: हाँ हाँ बोलो बहन।
2: हो सके तो हाँ कीजिएगा। हाँ, नहीं तो मेरी बड़ी किरकिरी हो जाएगी।
5: हाँ
4: बोलिए बहन, बोलिए।
2: हमने गांव की औरतों से विनती की है कि जिनके आदमी शराब पीते हैं वो अपनी कसम दे कि चुनाव के एक दिन पहले खाली एक दिन शराब ना पिए। और सबने हमारी बात भी मानी है।
5: अच्छा, अच्छा।
2: वो लोग अपने अपने आदमियों से बात भी कर चुकी हैं।
4: अच्छा, अच्छा। वो तो हम लोग देख रहे हैं।
5: हाँ।
4: बहुत अच्छा सोचा है आपने।
5: हाँ हाँ बिल्कुल, पर आप हमसे क्या सहायता चाहती हैं?
2: आज मैं शराब की दुकान पर जाकर उसके मालिक है ना शंकर भैया,
5: हाँ हाँ।
2: उनसे कहने वाली हूँ कि वो एक दिन के लिए चुनाव से पहले वाले दिन अपनी दुकान बंद रखे, दारू ना बेचे।
5: अच्छा तो इसमें हमें क्या करना होगा?
4: हाँ बताइए।
2: शंकर भैया मान जाएंगे, मुझे यकीन है, एक दिन की बात ही तो है।
5: हाँ, हाँ।
2: वो मान भी सकते हैं, पर मान लो नहीं माने
5: तो
2: क्या आप लोग उन्हें रोक सकते हैं दुकान खोलने से?
4: हम तो आपके साथ ही चलेंगे।
5: हाँ।
4: और आपके कहने से मान गया तो ठीक है, वरना हम चुनाव को साफ सुथरा करवाने के नाम पर दुकान बंद करने को कहेंगे उससे।
5: हाँ हाँ और क्या, और हमें तो लगता है कि बात बन जाएगी बहन।
2: अरे वाह, तुझ पे चलिए।
5: हाँ हाँ चलिए
4: चलिए चलिए,
5: आइए
4: चलिए।
6: अरे सुना
7: जी मालिक,
6: जरा उस करण को तो बुला के लाओ।
7: आजकल तो उसका कोई ठिकाना ही नहीं है मालिक। अरे कभी घर जाता है कभी नहीं, हाँ, और किसी ने कुछ खिला दिया तो ठीक, नहीं तो ऐसे ही पड़ा रहता है मालिक।
6: अच्छा अच्छा, अब ये कहानियां मत सुनाओ मुझे, जाओ उसे ढूंढ के लाओ।
8: ठीक है मालिक, देखता हूँ कहाँ है।
7: हाँ हाँ मालिक, हाँ।
6: जल्दी निकलो, जल्दी।
8: जी मालिक,
6: जल्दी बुला के लाओ उसे।
3: कहाँ ढूंढे उसको
7: यार, अब देखते
3: दारू गड्ढे पे।
7: अरे कुआं पे देख, चलते कुआं पे।
9: ये लो भैया, जिसे खोज रहे थे वो तो यही लुढ़का पड़ा है।
7: क्यों रे?
9: अरे करण, क्या अभी तक रात की उतरी नहीं?
10: अरे कहा भैया, तुम पीने की बात करते हो, कोई पानी को तो पूछता नहीं है। दारू कौन देगा भाई, घर पर भी कौन है, यहीं के लोगों के बीच बैठ जाता हूँ, वक्त कट जाता है। अरे कभी कभार कोई पुराना यार दोस्त मिलता है तो एक आध घूट पिला देता है बस।
7: अच्छा सुन, जीवान जी बुला रहा है तुझे, चल।
10: अब क्यों बुला रहे हैं?
7: चल,
10: बर्बाद तो कर दिया मुझे, अब क्या बचा है मेरे पास? भैया माफ करो हमें।
7: अच्छा?
9: तो क्या जाके बोल दूं कि तुमने आने से मना कर दिया?
10: अरे अरे, थोड़ी सी जान बची है, ये भी नहीं देखा जा रहा है तुम लोगों को? चलता हूँ, चलता हूँ।
7: चल चल चल,
10: चलो
7: बस भैया, खत्म हो गई सारी एकड़ी।
10: अब काहे की एकड़ी भैया, चलो ना।
7: चलो चल, आजा।
2: ये तो करण है, तो अभी तक इन्हें चेत नहीं आया, दारू की दुकान को ही घर बना लिया है यही लगता है।
3: अरे भैया,
11: हाँ?
3: ये तो जमुनिया है।
11: हाँ भैया,
3: हाँ? अरे ये जहाँ दारू की दुकान पर क्या करने आई है? अरे करण, रुक रुक रुक, एक मिनट रुक। अबे देख, तेरी भाभी।
10: अरे मुझे मत रोको भैया।
3: का?
10: मुझे मत रोको, मैं उसके आगे नहीं जाना चाहता।
3: इधर क्या करती है, साथ में दो दो पुलिस लेके घूमती है?
11: हाँ,
3: इसका कुछ भी नहीं कर सकते।
9: हाँ ये जमुनिया जी, इधर कैसे?
7: नमस्ते।
2: शंकर भैया है क्या?
9: अरे घर में होंगे भीतर। या तो आपके देवर जी हैं, देवर जी।
2: आपको बताने की जरूरत नहीं है, अपने देवर को मैं जानती हूं और जब जरूरत होगी खुद समझ लूंगी, तभी तो शंकर भैया से काम है।
9: आता हूँ भाई, कम वक्त सुबह सवेरे से ही दारू पीने आ जाते हैं। अरे आप जमुनिया बहन
2: जी,
9: यहाँ कैसे, कहिए क्या बात है?
2: शंकर भैया, वो आपसे एक विनती करने आए हैं।
9: विनती? कैसी विनती?
2: आपसे विनती है कि कल दारू की दुकान बंद रखें, ना पिलाएं और ना बेचें, खाली एक दिन के लिए बस।
9: भाई ये तो पहली बार सुन रहा हूं जमुनिया बहन, नहीं तो चुनाव के पहले तो दारू रोज से चौगुनी बिकती है और बिकती रही है, ऐसा क्यों?
2: अनजान मत बनिए शंकर भैया, आप सब समझते हैं, हमसे मत कहलाइए।
9: अरे वाह, ये तो कोई बात नहीं हुई जमुनिया बहन, किसी की रोजी रोटी पर रोक लगाने की बात ठीक नहीं है।
7: और क्या?
9: दीवान जी ऐसा नहीं होने देंगे।
2: देखो भैया, हम आप लोगों से कुछ नहीं कह रहे।
7: अच्छा?
2: रही रोजी रोटी की बात, तो दुनिया की रोजी रोटी दारू के भरोसे नहीं चल रही है।
9: देखो भैया बहन जी, आप भी और आप भी भैया आपस

0: मतलब आपस में मत झगड़ो भैया। मैं सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ, आप मुझे सोचने दीजिए।
1: अच्छा, तो हमें पुलिस का रोब दिखाया जा रहा है?
2: आप अगर ऐसा सोचते हैं तो ये ही सही।
0: अरे भाई शांत भी तो रहो, शांत। चलो सोच लिया, अब कल दुकान बंद।
2: हाँ भैया, जी जी बिल्कुल,
1: है ना बहन? आप दुकान खोलिए, हम लोग आकर खड़े
3: रहेंगे।
1: अरे देखते हैं कौन दुकान बंद कराता है।
0: तुम दोनों जाओ यहाँ से, चलो।
1: अरे?
0: चलो। और जमनिया बहन
2: जी,
0: आप निश्चिंत रहिए,
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: कल दुकान नहीं खुलेगी, नहीं खुलेगी।
1: क्या बात हुई है? दुकान तो खुल के रहेगी। हाँ, और नहीं खुली तो हम ठेला लगा कर यही दारू बेचेंगे। चल बे करण, चल ले जाओ।
3: हाँ चल करण,
1: चल।
4: लगता है ये दीवान का आदमी है।
3: हाँ लगता तो है।
0: जी साहब, कानून कायदा जानता नहीं है ना, समझता है जो दीवान बोल दे वही कानून है, कुछ कर नहीं पाएगा वो, निश्चिंत रहें।
2: जी
0: हमारा विश्वास करिए बहन जी।
2: जी
0: कल दारू नहीं बिकेगी, यानी नहीं बिकेगी। हाँ
2: बस शंकर भैया, एक दिन की ही बात है। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
5: चलो।
6: आ गए करण बाबू।
5: जी मालिक, अब हमारे पास क्या बचा है मालिक?
6: देखा, हमारा काटा पानी भी नहीं मांगता। हाँ
5: देखा मालिक, देखा।
6: अब तुम्हारे पास केवल तुम बचे हो और उसी से कर्जा वसूलूंगा बच्चू।
5: हे मालिक, एक ही बार में मार डालो, क्यों धीरे धीरे हलाल कर रहे हो हमें? अरे हमसे क्या गलती हो गई?
6: अरे बच्चे, हम किसी को गलती करने का मौका ही नहीं देते।
3: मालिक, ये उसी दारू के अड्डे पर मिला था।
6: अच्छा?
3: हाँ वहीं सो जाता है। मालिक,
6: हाँ
3: आपसे एक बात बतानी थी।
6: अच्छा बोलो, बोलो क्या बात है?
3: मालिक।
6: अरे बोलो ना क्या बात है।
3: मालिक वहाँ जमुनिया आई थी।
6: क्या कहा? जमुनिया आई थी?
3: हाँ
6: शराब की दुकान पर जमुनिया आई थी?
3: यही तो बात है मालिक। हाँ मालिक, वो शंकर भैया से कह रही थी कि चुनाव के एक दिन पहले दुकान बंद रखे।
6: हाँ अच्छा, उसके बाप का राज है क्या? हैं? दुकान खुलेगी
3: और क्या भैया,
6: हम खुलवाएंगे।
3: देखा,
6: और तुम लोग तैयार है ना रे?
3: मालिक मालिक एक बात और, बस साथ में पुलिस भी थी जमुनिया के।
6: क्या?
3: हाँ कह रही थी बिनती मान लो तो अच्छा, नहीं तो कानून से मनवाएंगे।
6: मालिक,
3: अरे मालिक मैं तो हड़का आया कि दुकान खुलकर रहेगी। कहा भैया?
6: हाँ मालिक, ये तुमने बड़ी बात बताई।
3: और क्या,
6: पुलिस भी थी वहां पर?
3: हाँ मालिक,
6: इस जमुनिया ने तो नाक में दम कर रखा है। ओहो, कानूनन तो वो दुकान बंद करवा भी सकती है भाई।
3: तो क्या मालिक, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे?
6: अबे सोचने दो मुझे, जो मन में आता है हनाप शनाप कुछ भी कहीं भी बोल के आ जाते हो तुम, और बाद में छेलना तो दीवान को पड़ता है ना। सोचने तो मुझे, सोचने तो। अरे अब सर पर क्यों खड़े हो मेरे, चल भागो यहाँ से, भागो।
5: जी
6: वैसे भी ले जाओ साथ में।
5: जी
6: मूड खराब हो गया मेरा तो। और सुनो, दो रोटी डाल देना, इसके पेट में जाएगी रोटी तो ठीक रहेगा।
3: अच्छा
6: बात करेंगे से। हाँ जाओ ले जाओ ले जाओ।
3: अच्छा मालिक,
5: चल चल चल चल चल चल।
2: ए चिरैया, चिरैया, अरे कहाँ उड़ गई, कहाँ है चिरैया?
7: मैं यहाँ हूँ माई, क्या बात है, बड़े गुस्से में हूँ।
2: दादी की तरह सवाल मत पूछ।

0: ला, पानी पिला।
1: अभी लाई माई।
2: का बात है बिटिया, कोनू झड़प हो गई का किसी से? हैं? सचमुच गुस्से में दिख रही हो बिटिया तुम।
0: अरे कुछ नहीं बाबा। हाँ। रोज सोचती हूँ दीवान के आदमियों से सामना ना हो, पर हो ही जाता है, खून खोलता है। पर सोचती हूँ हमें अभी अपनी बात से सबको समझाने बुझाने की जरूरत है।
2: हाँ बिटिया।
0: झगड़ा टंटा से अपना नुकसान ही होगा, पर दीवान के लोग उलझ ही जाते हैं।
2: अरे बिटिया, हुआ क्या आखिर? बात ज्यादा बढ़ गई क्या?
0: अरे नहीं बाबा, बात कुछ नहीं। मैं तो शंकर भैया से इतना कहने गई थी कि परसों चुनाव है ना, वोट डाले जाएंगे, वो कल भर अपनी शराब की दुकान बंद रखें।
2: अच्छा।
0: वो मान भी गए, पर दीवान का आदमी वहीं खड़ा था, वो उलझ गया, बोलने लगा किसी की रोजी रोटी कैसे रोक सकती हो।
2: अरे बिटिया, फिर क्या हुआ?
0: होना क्या था, पुलिस भैया ने समझाया।
2: हाँ।
0: पर वो बोला कि मैं ठेला लगा के यही शराब बेचूंगा, देखूं कौन रोकता है। और पापा, वो मुआ करण वो भी वही मर रहा था बाबा।
2: अरे तो बिटिया, असली बात बोलना कि करण से आमना सामना हो गया तेरा। अरे गुस्सा कहाँ है बिटिया, और निकाल कहाँ रही हो तुम?
1: माई लो ये पानी पियो।
2: हाँ।
1: और गुस्सा ठंडा करो।
0: ला

0: आओ शंकर भैया आओ
1: भैया,
0: मालिक आपको ही याद कर रहे थे। हाँ मैं आने वाला था आपको बुलाने, आप खुद ही आ गए। मैंने तो मालिक को सारी बात बता दी है।
1: हाँ भैया अभी बताई।
2: पता था मुझे कि तुम चुप रहने वाले तो हो नहीं।
3: अरे कौन है भाई उधर? शंकर है क्या?
2: जी मालिक, मैं शंकर।
1: मालिक जी खुद ही आ गए, इन्हीं से पूछ लीजिए मालिक।
3: हाय शंकर, क्या सच्ची जमुनिया आई थी दुकान बंद करवाने?
2: जी मालिक आई तो थी।
3: तो फिर तुमने क्या सोचा है?
2: सोचना का मालिक, बस एक दिन की बात है, रख देते हैं बंद। सबके फायदे की ही बात है मालिक।
3: कौन से सब हैं? कौन से सब हैं जिनके फायदे की बात है?
2: और कौन मालिक, पूरा गांव ही तो है मालिक।
3: हट गांव। अरे साफ बात तो ये है कि ये जमुनिया के फायदे की बात है। कब पहली बार चुनाव हो रहा है गांव में हैं? अरे हर बार हमने तुम्हारी मदद की है, मुफ्त की दारू दी कि पिलाओ सबको। कभी पैसे धेले की बात की हो तो बता। यही तो मौका होता है कि सब लोग मौज मजा करें, खुश रहें। अरे बाद में किसको पड़ी है?
2: वो तो ठीक है मालिक, पर मुझे भी ठीक लगता है। अरे एक दिन बंद रखें दुकान, नहीं तो उसी दिन मुफ्त की दारू पीकर सभी अंट शंट लड़ते झगड़ते हैं। अरे पैसे से पीते हैं तो कम पीते हैं, इतना झंझट नहीं होता मालिक।
3: डर गए शंकर, डर गए तुम शंकर। अरे जमुनिया से डर गए तुम? अरे हम तुम्हारे साथ खड़े हैं शंकर, और तुम जमुनिया से डर गए?
2: डरने की बात नहीं है मालिक, उसकी बात हमें ठीक लगी सो मान गए। हम यही बताने आए थे, हमें डर था कि आपका ये आदमी अनाप शनाप बोलकर बात का बतंगल ना बना दे। हमें मालूम था, सीधे जमुनिया से लड़ बैठा कि देखूं कैसे दुकान बंद करवाती हो। मैं यही दारू का ठेला लगा दूंगा।
1: हाँ।
2: इसने बोला ये।
1: हाँ, यही बोला।
2: बात बढ़ाने से क्या फायदा मालिक?
3: बस समझ गए हम, सब समझ गए शंकर, हमें ज्यादा ना समझाओ। हाँ अगर डर कर दुकान बंद करने वाले हो तो साफ साफ बताओ हमें, अरे हम तुम्हारे लिए आदमियों का इंतजाम कर देंगे।
2: अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है मालिक।
3: अरे देख रहे हो तुम लोग
1: मालिक,
3: आज ये शंकर हमें सिखा रहा है कि क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है।
2: देखिए मालिक, मुझे रोज का धंधा करना है, मेरा लाइसेंस कैंसिल हो गया तो धंधा ही चौपट हो जाएगा मालिक।
3: अरे तो तुम्हें लाइसेंस दिलाया किसने था?
2: आपने मालिक।
3: फिर क्या कल हम फिर से तुम्हें लाइसेंस नहीं दिलवा सकते?
2: अरे जानबूझकर मुसीबत क्यों बुलाना मालिक, और फिर अगर मुफ्त में ही दारू देना है तो मेरी दुकान से ही क्यों? अरे आप तो जहां से चाहें बांट सकते हैं मालिक।
3: बस समझ गए, तुम भी बदले बदले से लग रहे हो शंकर। अरे हमारी बिल्ली हमी से म्याऊं।
2: मालिक आप मुझे गलत समझ रहे हैं।
3: गलत समझे थे अब तक, अब आज सही समझ रहे हैं। अरे जे मत समझना कि जमुनिया जीत जाएगी। अरे दीवान हरगिज ऐसा नहीं होने देगा। और मान लो वो ससुरी जीती गई तो भी गांव को चैन से बैठने नहीं दूंगा मैं। अरे देखता हूं ये जमुनिया क्या कर लेती है। अरे अभी जरा चुनाव का माहौल है तो थोड़ा चुप्पी साधे, नहीं तो एक एक को बता देते हम।
1: और क्या?
2: मैं चलूं मालिक?
3: बड़ी जल्दी में हो, लगता है दुकान खोलने की जल्दी है तुम्हें।
2: जी मालिक, आज तो दुकान खोलना ही है।
3: लेकिन लेकिन तुम्हारे हाथ दारू मुफ्त इसलिए बंटवाते हैं शंकर कि सभी पीने वाले तुम्हारे पास ही आते हैं। बेचारे आस भी लगाए बैठे रहते हैं कि दीवान जी उनके नशे पत्ते का इंतजाम करते हैं।
2: एक ही बात बार बार कहने से क्या फायदा मालिक, मुझे इस बार माफ करिए बस। प्रणाम मालिक,
3: प्रणाम। अरे माफ तो हम करेंगे तुम्हें अच्छे से, जरा ये चुनाव हो जाने दो शंकर। ए
0: जी मालिक, जी
3: सुनो,
0: जी जी मालिक,
3: ये बेमतलब बातें गलत दीवान की इज्जत दांव पे मत रखा कर।
0: मालिक
3: समझ गए? अरे टाइम अभी नासुक है। और सुनो,
0: हाँ भाई,
3: पता करो कि ये शंकर कोई और खिचड़ी तो नहीं पका रहा है।
0: ठीक ठीक है मालिक, ठीक है।
3: और हाँ, जा बुला के ला उस करण को हमारे पास।
0: जी मालिक।
1: जे लो।
0: तो करण भी आ गया। अरे भैया खुद ही आ गया,
1: खुद ही आ गया।
3: कुछ खाया तुमने?
4: जी मालिक, बड़ी भूख लगी थी।
3: और पिए कितने दिन हो गए तुम्हें?
4: याद ही नहीं मालिक।
3: ठीक है, तैयार हो जाओ।
4: हाँ।
3: पर आज नहीं, कल, कल छक्के पीना। और हाँ, अपने जान पहचान

0: वालों को भी पिलवाना, पर ये बात पक्की कर लेना कि पीने वाले वोट के दिन मालकिन को ही वोट दें।
1: हाँ, पक्का मालिक,
0: समझ गए ना?
1: हाँ,
0: चल अच्छा भाग, तैयारी कर
1: जी।
0: और हाँ, अगर कामयाब हुआ तो हम तेरी बहुत सारी परेशानियां खत्म कर देंगे, पर जी जान लगा दे करण, जी जान लगा दे हमारे लिए, इस मालकिन को जिताने में जी जान लगा दे तू।

0: नाथ।
1: मन विजय करे दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे।
2: प्रणाम गुरुजी।
0: प्रणाम प्रणाम। खुश रहो जमुनिया, आज तो तुम बहुत व्यस्त होगी। कल चुनाव है ना, मतदान होगा।
2: जी गुरुजी, पर भीतर बहुत बेचैनी है, सो आपके पास आ गई। लोग कहते हैं टेंशन बुरी चीज है।
0: वाह भाई वाह, टेंशन टेंशन जानती हो बेटा क्या होता है?
2: जी, जब दिमाग पर बहुत बोझ हो उसी को टेंशन कहते हैं, है ना गुरुजी?
0: हाँ जमनिया, हाँ। इस टेंशन को हिंदी में तनाव कहते हैं, और ये टेंशन या तनाव कोई इतनी बुरी चीज नहीं होती बेटा। किसी दिन विस्तार से समझाऊंगा तुम्हें, पर अभी इतना समझ लो कि धनुष देखा है तुमने।
2: जी, पर तनाव कैसा बुरा नहीं है?
0: धनुष से तीर तभी छोड़ा जा सकता है बेटा जब उसकी रस्सी में तनाव हो। पर हाँ, ये उतना ही अच्छा है जितना जरूरी है।
2: वाह गुरुजी, अगर तनाव ज्यादा हुआ तो धनुष टूट जाएगा, और अगर धनुष टूट गया तो तीर गिर जाएगा।
0: भाई देखो, आज के लिए इतना ही।
3: आकाशवाणी भोपाल है। नमस्कार, मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
4: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की योजनाओं के लिए 915 करोड़ 77 लाख जबकि मशीनरी और उपकरणों के रखरखाव के लिए 488 करोड़ 41 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। अप्रैल से जून 2026 की तिमाही में देश की जीडीपी वृद्धि दर 7.8% रही, जो गर्व का विषय है। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता को नुकसान और प्रदूषण जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए एकजुट और साझा प्रयासों की जरूरत है। देश में प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने सुरक्षित भंडार से प्याज को बाजार में भेजना शुरू कर दिया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए देश में प्याज की आपूर्ति की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल में प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत प्रदेश के 1,21,000 से अधिक विद्यार्थियों के खातों में लैपटॉप खरीदने के लिए 304 करोड़ रुपए से अधिक की प्रोत्साहन राशि सिंगल क्लिक से अंतरित की, और चीनी की जमाखोरी और सट्टेबाजी को रोकने के लिए केंद्र सरकार

0: सरकार ने चीनी के भंडारण की सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। ये नई सीमा इस महीने की 15 तारीख से 30 नवंबर तक लागू रहेगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवा वाणी। हमारा आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति है।

कुछ कर गुजरने की चाह हो तो रास्ते मिल ही जाते हैं, हौसले बुलंद हो तो सपने सच हो ही जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर सफ़र आसान हो, मगर कोशिश करने वालों के लिए मुश्किल रास्ते भी एक दिन आसान हो ही जाते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त कीर्ति मीना और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। साथियों, आज का कार्यक्रम बेहद खास होने वाला है। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय पोषण माह की, जो हर साल सितंबर के महीने में मनाया जाता है। आज हम जानेंगे कि हमारे रोज़ के खान पान का हमारी सेहत पर कितना असर पड़ता है और कैसे छोटी छोटी अच्छी आदतें हमें स्वस्थ रखने में बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। साथ ही चर्चा करेंगे व्यक्तित्व विकास में सहायक किताबों पर। जानेंगे कि किताबें किस तरह हमारे ज्ञान को बढ़ाने के साथ साथ हमारी सोच, आत्मविश्वास और व्यक्तित्व को निखारने में हमारी मदद कर सकती है। और सुनेंगे कुछ सदाबहार फिल्म संगीत और जानेंगे रोजगार के सुनहरे अवसर। तो बने रहिए हमारे साथ, आइए बिना देर किए ट्यून इन करते हैं आज की शाम का पहला गीत।

श्रोताओं, जैसा कि हम जानते हैं कि हर साल सितंबर के महीने में राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य स्वस्थ जीवन शैली को अपनाना तथा पोषण के महत्व को समझना है। जैसे हम सभी जानते हैं कि संतुलित आहार का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। अब सवाल आता है, संतुलित आहार आखिर है क्या? तो इसका जवाब बहुत मुश्किल नहीं है। हमारी रोज़ की थाली में दाल या अन्य प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थ, हरी सब्जियां, अनाज, फल और पर्याप्त पानी जैसी चीज़ों को सही मात्रा में शामिल करना ज़रूरी है। और इसके लिए किसी महंगे या बहुत खास भोजन की ज़रूरत भी नहीं है। हमारी अपनी रसोई में ही दालें, सब्जियां, फल, दूध, दही, अनाज और कई ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो हमारे शरीर को ज़रूरी पोषण दे सकती है। हाँ, कभी कभी पसंद का जंक फूड खाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब वही हमारी रोज़ की आदत बन जाए तो हमें थोड़ा रुक कर सोचना चाहिए। तो इस राष्ट्रीय पोषण माह में क्यों ना हम अपने लिए एक छोटा सा संकल्प लें कि अपनी थाली में स्वाद के साथ सेहत को भी जगा देंगे। क्योंकि अच्छी खान पान की आदतें सिर्फ हमें आज स्वस्थ नहीं रखती, बल्कि हमारे आने वाले कल को भी बेहतर बना देती हैं। इसी सोच के साथ बढ़ते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं सुंदर गीत के साथ।

दोस्तों, अभी हमने बात की सही पोषण और संतुलित आहार की, लेकिन सिर्फ ये जान लेना कि हमें क्या खाना चाहिए काफ़ी नहीं है। असली बात तो तब है जब हम इन छोटी छोटी बातों को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, क्योंकि आखिर कहा भी जाता है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है और स्वास्थ्य ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। और हम युवाओं के पास तो सपने हैं, उन्हें पूरे करने की चाह है, आगे बढ़ने का जुनून है, लेकिन इन सब के लिए हमारा स्वस्थ रहना भी उतना ही ज़रूरी है। पढ़ाई, नौकरी, प्रतियोगिता परीक्षाओं और दूसरी जिम्मेदारियों के बीच हम कई बार अपने खाने पीने को नज़रअंदाज कर देते हैं। कभी नाश्ता छूट जाता है, कभी पानी पीना याद नहीं रहता, और कभी समय की कमी के कारण खाना भी जल्दबाजी में खा लेते हैं। लेकिन याद रखिए साथियों कि सेहत का ख्याल खुशहाल ज़िंदगी की पहली पहचान है, और इसके लिए हमें अपनी पूरी दिनचर्या को बदलने की भी ज़रूरत नहीं है। बस कुछ छोटी छोटी अच्छी आदतों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना ज़रूरी है, जैसे कि समय पर भोजन करना, पर्याप्त पानी पीना, खाने में फल और सब्जियों को शामिल करना, बहुत अधिक तला भुना और मीठा खाने से बचना, और रोज़ थोड़ा समय शारीरिक गतिविधियों के लिए निकालना। ये छोटी छोटी आदतें लंबे समय में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। तो इस राष्ट्रीय पोषण माह में क्यों ना हम सिर्फ पोषण की बातें करने के बजाय अपनी सेहत के लिए एक छोटी सी शुरुआत भी करें। तो आप भी सोचिए, आज से अपनी सेहत के लिए ऐसी कौन सी एक अच्छी आदत शुरू कर सकते हैं जिसे लंबे समय तक निभाया जा सके। इसी के साथ पेश है आज की शाम का अगला गीत।

दोस्तों, जरा सोचिए, हम अपनी ज़िंदगी में कितनी जगह जा सकते हैं, कितने लोगों से मिल सकते हैं, कितनी कहानियाँ सुन सकते हैं और कितने अनुभव अपने जीवन में समेट सकते हैं। शायद हमारी ज़िंदगी का समय और सफ़र इसकी एक सीमा तय करते हैं, लेकिन एक अच्छी किताब हमें उन जगहों तक ले जा सकती है जहाँ हम कभी गए ही नहीं, ऐसे लोगों से मिलवा सकती है जिनसे हम कभी मिले ही नहीं, और ऐसे अनुभव दे सकती है जिन्हें हमने कभी जिया ही नहीं। यही तो किताबों की खूबसूरती है। और कहा भी जाता है कि किताबें इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। और सच कहें तो किताबें सिर्फ हमारा ज्ञान ही नहीं बढ़ाती, बल्कि हमारी सोच, नज़रिए और व्यक्तित्व को भी एक नई दिशा देती हैं। हम अक्सर व्यक्तित्व विकास को सिर्फ अच्छे ढंग से बोलने या लोगों के सामने आत्मविश्वास से अपनी बात रखने तक सीमित समझते हैं, लेकिन हमारा व्यक्तित्व इससे कई बड़ा है। हम किस तरह सोचते हैं, दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, परिस्थितियों को किस नज़रिए से देखते हैं, अपने फैसले कैसे लेते हैं और मुश्किल समय में खुद को कैसे संभालते हैं, यही हमारे व्यक्तित्व की असली पहचान है। और इन गुणों को निखारने में किताबें हमारी बहुत अच्छी साथी बन सकती हैं। लेकिन दोस्तों, क्या सिर्फ किताब पढ़ लेने से हमारा व्यक्तित्व बदल जाएगा? शायद नहीं। किताब पढ़ना पहला कदम है, लेकिन उसमें लिखी अच्छी बातों को अपने जीवन में उतारना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि पढ़ने की असली खूबसूरती सिर्फ पन्ने पलटने में नहीं, बल्कि उन पन्नों से कुछ सीखने और उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाने में है। याद रखिए, हर बड़ी सोच की शुरुआत एक छोटे से विचार से होती है और हर बड़ा बदलाव एक छोटी सी अच्छी आदत से। तो अगली बार जब आपको कुछ पल खाली मिलें, तो मोबाइल की स्क्रीन से थोड़ी देर नज़र हटाइए और किसी अच्छी किताब के कुछ पन्नों में अपनी दुनिया तलाशिए। क्या पता उन्हीं पन्नों में आपको कोई ऐसा विचार मिल जाए जो आपकी सोच को एक नई दिशा दे या आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। इसी के साथ पेश है अगला गीत।

साथियों, अब वक्त हो चला है रोजगार सूचना का। रेलवे भर्ती बोर्ड यानी RRB ने जूनियर इंजीनियर समेत कई पदों पर कुल 4,029 सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। अगर आपके पास इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या डिग्री है तो इस सुनहरे मौके का फायदा उठाएं। फॉर्म भरने की प्रक्रिया चालू हो चुकी है, जिसकी अंतिम तिथि 13 सितंबर 2026 है और अधिक जानकारी के लिए रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट rrbapply.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। आशा है आप इस जानकारी का ज़रूर लाभ उठाएंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत।

हर दिन एक नई शुरुआत का मौका देता है, पर ज़रूरत है उस मौके को पहचानने की। तो दोस्तों, अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं, आपसे विदा लेने का समय हो गया है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी नई जानकारियों और मनोरंजन के साथ। तब तक के लिए आपकी रेडियो दोस्त कीर्ति मीना को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: युवा श्रोता सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। हमारा आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की प्रस्तुति था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं गुलाम फिल्म का गीत, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में। समीर के बोल हैं और संगीत जतिन ललित का।

सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ में आइए अब सुनते हैं थ्री इडियट्स फिल्म का बहुत ही प्यारा सा गीत। शब्द है स्वानंद किरकिरे के और तर्ज बनाई है शांतनु।

इरशाद कामिल के बोलों को आइए सुनते हैं फिल्म तमाशा में। तर्ज बनाई है ए आर रहमान ने और खूबसूरत आवाज़ मोहित चौहान की।

कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं श्रेया घोषाल और राहत फतेह अली खान की आवाज़ में दबंग 2 का बहुत ही प्यारा सा गीत है समीर का और संगीत साजिद बाजिद का।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है।
1: पांच महीने हो गए ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए, नए स्किल सीखने हैं पर पैसे भी कमाने हैं, समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं।
2: तो फिर सोच कि तेरी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई।
1: क्या, कैसे?
2: अरे मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, 12th ITI डिप्लोमा और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, जहां तुम स्किल्स भी सीख सकते हो और 10,000 तक का स्टाइपेंड भी कमा सकते हो।
1: वाह। अच्छा रजिस्टर कैसे करें?
2: mmsky.mp.gov.in पर। mmsky, सीखो भी कमाओ भी।
3: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
4: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
5: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
4: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए। ऑफिस या घर से निकलते ही उफ ये ट्रैफिक,
5: आकाशवाणी है ना।
6: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
5: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
4: शाम सुहानी हो,
5: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
4: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
5: सफर में
4: आपके साथ
5: आकाशवाणी।

सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच देशभर में नीट पेपर लीक मुद्दे के संबंध में छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी प्राथमिकी बंद करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने इन मामलों में आगे जांच न करने का आदेश भी दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की अहम बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए लोक निर्माण विभाग के मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि सरकार ने भोपाल में पश्चिमी बाईपास की पुनरीक्षित लागत को अपनी स्वीकृति दे दी है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल रायपुर और छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर के तीसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री धनधान्य कृषि योजना PMDDKY की प्रगति की समीक्षा की। इस समीक्षा बैठक का मुख्य उद्देश्य देश के चिन्हित 100 जिलों में योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाना है। भारतीय सेना ने आज नई दिल्ली में PNG ट्रांजिशन वेबिनार 2026 का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य सैन्य प्रतिष्ठानों में पाइप्ड नेचुरल गैस PNG के इस्तेमाल को तेजी से बढ़ावा देना है। और पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कृष्णा गौर ने आज मंत्रालय में विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक में निर्देश दिए कि पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए संचालित 106 छात्रावासों में आगामी 8 सितंबर से मेस का संचालन अनिवार्य रूप से प्रारंभ किया जाए। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। शाम के 6 बजे हैं। लीजिए सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का आज के उमंग कार्यक्रम में स्वागत है। आज एनसीईआरटी के स्थापना दिवस की शुभकामनाओं के साथ मैं विमलेश आप सबका स्वागत करती हूं। नमस्कार
3: श्रोताओं, नमस्कार। आइए सुनते हैं पिछले सप्ताह दिए गए विषयों पर एक स्लोगन, जिसे भेजा है ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, राजू, लल्ला, पूजा, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू जी ने लिखा है।
2: रेडियो वाला जमाना अलग था, आवाज से रिश्ते जुड़ते थे। अब फोन वाला जमाना है, फोटो से लाइक जुड़ते हैं। फोन छोटा है जरूर, पर दुनिया बड़ी दिखाता है। अगर इसे विवेक से इस्तेमाल करें तो परायों को भी अपना बना देता है।
3: तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुविचारों और संदेशों के लिए। गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी। अगला संदेश हमें मिला है गांव ढाणी कुतुबपुर, जिला हांसी, हरियाणा से रामधारी अवाना, अवनी, प्रियांशी, रियांशी, ओजस, अनाया, गुरदीप और बेबी किरत अवाना लिखते हैं।
2: जैसे कार्यक्रम ज्ञानवर्धन के साथ हमारी गौरवशाली विरासत और महान नायकों से परिचित कराने का सराहनीय प्रयास है, सादर धन्यवाद।
3: आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। श्रोताओ, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक मार्मिक प्रेरक प्रसंग। तो विमलेश जी, करते हैं शुरुआत और बात करते हैं एक वीर बालक की, जिसने देश की आजादी की लड़ाई में अपना अतुल्य योगदान दिया।
2: जी जी जी श्रोताओ, आज हम जिस आजादी की हवा में खुलकर सांस ले रहे हैं, उसकी कीमत सिर्फ बड़े क्रांतिकारियों ने ही नहीं बल्कि देश के नन्हे मुन्ने बच्चों ने भी चुकाई है। आज हम आपके लिए ओडिशा के ढेंकानाल के एक ऐसे ही बहादुर बालक बाजी राउत की गाथा लेकर आए हैं, जिसकी बहादुरी के आगे कहते हैं कि मौत भी छोटी पड़ गई थी।
3: श्रोताओ, बाजी राउत का जन्म 5 अक्टूबर 1926 को नीलकंठपुर गांव में हुआ था। उनके पिता का बचपन में ही निधन हो गया था। उनकी माँ बहुत ही कठिन परिस्थितियों में परिवार का पालन पोषण करती थी। बाजी नदी पर नाव चलाने का काम करते थे।
2: श्रोता मित्रों, बात है 11 अक्टूबर 1938 की। ढेंकानाल में अंग्रेजों के खिलाफ जन आंदोलन जोरों पर था। माहौल ये था कि क्या बड़े, क्या जवान, क्या बच्चे।

0: सभी बड़ी सक्रियता से भाग ले रहे थे। स्थानीय प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था। उनका एक ही लक्ष्य था, भारत की आजादी। अंग्रेजी सेना को जब इन गतिविधियों की भनक लगी तो वो पूरे दल बल के साथ वहां पहुंचे।
1: उन्होंने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू की जिसमें कई लोग मारे गए।
0: जी,
1: वहां की मिट्टी शहीदों के रक्त से लाल हो गई। किसी को भी नहीं बख्शा गया और आंदोलन का क्रूरता पूर्वक दमन कर दिया गया। ये समाचार जंगल की आग की तरह चारों ओर फैल गया
0: और दूर दराज के गांवों से भी ग्रामीण आने लगे। भीड़ बढ़ने लगी, नारे लग रहे थे। अंग्रेज सिपाही निर्दोष गांव वालों पर गोलियां चलाने के बाद वहां से भागने की फिराक में थे, लेकिन उन्हें अपनी छावनी तक सुरक्षित पहुंचने के लिए ब्राह्मणी नदी पार करनी थी। वे नदी के घाट की ओर चल दिए।
1: नदी के घाट पर 12 साल का एक बच्चा बाजी राउत अपनी छोटी सी नाव की रखवाली कर रहा था।
0: जी,
1: वह प्रजामंडल का सदस्य था। उसे प्रजामंडल द्वारा सख्त निर्देश मिला था कि किसी भी अंग्रेज को नदी पार करने में कोई सहायता ना दें।
0: जी,
1: रात का समय था और भारी वर्षा हो रही थी।
0: अंधेरी रात और मूसलाधार वर्षा के बीच अंग्रेजों की फौज वहां आ पहुंची। मेजर ने चिल्लाकर बाजी को हुक्म दिया,
1: ए लड़के, अपनी नाव निकाल और हमें नदी के उस पार ले चल।
0: बाजी की जगह कोई और होता तो बंदूक देखकर डर जाता, लेकिन उस बच्चे की आंखों में घृणा और क्रोध के मानो अंगारे दहक रहे थे। उसने दो टूक जवाब दिया,
1: तुमने मेरे गांव वालों का खून बहाया है, मैं तुम्हें अपनी नाव छूने तक नहीं दूंगा।
0: अंग्रेज हैरान थे कि एक छोटे से बच्चे में इतनी हिम्मत कहां से आ गई। मेजर ने बंदूक तानकर धमकाया, लेकिन बालक बाजी टस से मस नहीं हुआ। जब बाजी ने झुकने और उनकी बात मानने से साफ मना कर दिया तो एक अंग्रेज सिपाही ने अपनी बंदूक की बट से उसके सिर पर जोर से वार किया।
1: बाजी का सिर फट गया, खून की धार बह निकली, लेकिन वो एक इंच भी पीछे नहीं हटा। उसने अपनी आखिरी सांस तक चिल्ला चिल्ला कर गांव वालों को सावधान करना शुरू किया। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर गांव के लोग नदी की ओर आने लगे।
0: बौखलाए अंग्रेजों ने उस 12 साल के मासूम के सीने में संगीनें उतार दी और गोलियों से उसे छलनी कर दिया। बाजी राउत शहीद हो गए। लेकिन उस रात अंग्रेजों को नदी पार करने के लिए नाव नहीं मिली, उन्हें जान बचाने के लिए तैर कर भागना पड़ा।
1: जी हाँ श्रोताओ, शहीद भगत सिंह 23 साल के थे, खुदीराम बोस 18 साल के थे, लेकिन बाजी राउत सिर्फ 12 साल के थे। वो भारत के स्वाधीनता आंदोलन के दौरान सबसे कम उम्र के शहीद माने जाते हैं।
0: साथियों, आज के समय में हम 12 साल के बच्चों को छोटा और नादान समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हर बच्चे में असीमित क्षमता होती है। उस उम्र में इस बच्चे ने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दे दी थी। आज उमंग कार्यक्रम के द्वारा हम भारत के सभी शहीदों को श्रद्धा से स्मरण करते हुए नमन करते हैं।
1: जी हाँ, उमंग कार्यक्रम की ओर से उन सभी शहीदों को हमारा नमन। श्रोताओ, आपको सूचना दे दें कि एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए आप किसी भी सर्च इंजन में जाकर एनसीईआरटी बुक्स पीडीएफ टाइप कीजिए, विकल्पों का अनुसरण कीजिए और पुस्तकों का लाभ उठाइए।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप एनसीईआरटी के बारे में अद्यतन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि हमारे कार्यक्रमों को सुनना चाहते हैं या पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो एनसीईआरटी यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर जाइए। आपको वहाँ कक्षा 9 तक की सारी पुस्तकें ध्वनि रूप में उपलब्ध हो जाएंगी।
1: तो श्रोताओ, अब प्रस्तुत है आज का प्रश्न, नोट कर लीजिए। हमारा प्रश्न है, बालक बाजी राउत का जन्म कब और कहाँ हुआ था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: बालक बाजी राउत का जन्म कब और कहाँ हुआ था?
1: आप अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भेज सकते हैं। तो अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, आइए सुनते हैं कार्यक्रम माई नेम।
0: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम बड़े मनोरंजक तरीके से एक मक्खी के बारे में बताता है जो अपना नाम ही भूल जाती है। वो अलग अलग पशु पक्षियों के पास जाती है और अपना नाम पूछती है। अंत में उसे अपने नाम का पता चल जाता है, लेकिन कैसे, आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम में।
2: Once there was a little fly. One day he could not remember his name. He tried and tried to remember it, but it was of no use. He had forgotten his name. He asked an ant.
3: Ant, do you know my name? I don't know. You may ask the tree I climb. Dear tree, do you know my name?
4: I don't know. You may ask the cow sleeping in my shade.
2: The fly went near the cow and asked,
3: "Dear cow, do you know my name?" "I don't know. You may ask the grass I ate."
2: The fly went to the grass and asked,
3: "Dear grass, do you know my name?"
4: "I don't know. You may ask the leaves fallen on me."
2: The fly asked a leaf fallen on the grass,
4: "Dear leaf, do you know my name?"
2: The leaf was about to answer when the wind blew. The leaf began to fly. Seeing this, the fly remembered his name.
4: Ow!

0: What do you hear? Can you recognize the sounds? Can you make these sounds? Note to the teacher. Help children find the meanings of their names as it is related to their identity.
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम My Name।
2: उस रात ऑफिस से निकलने में दुबा हो गई थी, आंखें भी भारी हो रही थी, पर सोचा 15 किलोमीटर ही तो है, निकल जाता हूँ। हाईवे पर एक ट्रक के पीछे चला गया। ट्रक के पीछे एक आयरन रॉड लगी थी, टेल लाइट दिखाई नहीं दे रही थी। मुझे लगा कि वो सीधा जा रहा है, पर जैसे ही उसने ब्रेक मारे, मुझे समझने में एक सेकंड ज्यादा लग गया। नींद में गाड़ी चलाना और पीछे की रोशनी ना दिखना, दोनों ही गंभीर हादसे को बुलावा देना है।
3: थकान या नींद की अवस्था में वाहन चलाने से बचें। यात्रा के दौरान यदि थकान या नींद महसूस हो तो आगे बढ़ने के बजाय थोड़ी देर रुककर आराम करना सुरक्षित होता है।
1: और अब सुनते हैं कार्यक्रम स्टीफन हॉकिंग।
4: ये कार्यक्रम 20वीं सदी के महान भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग के जीवन और अंतरिक्ष भौतिकी के क्षेत्र में उनके महान योगदानों का उल्लेख करता है और साथ ही साथ दिव्यांगता से उनके जीवन पर्यंत संघर्ष की भी चर्चा करते हुए संदेश देता है कि दिव्यांगता शरीर से कहीं अधिक मन में होती है।
5: मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरिपाइये मन ही की प्रतीत।
6: आपने संत कबीर की इन पंक्तियों को अवश्य सुना होगा। इन पंक्तियों का आशय है, जीवन में जय और पराजय केवल मन के भाव हैं।
5: आज हम एक ऐसी महान विभूति की बात करेंगे जिन्होंने इन पंक्तियों को शत प्रतिशत अपने जीवन में चरितार्थ किया।
6: उस महान शख्सियत का नाम है स्टीफन विलियम हॉकिंग। उनका नाम 20वीं सदी के महानतम भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ बड़े आदर से लिया जाता है। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को ऑक्सफोर्डशायर ब्रिटेन में हुआ था। उनके पिता का नाम फ्रैंक और माता का नाम इजाबेल हॉकिंग था।
5: ये भी एक विचित्र संयोग ही था कि इस महान खगोल वैज्ञानिक का जन्म महान खगोल वैज्ञानिक गैलीलियो की मृत्यु के ठीक 300 वर्षों बाद हुआ था। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को हुआ था और गैलीलियो की मृत्यु 8 जनवरी 1642 को हुई थी।
6: उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ऑक्सफोर्ड के निकट सेंट एल्बान में ही पूरी की। स्कूली शिक्षा समाप्त करने के बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया।
5: ऑक्सफोर्ड से भौतिकी में वो प्रथम श्रेणी में प्रतिष्ठा यानी ऑनर्स के साथ उत्तीर्ण हुए। अध्ययन पूरा करने के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने अनुप्रयुक्त गणित और सैद्धांतिक भौतिकी यानी अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड थियोरिटिकल फिजिक्स विषय लेकर ब्रह्मांड विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी पर गहन अध्ययन और शोध किया। प्रोफेसर और छात्र उन्हें प्यार से जूनियर आइंस्टाइन कहकर बुलाते थे।
6: फिर आया 1963 का साल। दिन था 8 जनवरी यानी उनका 21वां जन्मदिन। वे छुट्टियों में अपने घर आए।
7: Stephen, happy birthday to you!
8: Happy birthday to you, Stephen!
7: Thank you. How are you?
9: Happy birthday, Stephen! Thank you,
7: congratulations!
9: Thank you, John. Thank you so much. Hi, Martin. How are you?
7: Oh, fine.
9: Thanks for coming in. Please come in.
8: Oh, yes, sure. Yes. Why not?
7: Come. John, please come here.
8: Oh, sure.
9: Join us for a drink, please.
5: जन्मदिन की पार्टी बहुत अच्छी रही, लेकिन दूसरे ही दिन जो हुआ उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। हुआ यूं कि वे अपने घर की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे कि तभी
10: Oh,

0: अचानक उनके शरीर की सारी मांसपेशियां बुरी तरह से अकड़ गईं और वे अचेत होकर गिर पड़े। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने कुछ दवाएं देकर और इसे सामान्य कमजोरी बताकर उन्हें घर भेज दिया।
1: लेकिन ये क्या?
0: जब स्टीफन को ऐसे दौरे बार बार पड़ने लगे तो उन्हें लंदन के एक नामी अस्पताल में ले जाया गया। जांच के बाद डॉक्टर ने स्टीफन के माता पिता को बुलाया।
2: मिस्टर फ्रैंक, मैंने आपके बेटे के बारे में एक खास जानकारी देने के लिए आपको यहाँ बुलाया है।
3: सब कुछ ठीक तो है ना?
2: देखिए, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ। आपके बेटे को मोटर न्यूरॉन डिजीज है।
3: मोटर न्यूरॉन डिजीज?
2: जी हाँ, और इसका अभी तक कोई इलाज संभव नहीं है।
3: डॉक्टर साहब, इस बीमारी में क्या होता है?
2: इस बीमारी में मस्तिष्क का सिग्नल मांसपेशियों को नहीं मिल पाता है, इसलिए शरीर के सारे अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। बोलने और चलने फिरने में परेशानी होती है।
3: नहीं, नहीं।
2: देखिए, आप धीरज रखें, मैं ताकत की कुछ दवाइयां लिख देता हूँ, क्या पता कोई चमत्कार हो जाए।
3: ओह गॉड, ओह गॉड।

बढ़ती ही चली गई। उन्हें बोलने में बहुत परेशानी होने लगी थी। एक बार जब तबीयत बहुत खराब हुई तो उनके मित्र उन्हें डॉक्टर के पास ले गए।

0: Harry Mayer. Gina Chantal. Dos Alnei. Miss Albine. Pure. Pachas. Sar. Archiung.
1: उस समय सबने उनका मन रखने के लिए, दिलासा देने के लिए हाँ में हाँ मिला दी थी, पर आज पूरा विश्व जानता है कि जो कुछ उन्होंने कहा था वो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से उन्होंने कर दिखाया।
2: उनकी बीमारी बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन इस हालत में भी सन 1965 में उन्होंने सर्वाधिक अंक लेकर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी पीएचडी की डिग्री प्राप्त की।
3: साथियों, हम बड़े हर्ष के साथ घोषणा करते हैं कि स्टीफन हॉकिंग ने बेहद अच्छे अंकों से अपना शोध पूरा कर लिया है। उनके शोध का विषय था प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, यानी विस्तारित ब्रह्मांड की विशेषता। मेरा अनुरोध है कि वो सामने आकर सम्मान ग्रहण करें।

0: विश्वविद्यालय में वे एक चलता फिरता आश्चर्य माने जाते थे। जब उनसे ये पूछा गया कि वे इतनी कठिनाइयों के बीच अपना शोध और अध्ययन का काम कैसे कर लेते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया,
1: मेरी क्षमता, मेरी दिव्यांगता से अधिक मजबूत है। दिव्यांगता शरीर से अधिक मन में होती है।
2: जनवरी 1965 में ही नए साल के जश्न में स्टीफन हॉकिंग की मुलाकात मिस जेन वाइल्ड से हुई। वे अंग्रेजी साहित्य की प्रख्यात लेखिका और शिक्षिका थीं। मिस जेन वाइल्ड स्टीफन के खुशदिल स्वभाव, बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्प शक्ति से बहुत प्रभावित हुईं।
0: वे जानती थीं कि भविष्य में स्टीफन का स्वास्थ्य बिगड़ता चला जाएगा, लेकिन उन्होंने स्टीफन का साथ नहीं छोड़ा और वे विवाह बंधन में बंध गए। उनकी 3 संतानें हुईं। ১৯৮৫ में उनकी आवाज खो गई। अब बोलना उनके लिए असंभव हो चुका था। उनके सभी अंग धीरे धीरे स्थिर होने लगे थे, इसलिए स्वीडन में उनके लिए एक स्मार्ट व्हीलचेयर बनाई गई जिसमें कई प्रकार के उपकरण लगे हुए थे।
2: इस चेयर में एक विशेष उपकरण था जिसे स्पीच सिंथेसाइजर कहा जाता था। कीबोर्ड की सहायता से वे जो जो टाइप करते थे, स्पीच सिंथेसाइजर उन्हें शब्दों में बदल देता था।
0: इसी के जरिए वे पूरी दुनिया से बात करते थे और भौतिकी पर दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में व्याख्यान देते थे। लेकिन वे बोलते कैसे थे, ये जानना दिलचस्प होगा।
2: दरअसल उन्हें आवाज दी थी प्रोफेसर डेनिस एच क्लैट ने, जो संभाषण और श्रवण विज्ञान में एक अमरीकी शोधकर्ता थे। आइए प्रोफेसर डेनिस क्लैट से बात करके जानते हैं कि प्रोफेसर हॉकिंग का ये स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता था।
3: प्रोफेसर डेनिस,

0: स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता है? आपने इसका विकास कैसे किया?
1: देखिए, प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यानों को भाषा में बदलने के लिए हमने सबसे पहले स्पीच सिंथेसाइजर के कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा उनकी सारी भाषा सिखाई।
0: ओह।
1: और फिर विज्ञान से संबंधित सारे तकनीकी शब्द भी कंप्यूटर की स्मृति में डाल दिए।
0: ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। वाह, अति सुंदर। और शायद धीरे धीरे इसी भाषा और शब्द संग्रह ने एक धारा प्रवाह वैज्ञानिक भाषा का रूप ले लिया होगा।
1: बिल्कुल ठीक। और फिर उन शब्दों की ध्वनि को मानवीय आवाज में रिकॉर्ड करके हमने स्पीच सिंथेसाइजर में संग्रहित कर लिया।
0: ग्रेट। धन्यवाद सर, ये तो सचमुच बहुत रोचक है। यानी प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यान हमने आपकी आवाज में सुने?
1: जी।
0: अद्भुत, इट्स रियली वंडरफुल। तो सुनाइए ना प्रोफेसर हॉकिंग को आपकी आवाज में।
1: तो लीजिए, सुनिए।
2: टेक्नोलॉजी हैज ट्रांसफॉर्म्ड द आउटलुक फॉर द डिसेबल्ड। पीपल लाइक मी कैन नाउ मूव अराउंड इंडिपेंडेंटली एंड दे कैन कम्युनिकेट।
3: उन्होंने कुल 29 रचनाएं की, जिनमें पुस्तकें, शोध प्रबंध और विज्ञान लेख शामिल हैं। उनसे अंतरिक्ष समय, भारहीनता, शून्य गुरुत्वाकर्षण जैसे अंतरिक्ष के अनेक रहस्यों से पर्दा उठ गया और अनेक शोधों को गति मिली।
4: सापेक्षता का सिद्धांत, क्वांटम यांत्रिकी और अंतरिक्ष समय यानी स्पेस टाइम पर उनका काम हमेशा याद रखा जाएगा।
3: उनके सभी शोधों की ये विशेषता है कि ब्रह्मांड की व्याख्या के साथ साथ उन्होंने इसे विश्व पारिस्थितिकी, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से भी जोड़ा है।
4: उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट पत्रिका में अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा था,
5: यदि पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा गया तो 600 वर्षों के अंदर ये पृथ्वी आग का गोला बन जाएगी। जनसंख्या बढ़ने के कारण धरती पर ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से धरती का तापमान असीमित रूप से बढ़ेगा और धरती गर्म होकर लाल हो जाएगी।
3: उनके द्वारा लिखित किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम उस समय की सबसे ज्यादा समय तक बिकने वाली किताब बनी। तब इस किताब की बिक्री लगभग रिकॉर्ड 237 हफ्तों तक चली। एक और पुस्तक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग भी बहुत प्रसिद्ध हुई। उन्हें राष्ट्रपति का मेडल ऑफ फ्रीडम सम्मान भी दिया गया था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है।
4: विद्यार्थियों और शोध करने वालों को वे अक्सर कहते थे,
6: ऊपर सितारों की तरफ देखो, अपने पैरों के नीचे नहीं। जो भी देखते हो उसका अर्थ जानने की कोशिश करो, आश्चर्य करो, उत्सुक रहो और प्रश्न करो।
3: जनवरी 2001 में अग्रणी ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग जब भारत आए थे, उन्होंने कहा था,
7: इंडियंस आर सो गुड इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स।
4: विश्व के दिव्यांग समुदाय के लिए प्रोफेसर हॉकिंग का अंतिम संदेश था,
8: यदि आप शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं तो मन को दिव्यांग न होने दें।
3: चौदह मार्च 2018 को

0: 76 वर्ष की आयु में ब्रिटेन के कैम्ब्रिज में उनका देहांत हो गया। अपनी मृत्यु के समय वे सैद्धांतिक ब्रह्मांड विज्ञान केंद्र में अनुसंधान के निदेशक थे। दाह संस्कार के बाद लंदन के वेस्टमिंस्टर एबी चर्च में उनकी राख को चर्च के साइंटिस्ट कॉर्नर में सर आइजैक न्यूटन और चार्ल्स डार्विन की कब्रों के बीच दफनाया गया।
1: उनके स्मारक पत्थर पर ये शब्द अंकित हैं, यहां स्टीफन हॉकिंग के पार्थिव अवशेष दफन हैं। उस पत्थर पर उनका एक प्रिय समीकरण भी अंकित है, जिसका उपयोग उन्होंने दुनिया को ब्लैक होल के बारे में सिखाने के लिए किया था।
0: दिव्यांगता के खिलाफ अदम्य इच्छा शक्ति की ऐसी जंग छेड़कर अंतरिक्ष विज्ञान में सितारों की बुलंदियों को छूने वाले प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग, आपको हमारा नमन।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम स्टीफन हॉकिंग। इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यही समाप्त होता है, तो अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए दीजिए आज्ञा।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शाम की 6:30 हुए हैं। लीजिए एक बार फिर हाजिर है फिल्म संगीत का कार्यक्रम लेकर। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए अर्पण फिल्म का गीत, लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाज़ में, आनंद बख्शी की रचना है और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं राम लक्ष्मण के संगीत से सजा हुआ गीत। असद भोपाली ने इस गीत को लिखा है। फिल्म का नाम है मैंने प्यार किया और आवाज़ SP बालसुब्रमण्यम की।

कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं उदित नारायण और विभा शर्मा की आवाज़ में इश्क फिल्म का गीत, जावेद अख्तर के बोल हैं और संगीत अनु मलिक का।

0: मुझे शर्म आती है।
1: देखो तुम नहीं कहोगी तो मेरी जान निकल जाएगी।
0: I love you.
2: Yeah!

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शाम के 7 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य देशों से आतंकवादियों को उपलब्ध होने वाली आर्थिक मदद, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। श्री मोदी ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों पर चिंता व्यक्त की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन के घोषणा पत्र में भारत की प्राथमिकताओं को प्रमुखता से शामिल किया गया है।
1: शंघाई सहयोग संगठन के बिश्केक घोषणा पत्र में संवाद को आगे बढ़ाने के लिए एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना को दोहराया गया है। एससीओ सदस्य देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं है। सदस्य देशों ने आतंकवाद से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों का भी आह्वान किया है, जिसमें आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही भी शामिल है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि उनकी किर्गिस्तान यात्रा बेहद सार्थक और ठोस परिणामों वाली रही। उन्होंने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन से अलग हुई विभिन्न बैठकें भारत के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच देश भर में नीट पेपर लीक मुद्दे के संबंध में छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी प्राथमिकी को बंद करने और जांच नहीं करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम में दर्ज प्राथमिकियां भी रद्द कर दी और राज्यों को कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं करने को कहा है। हालांकि न्यायालय ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल संगीन आपराधिक मामले वाले 2873 लोगों के खिलाफ जांच जारी रखने की अनुमति दी है। सरकार ने कांग्रेस जनता पार्टी CJP के शनिवार को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को रद्द करने की घोषणा का स्वागत किया है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता युवाओं की प्रगति और विकास है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के 16 रक्षा उपक्रमों के प्रदर्शन और प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने रिकॉर्ड रक्षा उत्पादन में उपक्रमों के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। रक्षा मंत्री ने उपक्रमों से बदलते परिदृश्यों के बीच रक्षा तैयारियों को बढ़ाने के लिए अगले 5 वर्षों की रूपरेखा तैयार करने को कहा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। इसका मुख्य उद्देश्य देश के चिन्हित 100 जिलों में योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाना, विभिन्न योजनाओं के बीच समन्वय को मजबूत करना और जिला स्तर पर बेहतर प्रदर्शन सुनिश्चित करना है, ताकि किसानों को इसका सीधा लाभ मिल सके। सरकार ने चीनी और प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए

0: कई उपाय किए हैं। केंद्र सरकार ने चीनी की जमाखोरी और सट्टेबाजी रोकने के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 4000 से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। ये नई सीमा 15 सितंबर से 30 नवंबर तक लागू रहेगी। अब कोई भी व्यापारी स्टॉक मिलने के 30 दिनों से अधिक समय तक तय सीमा से अधिक चीनी अपने पास नहीं रख सकेगा। वहीं कांदा एक्सप्रेस मालगाड़ियों और ट्रकों के जरिए देश के प्रमुख शहरों में 2500 मीट्रिक टन से अधिक प्याज की सुनियोजित आपूर्ति की जा रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक मोहन भागवत ने वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर बल दिया है। कनाडा में हिंदू विश्व बंधु कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि दुनिया की विभिन्न भाषाओं, परंपराओं और उपासना पद्धतियों का सम्मान किया जाना चाहिए, क्योंकि ये विविधता ही हमारी एकता का आधार है। अफगानिस्तान के साथ 3 T20 मैचों की श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर और उपकप्तान तिलक वर्मा होंगे। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को भी टीम में मौका मिला है। श्रृंखला का पहला मैच 13 सितंबर, दूसरा 15 और तीसरा 17 सितंबर को दिल्ली में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। समय है कार्यक्रम विवरण का। सबसे पहले हमारे आज के सांध्यकालीन सभा के शेष कार्यक्रम। अब से कुछ ही पलों में 7:30 पर सुनेगा किसान वाणी कार्यक्रम, जिसमें आप सुनेंगे राष्ट्रीय कृषि बाजार विषय पर विशेषज्ञों एवं हितग्राहियों से बातचीत पर स्थल रिकॉर्डिंग आधारित कार्यक्रम। रात्रि 8 होगा कार्यक्रम सुर्खियों में। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकते हैं रात्रि 8:15 पर और 10:00। 9:30 पर पेश करेंगे उर्दू प्रोग्राम कहकशां, जिसमें आप सुनेंगे गजलों पर केंद्रित कार्यक्रम आबशारी गजल। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में रात्रि 10:30 पर सुनेगा डॉक्टर एन राजम का वायलिन वादन, राग होगा यमन। और अब बारी है कल के कार्यक्रमों की। कल आकाशवाणी भोपाल से 7:20 पर सुनेगा दैनिक सूचना पर कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा आप सुन सकते हैं 8:30 पर। सुगम संगीत के कार्यक्रम में 9:15 पर हम आपको सुनवाएंगे चंद्रशेखर चक्रवर्ती के गाये चंद भजन। प्रदेश की सुर्खियों में ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे 9:30 पर। हर रोज की तरह आप सुनेंगे 10:00 जिले की चिट्ठी। बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम महिला संसार 10:05 पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला में 10:30 पर सुनेगा विदुषी गंगूबाई हंगल का ख्याल गायन, राग होगा भैरव। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में 11:00 सुनेगा फोन इन कार्यक्रम फोन करें की सुने आपकी फरमाइश। ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं दिन में 12:00 और दिन में 2:30 पर। संग्रहालय से इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे धारावाहिक जमुनिया का 15वां भाग, समय रहेगा दिन में 12:30। 1:00 होगा महिला कार्यक्रम, 1:30 पर सुनेगा लोक संगीत का कार्यक्रम। 1:45 पर पेश करेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम और 5:02 पर युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र की प्रस्तुति होंगे। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकते हैं 5:33 पर, 6:30 पर और रात्रि 8:15 पर। शाम 6 बजे होगा NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम। कल शाम 7:21 पर प्रसारित करेंगे कार्यक्रम ग्राम सभा, जिसमें होगी भेंटवार्ता। विषय रहेगा एक्वापोनिक्स, मछली के साथ पौध उत्पादन। जानकारी देंगे डॉक्टर महेंद्र कुमार यादव। रात्रि 8 बजे होगा कार्यक्रम सुर्खियों में। 9:30 पर सुनेगा कार्यक्रम चर्चा का विषय है। ये कार्यक्रम हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। विजय तंडोलकर का लिखा नाटक बाबूजी आप सुन सकते हैं रात्रि 10 बजे। प्रस्तुत करता होंगे राकेश ढांडियाल। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में रात्रि 10:30 पर सुनेगा विदुषी गंगूबाई हंगल का ख्याल गायन। राग होगा मियां मल्हार। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।

0: 2023 में मऊगंज, मैहर और पांडुर्ना इन जिलों का गठन हुआ था और अभी वहां पर सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन सशक्तिकरण के कार्यालय संचालित नहीं है, तो वो भी अब संचालित होंगे और इन तीनों जिलों में कुल मिलाकर 15 पद कार्यालय के लिए और चतुर्थ श्रेणी के दो दो पद प्रति जिला, ये भी इसकी स्वीकृति हुई है।
1: मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। अप्रैल से जून 2026 की तिमाही में देश की जीडीपी वृद्धि दर 7.8% रही, जो गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था ने शानदार प्रदर्शन किया है और जन कल्याणकारी योजनाओं से आर्थिक समृद्धि को गति मिल रही है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल में प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत प्रदेश के लगभग 1,22,000 मेधावी विद्यार्थियों के खातों में लैपटॉप खरीदने के लिए 304,98,00,000 रुपये से अधिक की राशि सिंगल क्लिक से अंतरित की। प्रत्येक पात्र विद्यार्थी को 25,000 रुपये प्राप्त हुए। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से सफलता में विनम्र रहने और असफलता से सीख कर आगे बढ़ने का आह्वान किया। ग्वालियर में कल बलराम जयंती के अवसर पर राज्य स्तरीय किसान समागम का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। मेला मैदान में तैयारियां तेज हैं। किसानों के लिए कृषि प्रदर्शनी, पेयजल और विशेष सेवा काउंटर की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा और यातायात के भी व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज शिवपुरी में अमृत भारत रेलवे स्टेशन और पोहरी रेलवे ब्रिज का निरीक्षण किया। उन्होंने यात्री सुविधाओं और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सिंधिया ने कहा कि आधुनिक रेलवे स्टेशन और ब्रिज से शिवपुरी में रेल कनेक्टिविटी, व्यापार, पर्यटन और आवागमन को मजबूती मिलेगी। इससे पहले उन्होंने अनुसूचित जाति के 50 सीटर प्री मैट्रिक बालक छात्रावास का लोकार्पण और विभिन्न सड़कों के निर्माण का भूमि पूजन भी किया।
3: 13,000 स्क्वायर फुट का ये 50 सीटर हॉस्टल सबसे विकट समस्या मेरे बच्चों के लिए होती है, आदिवासी समाज के, अनुसूचित जाति समाज। गांव से आते हैं, शहर में रहने के लिए जगह नहीं होता और उसके वजह से पढ़ाई छूट जाती है। संवेदनशील सरकार ने एक ऐसी योजना निर्धारित की है जिसके आधार पर आपके लिए रहने का जगह आपके घर की तरह हो। आपके प्राचार्य, आपके शिक्षक घर के माता पिता के रूप के हो।
1: देश में प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने सुरक्षित भंडार से प्याज बाजार में भेजना शुरू कर दिया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए कांदा एक्सप्रेस मालगाड़ियों और ट्रकों के जरिए देश के प्रमुख शहरों में प्याज की सुनियोजित आपूर्ति की जा रही है। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने आज मंत्रालय में विभागीय योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए संचालित 106 छात्रावासों में 8 सितंबर से मेस का संचालन अनिवार्य रूप से शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने विद्यार्थियों को पौष्टिक और गुणवत्तापूर्ण भोजन समय पर उपलब्ध कराने पर जोर दिया। इसके साथ ही विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना का पोर्टल साल भर खुला रखने और हर 3 माह में साक्षात्कार आयोजित करने के निर्देश दिए। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में अगले 4 दिन भारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने उमरिया और बालाघाट में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि सतना, रीवा, पन्ना, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, कटनी, मैहर, शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी, जबलपुर, मंडला, सिवनी और छिंदवाड़ा जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। वहीं खेल की खबर में भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम घोषित कर दी है। श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाया गया है, जबकि वैभव सूर्यवंशी को भी टीम में जगह मिली है। संजू सैमसन और ईशान किशन विकेटकीपर होंगे। सीरीज का पहला मुकाबला 13 सितंबर को नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। देवास जिले के खातेगांव में 5 सितंबर को विकासखंड स्तरीय गैर आवासीय प्रशिक्षण का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। सीहोर के आष्टा के सांदीपनी विद्यालय में खेल प्रतियोगिताओं का

लगभग 3 टन अवैध खैर लकड़ी और परिवहन में प्रयुक्त वाहन को जब्त किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट पेपर लीक मुद्दे से जुड़े छात्र प्रदर्शनों की सभी प्राथमिकी बंद करने का आदेश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एससीओ शिखर सम्मेलन में आतंकवाद को ध्वस्त करने का आह्वान किया। प्रदेश मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के विकास से जुड़े करीब 41,000 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दी और प्रदेश में अगले 4 दिन तक भारी बारिश की संभावना। उमरिया और बालाघाट में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

भारत की संस्कृति का दर्पण प्रसार भारती है कराता, भारत के हर रूप का दर्शन। कभी भारत की बदलती तस्वीर है, कभी भारत की बदलती आवाज, कभी भारत की बदलती सोच है, कभी भारत का बदलता अंदाज। प्रसार भारती भारत का आने वाला कल है,

0: पढ़ाई के साथ कमाई भी। मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। 18 से 29 साल के युवाओं को मिलेगी इंडस्ट्री ट्रेनिंग और हर महीने 8,000 से 10,000 रुपए तक का स्टाइपेंड। हुनर सीखो, पैसा कमाओ और करियर बनाओ एक साथ। रजिस्टर करने का मौका अभी है।
1: mmsky.mp.gov.in पर जाएं। सीखो, कमाओ और लाइफ में कुछ बड़ा करो।

0: खेती किसानी की समसामयिक जानकारियों से भरा कार्यक्रम।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना।

आज की किसान वाणी कार्यक्रम की शुरुआत हम एई नौने संदेश के साथ कर रहे हैं। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भैया बहनों को मनोज सक्सेना की दो हाथ जोड़े की राम राम पहुँचे। भैया, पानी छेकबो मतलब के वाटर हार्वेस्टिंग करबो, मतलब के बरसात के पानी को जमीन में उतार के धरती के जल स्तर को बढ़ाने, तभी तो हम अच्छी खेती कर पाएंगे। कहते हैं ना, खेती की कल्पना बिना पानी के करी नहीं जा सकत। तो भैया, अच्छी खेती करबे के लाने पानी को बचावो जरूरी है, पानी को हार्वेस्टिंग करबो जरूरी है, पानी को धरती में उतारबो जरूरी है। और भैया, किसानों को आत्मनिर्भर बनाबे के लाने, किसानों को समृद्ध करबे के लाने सरकार लगातार प्रयास कर रही है, और भारत को दलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाबे के लाने भी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। दलहन, हाँ भैया, दाल हमारे भोजन की थाली को सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे दाल हमें प्रोटीन देते ना, वैसे ही दलहनी फसलें भी खेत की मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं। मनो, फिर भी हम किसान भैया देश में कम दाल उगा रहे हैं, और जई मध्य हमारे देश के लाने पूरी दाल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, सो जा मध्य दूसरे देशों से हमें दाल बुलाने पड़ रही है। भारत को दाल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनावे खा और किसानों की आय बढ़ावे के लाजे केंद्र सरकार ने दलहन आत्मनिर्भरता मिशन शुरू करो है। सन 2025-26 से 2030-31 तक माने 6 सालों के लाने 11,440 करोड़ रुपया को प्रावधान है, और लक्ष्य है दाल को उत्पादन बढ़ा के 350 लाख टन करो जाए। भैया हरो, जा मिशन में खास तौर पे तुअर मतलब अरहर, उड़द और मसूर पे जोर दौ गौ है। किसानों को बंपर पैदावार मिले एक इलाने बदलते मौसम में अच्छी फरवरी किस्मों के बीज किसानों को बांटे जा रहे हैं।

0: लगभग 88,000 किट फ्री में किसानों को दी जा रही है। तो आप भी जा मिशन को हिस्सा बनो और दलहन उत्पादन से जुड़ो, अपने खेतों में भरपूर दालें लगाओ। और हाँ, ध्यान रखो, जितनी भी दाल आप उगे हो, पूरी की पूरी दाल मतलब 100% खरीदी सरकार करेगी। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ध्यान दो, अरहर और तुअर को वर्ष 2026-27 को समर्थन मूल्य 8,450 रुपया है, उड़द को समर्थन मूल्य 8,200 रुपया है और मसूर को समर्थन मूल्य 7,000 रुपया प्रति क्विंटल घोषित करो जा चुको है। तो हम सब किसान भाइयों को मिलकर दलहन उत्पादन की तरफ चलने हैं। दलहन उगाएं, मिट्टी बचाएं, किसान की आय बढ़ाएं और भारत को दाल उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाएं। भैया, जैसे हमने बात करी समर्थन मूल्य की, मंडी में अनाज विक्रय करबे के लाने सरकार ने एक नई व्यवस्था शुरू करी है, ई नाम, जेखो राष्ट्रीय कृषि बाजार भी कहते हैं। तो भैया, एक हम आपके लाने स्थल रिकॉर्डिंग पे आधारित जब बातचीत सुनवा रहे हैं, जो मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड यानी मंडी बोर्ड के अधिकारियों, मंडी सचिव और किसानों के साथ बैठ के आनंद कृष्ण वर्मा ने करी है। आप एक को सुनो और आप भी ई नाम योजना को हिस्सा बनो।
1: किसान भाइयों बहनों, किसानों के सामने हमेशा एक समस्या रही है, हमेशा एक प्रश्न उनके सामने उठता था कि उपज को कहाँ ऐसी जगह पर बेच सकें जहाँ उनकी उपज का अधिक से अधिक अच्छा मूल्य मिल सके, उनकी मेहनत को अच्छा प्रतिफल मिल सके। केंद्र सरकार ने एक बहुत अच्छी योजना शुरू करी है, ई नाम, इसका मतलब है ई राष्ट्रीय कृषि बाजार। इन्ही बातों को लेकर के हमने कुछ लोगों से बात करी।
2: इस समय मेरे साथ में हैं श्री एस के कुमरे साहब, जो कि संयुक्त संचालक हैं कृषि विपणन बोर्ड में। कुमरे साहब, सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि ये राष्ट्रीय कृषि बाजार होता क्या है और इससे किसानों को किस प्रकार का फायदा मिलता है।
3: किसान भाइयों, भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया ई नेम मतलब राष्ट्रीय कृषि बाजार पूरे देश की मंडियों को जोड़ने वाला एक सरकारी प्लेटफार्म है। ई प्लेटफार्म इसे कहते हैं कि ऑनलाइन ट्रेडिंग इसमें होती है। इसमें आपकी फसल की बोली सिर्फ आपकी स्थानीय मंडी के व्यापारी नहीं बल्कि पूरे देश के व्यापारी ऑनलाइन इसी ई प्लेटफार्म के माध्यम से लगाते हैं
1: जी।
3: और जिसमें कंपटीशन ज़्यादा रहती है और ज़्यादा से ज़्यादा दाम आपको मिलेगा आपकी फसल को ई प्लेटफॉर्म के माध्यम से बेच दिया जाएगा, जिसमें आपको अधिक से अधिक दाम प्राप्त होंगे।
1: तो ये तो आपने अच्छी चीज़ बताई कि पूरे देश भर की जो मंडियां हैं, देश भर की मंडियों से हम जुड़ जाएंगे और देश भर की मंडियों में जहां सबसे ज़्यादा दाम मिल रहा होगा वहां पर हम अपनी फसल को बेच सकते हैं। ये इसके लिए हमें करना क्या होगा?
3: इसके लिए आप अपने पास की जो भी मंडी है वहाँ जाकर मंडी के नोडल अधिकारियों जो नियुक्त हैं उसमें मुफ्त में आप पंजीकरण करवा सकते हैं
1: जी।
3: अपने मोबाइल पर ई नेम ऐप डाउनलोड करके भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं
1: जी। तो आपने ये बताया कि हम देश भर की सारी मंडियों से हम जुड़ सकते हैं, तो क्या हमें अपनी फसल बेचने के लिए किसी दूसरे राज्य में जाना पड़ेगा?
3: नहीं नहीं, ये बिल्कुल आवश्यकता नहीं है दूसरे राज्य में जाने की। आपको अपनी फसल पहले की तरह पास की मंडी में ही लाना होगा
1: जी।
3: बस उसकी बोली इंटरनेट जो ई प्लेटफॉर्म है हमारा ई नेम का, इसके जरिए अलग अलग राज्यों के व्यापारी इसमें जुड़े रहते हैं
1: जी।
3: और वहां से वो ऑनलाइन जो है बोली लगाकर आपकी फसल खरीद सकते हैं
1: जी। तो व्यापारी फसल को देखे बिना सही दाम कैसे तय करेगा?
3: क्या होता है कि ऑनलाइन में हमारे यहाँ जो ई प्लेटफॉर्म में सेलिंग की व्यवस्था है, जो डिस्प्ले लगे हुए हैं जिसमें सैंपलिंग वगैरह करके जो है डिस्प्ले के माध्यम से
1: अच्छा
3: व्यापारियों तक जो है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनको जानकारी प्राप्त हो जाएगी।
1: मतलब मंडी जो है वो ही, हमने मंडी में अपनी उपज पहुंचा दी, फिर वहां पर उसकी सैंपलिंग हुई, आपने उसकी ग्रेडिंग कर दी और वो ग्रेडिंग को फिर आपने इंटरनेट पे अपलोड
3: कर देते हैं। तो उसके आधार पर जो है वो उच्चतम बोली लगाकर जो है कृषक की जो फसल है उसको क्रय कर सकते हैं
1: जी। यदि मान लीजिए ऑनलाइन बोली में जो भी दाम दिया जा रहा है, मान लीजिए हमें पसंद नहीं आ रहा, तब हम क्या करेंगे?
3: ऑनलाइन बोली में जो दाम, चूंकि इसमें एक मंडी के व्यापारी तो है नहीं, इसको इंटर स्टेट के व्यापारी भी जो है इसमें जुड़े रहते हैं, तो इसमें कंपटीशन रहती है
1: जी।
3: किसान तभी स्वीकृत कर अपने बोली जो लगी हुई है उसको, जो उच्चतम बोली होगा उसी को ही स्वीकार करेगा। अगर नहीं करना है तो आप लिख सकते हैं कि इस रेट पर मैं नहीं बेच पाता हूँ, ये बता सकते हैं किसान।
1: मतलब अपनी मर्जी है, हमें बेचना है तो हम बेचेंगे उस रेट पर, नहीं बेचना है तो नहीं बेचना। अच्छा, हमने मान लीजिए फसल हमारी किसी व्यापारी को पसंद आ गई, हमें

0: उसकी रेट हमें भी स्वीकार हो गई। तो हमारी फसल जब सेल हो जाती है, बिक जाती है, तो उसके बाद में हमें पैसा जो पेमेंट है वो कैसे मिलेगा?
1: पैसा जो है RTGS के माध्यम से जो है आपके सीधे बैंक खाते में चला जाएगा
0: जी। मतलब मंडी के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी?
1: नहीं, इसमें मंडी में चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है, सीधे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की व्यवस्था इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से है।
0: जी जी जी। सर ये बताएं कि जो भुगतान होता है उसमें कितना समय लग जाता है?
1: हमारे यहाँ चूंकि ये व्यवस्था और भी पहले जो मैनुअल हुआ करता था उसमें तो ऐसा कि नगद तुरंत होता था, इसमें तो तत्काल होगा
0: जी,
1: तत्काल भुगतान की व्यवस्था है इसमें।
0: अच्छा,
1: इसके मतलब बाद ही जो है भुगतान के बाद ही जो है कृषि उपज जो है मंडी से बाहर जा पाएगी।
0: बाहर जी। अच्छा कुमरे साहब, अब हमें ये बताएं कि किन चीज़ों का हमारे किसान भाई विशेष रूप से ध्यान रखें जिससे कि ये काम वो अच्छे तरीके से कर सकें और ई नाम का अधिक से अधिक और अच्छे से अच्छा फ़ायदा वो उठा सकें। अच्छा एक सवाल ये और है जो कि जब ई नाम इतनी सारी व्यवस्थाएं दे रहा है, इतनी सारी सुविधाएं दे रहा है, तो इसका इस्तेमाल करने के लिए कोई फीस लगती है, कुछ इसके चार्ज लगता है?
1: नहीं, इसमें किसानों के लिए ई नाम पोर्टल पर पंजीकरण और फसल बेचने की सेवा जो है पूरी तरह से निःशुल्क है।
0: या फसल बिकने पर कोई कमीशन वगैरह?
1: नहीं, इसमें इस तरह की कोई भी कमीशन की व्यवस्था नहीं है और ये किसानों के लिए बहुत ही पारदर्शी और सरलतम विक्रय की योजना है। और इसके अलावा भी आपको जानकारी जो है टोल फ्री नंबर है
0: जी
1: 1800270024, इसमें कॉल करके अपनी भाषा में जानकारी ले सकते हैं
0: जी। तो कुमरे साहब, आपने ई नाम के बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे किसानों के लिए आपने उपलब्ध कराई हैं, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ई नाम के ऐप के बारे में जानकारी लेने के लिए हमारे साथ में हैं प्रत्याशा शर्मा जी जो मंडी बोर्ड में पदस्थ हैं और इनको काफ़ी जानकारी है तकनीकी किस्म की। तो प्रत्याशा जी, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है, नमस्कार।
2: थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
0: प्रत्याशा जी, ई नाम का जो ऐप है उस ऐप के बारे में अभी जानकारी मिली, तो ये ऐप किस तरह से हमारे किसान भाई अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं और उसको उसमें किस तरीके से काम करना होता है, इसके बारे में जानकारी दें।
2: जो ई नाम ऐप है उसको डाउनलोड करना और उसको ऑपरेट करने का बहुत ही आसान तरीका है। ई नाम अगर आप एक स्मार्टफोन चलाते हैं, आप एंड्रॉयड यूज़ करते हैं या एप्पल फ़ोन यूज़ करते हैं, तो वो दोनों में अवेलेबल है। आप एंड्रॉयड में भी कर सकते हैं या उसे एप्पल iOS सिस्टम में भी ले सकते हैं। और ई नाम ऐप डाउनलोड करने के मात्र 5 तरीके हैं, 5 स्टेप्स आप इजीली उसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप सबसे पहले ऐप डाउनलोड कैसे करेंगे, आप अपने स्मार्टफोन के गूगल प्ले स्टोर से उसे डाउनलोड करें, अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर खोलें, सर्च बार में ई नाम टाइप करें और आधिकारिक ऐप पहचान कर इंस्टॉल पर क्लिक करें। आधिकारिक आप कैसे जानेंगे, उसमें वहाँ पर लिखा हुआ है स्मॉल फार्मर्स एग्रीकल्चर कंसोर्टियम। ऐप डाउनलोड होने के बाद आप उसे ओपन करें, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में आप जाएंगे, उसमें आप उसमें भाषा और रजिस्ट्रेशन ऑप्शन चुनेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि ई नाम इंटर स्टेट इंटरमंडी सबके लिए बना हुआ है, तो एक ये बहुभाषीय ऐप है। अच्छा। तो आप अपनी ऐप को खोलकर उसमें अपनी भाषा चुन सकते हैं। हम मध्य प्रदेश के परिपाटी में हम इंग्लिश हिंदी जो चुनना चाहें हम हिंदी चुनेंगे। फिर हम स्क्रीन पर जब देख रहे हैं तो वहाँ पे एक जगह आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन लिखा आ रहा है या जिसे हम पंजीकरण भी बोलते हैं, उस पंजीकरण बटन पर आप क्लिक करिए। फिर रजिस्ट्रेशन में आप जो विकल्प, आप एज अ ट्रेडर व्यापारी या एज अ फार्मर या आप एक FPO की तरह भी खुद को रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो आप उसमें अगर एक किसान है तो किसान भाई उसमें अपना फार्मर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तीसरा स्टेप ये है जिसमें हमें हमारी जो बेसिक या मूलभूत जो जानकारी है वो दर्ज करना है, जिसमें ये जानकारी आपको बिल्कुल सही भरना है, जिसमें आप अपना पूरा नाम, मोबाइल नंबर, आपका जेंडर और आपका जो भी पता है आप जहाँ से भी हैं उसकी जानकारी आप दर्ज करेंगे। फिर हम उसमें अपना राज्य, जिला, पास की इनाम मंडी, अगर आप देखना चाहते हैं कि मेरे पास कौन सी मंडी है तो उसका एक और ऑप्शन अवेलेबल है, आप उसमें अपने 100 किलोमीटर के रेडियस में अपनी मंडी भी देख सकते हैं कि मैं मुझे कौन सी मंडी बहुत ज़्यादा पास पड़ेगी, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर चौथा स्टेप जो है जो सबसे महत्वपूर्ण भी है, इसमें आप अपना बैंक खाता और अपने दस्तावेज अपलोड करेंगे। बैंक विवरण में आप अपना बैंक खाता नंबर और आपका IFSC कोड जो आपको बिल्कुल सही सही भरना है। फिर आप अपने दस्तावेज में क्या, आप अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक की फ़ोटो और पहचान प्रमाण पत्र की फ़ोटो भी अपलोड कर सकते हैं। फिर आखिरी स्टेप जो बहुत ही सिंपल है, रजिस्ट्रेशन आप अपना सबमिट कर सकते हैं। आप सारी जो आपने जानकारी है कि हमने हमारा नाम, हमने अपना पता, अपना मोबाइल नंबर, बैंक खाता नंबर, IFSC कोड, इसको हम चेक करेंगे और चेक करने के बाद हम सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे

0: एक आपके मोबाइल में ओटीपी आएगा, जो नंबर आपने उसमें प्रविष्टि की है उसी नंबर पर आपका ओटीपी आएगा और ओटीपी डाल के आपके सत्यापन की जो रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण हो जाएगी। सत्यापन के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी भी मिल जाएगी।
1: जी प्रत्याशा जी, आपने तो बहुत विस्तार से और बहुत सहज रूप से आपने सारी की सारी जानकारी दे दी हमारे किसान भाइयों को। ये अब ये रजिस्ट्रेशन आईडी जो मिल जाती है उसके बाद में उसका उपयोग क्या होता है?
0: ये जो रजिस्ट्रेशन आईडी है, जैसे हमारी एक यूनिक आईडी जनरेट होती है, तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो रजिस्ट्रेशन आईडी है आपकी ईनाम पोर्टल पे आपकी एक यूनिक आईडी, जब आप इसको लॉगिन करेंगे यही रजिस्ट्रेशन आईडी का उपयोग करके आप लॉगिन करेंगे।
1: जी जी, ये बताएं कि रजिस्ट्रेशन के समय हमारे किसान भाइयों को क्या क्या चीजें या कौन कौन से दस्तावेज अपने पास में रखना चाहिए जिनकी तुरंत में जरूरत पड़ती है?
0: रजिस्ट्रेशन करते समय आप अपना आधार कार्ड, आपका ड्राइविंग लाइसेंस या आपका फोटो पहचान पत्र रख सकते हैं जो आपके आइडेंटिटी के लिए होगा। साथ ही क्योंकि जैसे किसान भाइयों को अपना पैसा प्राप्त करना है जो वो ऑनलाइन माध्यम से जो प्राप्त करेंगे उसके लिए उनका अकाउंट नंबर बहुत ज्यादा आवश्यक है और उसका आईएफएससी कोड बहुत आवश्यक है, तो इसलिए आप साथ में अपनी बैंक पासबुक की साफ फोटो रखें क्योंकि उसे अपलोड भी करना पड़ेगा और साथ ही अपना वो मोबाइल नंबर जो एंट्री कर रहे हैं जिस जो चालू हो क्योंकि ओटीपी भी उसी पे आएगा, आप इसमें अपने मोबाइल नंबर से भी क्योंकि लॉगिन कर पाएंगे।
1: तो प्रत्याशा जी, आपने बहुत विस्तार से बहुत अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों के लिए दी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: भैया कैसी लगी जब बातचीत? जब बातचीत को आगे को हिस्सा हम आपके लाने थोड़ी देर बाद सुने हैं। मनो, अब हम चल रहे हैं बई संदेश की तरफ जो हमने आपको शुरुआत में सुनाओ। तो छेक लियो पानी गा रहे हैं रईस सिंह यादव और साथी। अरे

0: का बात है भैया, मजा आ गओ। इत्तो नोनो गीत, इत्तो नोनो संदेश गा रहे थे रई सिंह यादव और साथी। अब फिर चलते हम वही बातचीत की तरफ जो ई नाम के बारे में मंडी बोर्ड के अधिकारियों से और किसानों से बातचीत कर रहे हैं आनंद कृष्ण वर्मा।
1: साथियों, हमारे साथ इस समय एक और सज्जन है। सर, आपका परिचय।
2: मेरा नाम अशोक कुमार राजपूत है, मैं मंडी सचिव हूँ मकसूदनगढ़ में, ये गुना के पास है।
1: राजपूत साहब, ये बताएं कि हमारे जो किसान मंडी में आते हैं अपनी फसल लेकर के बेचने के लिए
2: जी,
1: तो वो किसान क्या ई नाम से भी जुड़े हुए हैं या ई नाम से भी परिचित हैं?
2: ई नाम से पूरी मंडी हमारी हो गई है, ई नाम से पूरी व्यवस्थाएं हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या वहाँ पर आती नहीं है। मतलब मंडी की डाक नीलामी से लेकर तुलने तक और पेमेंट संबंधी तक किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है
1: जी। अच्छा, आप किसानों को ई नाम पर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए किस तरह से प्रेरित करते हैं?
2: पहले हम क्या है कि गांव-गांव में प्रचार कराएं, हमने अनाउंसमेंट भी कराएं
1: जी जी।
2: इसके अलावा वैसे गांव से हम संपर्क भी करते हैं
1: जी,
2: जो हमारे मतलब कार्यालय में आते हैं उनको पूरी जानकारी देकर
1: जी
2: उनको अवगत कराते हैं कि भाई आप ई नाम से आप जुड़िए, और हम मोबाइल के दूरभाष के माध्यम से भी उनसे मतलब मिलते हैं
1: जी जी। तो आपके यहाँ कितने किसान ऐसे होंगे जिन्होंने ई नाम पर अपना रजिस्ट्रेशन करा के रखा होगा?
2: कम से कम हमारे यहाँ 1500 के मतलब समथिंग किसान ऐसे हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन और पूरे जानकारी उन पर उपलब्ध है।
1: अच्छा, मंडी में आप लोग कोई उनको किसान जब अपनी फसल लेकर के आता है तो उनके लिए चार्ज किस प्रकार का लिया जाता है, उनसे कुछ शुल्क वगैरह?
2: नहीं लिया जाता,
1: निःशुल्क।
2: निःशुल्क, निःशुल्क।
1: बहुत अच्छा। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, एक बात मैं जानना चाह रहा था कि ई नाम के माध्यम से जैसे आपके गाँव का कोई किसान है तो वो किसी दूसरे गांव की या किसी दूसरी जगह की मंडी में भी बेच सकता है कि?
2: बिल्कुल बिल्कुल साहब, कई बार एक किसान का किसी भी मंडी में बेच सकता है वो
1: जी।
2: उसके लिए
1: मतलब
2: दाम अधिक मिले तो मतलब हम प्रेरित भी करते हैं अपना साफ सुथरा माल लेकर आ, जिससे ज्यादा से ज्यादा दाम मिले, वो
1: अच्छा दाम मिले,
2: चाहे वो किसी भी मंडी में ले जाए।
1: तो उसको फिर भौतिक रूप से ले जाना पड़ता है माल को कि यहीं से इलेक्ट्रॉनिक तरीके से माल उनने वहाँ पर दिया, फिर बाद में डिलीवरी होती रहती है, ऐसा कुछ रहता है?
2: नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं सर, वो खुद के स्वयं के वाहन से लेके आते हैं, मंडी प्रांगण में तुलवाते हैं और वहीं से मतलब लेकर वो अपने जो भी पेमेंट होता है वो लेकर वो चले जाते हैं।
1: अच्छा, उनको तुरंत भुगतान हो जाता है?
2: जी, तुरंत भुगतान हो
1: जाता है। अच्छा, तो किसान इस नई व्यवस्था जो है ई नाम की जो व्यवस्था है
2: जी,
1: उससे किसान संतुष्ट हैं क्या?
2: बहुत संतुष्ट हैं सर, क्या है कि उसका प्रचार प्रसार और नई जनरेशन आई है, वो क्या है कि इससे काफ़ी संतुष्ट हैं
1: जी। आप जो नई जनरेशन को और क्या संदेश देना चाहेंगे, उनसे क्या कहना चाहेंगे?
2: हम यही कहना चाहेंगे सब जितने ज़्यादा हैं वो ई नाम से ही जुड़ें और मंडी प्रांगण में ही फसल बेचें, बिचौलियाँ या अन्य लोगों से मिलकर मतलब वैसा माल नहीं दें किसी को, डायरेक्ट मंडी प्रांगण में ही दें तो ज़्यादा दाम और नगद पेमेंट मिलेगा सर
1: जी जी। अच्छा, एक बात और मैं जानना चाहता हूँ कि जो किसान आपके पास में माल लेकर के आते हैं उस माल में किस प्रकार की गुणवत्ता होना चाहिए जिसको कि मंडी स्वीकार करती है?
2: उसमें सर क्या है कि साफ सुथरा क्लीन होना चाहिए, अच्छा उसमें कचरा वगैरह ना हो, उसमें डंठल मिट्टी वगैरह नहीं हो
1: जी, जी।
2: वो क्या है चलने से छान कर जितना अच्छा लेकर आएंगे उतना उनको दाम बढ़कर मिलेगा।
1: अच्छा, मतलब साफ सफाई से,
2: साफ सफाई से हो, उसमें फफूंद ना हो, मतलब जो है मिट्टी ना हो, डंठल ना हो, बढ़िया छान के लाएंगे तो उनको मतलब जो तब लाभ मिलेगा, पैसा ज्यादा मिलेगा।
1: हमने एक किसान से बात करी, उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं ई नाम के बारे में या ई नाम से संबंधित किस प्रकार का अनुभव रहा है। भैया, सबसे पहले तो आपका नाम बताइए और आप कौन से गांव से हैं इसके बारे में बताइए।
3: मेरा नाम पिंटू शर्मा है, मैं गुना जिले मधुसूदनगढ़ का रहने वाला हूँ।
1: जो राष्ट्रीय कृषि बाजार जो है ई नाम कहलाता है
3: जी,
1: तो उसका भी बहुत चल रहा है, उसके बारे में आपको जानकारी है क्या?
3: ई नाम है हमें जानकारी, जिसके माध्यम से हम सौदा पत्रक के माध्यम से हमारी फसल का क्रय विक्रय करते हैं। ई नाम के माध्यम से हमें हमारी फसल का करंट भाव मिल जाता है, इससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो जाता है। हमें जानकारी होती है कि आज की कीमत में हमारी फसल की अच्छी कीमत मिल रही है, इससे हमें घाटा नहीं जाता है। नहीं तो पहले बाज़ारों में ई मंडियां नहीं होती थी तो पुराने में जैसे जो व्यापारी का भाव होता था उसी भाव में हमें बेचना पड़ती थी।
1: अच्छा,
3: आज ई मंडी के माध्यम से हम हमारी फसल को एक मनपसंद भाव में बेच सकते हैं
1: जी। तो ये ई नाम के माध्यम से यदि आप फसल बेच रहे हैं तो आपको अच्छा फायदा मिल रहा है, ये आपको
3: जी
1: आपका कहना है।
3: हाँ।
1: तो आप हमारे किसान भाइयों को और क्या बताना चाहेंगे इस बारे में?
3: जी, ज्यादा से ज्यादा ई नाम मंडी ऐप को डाउनलोड करें और अपनी फसल की क्रय विक्रय इसी के माध्यम से करें और अपने फसल की अच्छी कीमत लें।
1: तो किसान भाइयों, सुना आपने कि ई नाम के माध्यम से हम अपनी फसल की बेहतर से बेहतरीन कीमत प्राप्त कर सकते हैं। तो हम यही कहेंगे कि ई नाम आइए और अच्छी कीमत का ई नाम पाइए।
0: भैया, अब अपन सुन रहे थे जा एक स्थल रिकॉर्डिंग पे आधारित बातचीत, जो राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ई नाम विषय पे आनंद कृष्ण वर्मा ने मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड यानी मंडी बोर्ड के अधिकारियों और किसानों से करी। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद भैया, आपने हम सब किसानों के लाने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई। भैया, अब आगे बढ़ रहे हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आप सभी किसान भाइयों को सलाह दी जा रही है कि मानसून की सक्रियता को देखत भए आवे वाले दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बरसात होने की संभावना है। ऐसे में किसान भैया ध्यान रखें, सबसे पहले खेत में जल निकासी की व्यवस्था करें, क्योंकि जल भराव से सोयाबीन, मक्का, अरहर और अन्य फसलों में जड़ों को नुकसान पहुंचा है। बरसात के दौरान खाद, उर्वरक और कीटनाशकों को छिड़काव तभी करें जब अगले कछु घंटों तक बरसात होने की संभावना न होए और खेतों में पर्याप्त नमी होए। उद्यानिकी के किसानों के लाने सलाह है कि तेज हवा और बरसात की संभावना को देखत भए सब्जी और बेल वाली फसलों और छोटे फलदार पौधों को सहारो जरूर दें। गरज चमक के दौरान खुले खेत में काम न करें, पेड़ के नीचे खड़े ना होएं, सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। और हाँ, किसान भैया अपने क्षेत्र के मौसम के हिसाब से काम करें, मतलब मौसम विभाग द्वारा जारी आपके क्षेत्र की मौसम की चेतावनी और स्थानीय कृषि सलाह के आधार पर काम करें। भैया, मंडी के भाव भी बता देवे आपको। इंदौर मंडी में कल 31 अगस्त को गेहूं को अधिकतम भाव थो 2630 रुपया प्रति क्विंटल, चना देसी 6520 रुपया, डालर चना 8380 रुपया प्रति क्विंटल, सोयाबीन को भाव 4220 रुपया रहो, मक्का को अधिकतम भाव 2020 रुपया प्रति क्विंटल दर्ज करो गौ, सरसों बिकी 7925 रुपया प्रति क्विंटल, ज्वार को भाव 2520 रुपया, भई मूंगफली को भाव 8520 रुपया प्रति क्विंटल दर्ज करोगा। साथ ही सूचना है कि मूंग बिकी 8800 रुपया प्रति क्विंटल की दर से, तुअर को भाव तो 8474 रुपया, मसूर 6650 रुपया प्रति क्विंटल की दर से बिकी। भैया हरो, जो थो आज को किसान वाणी कार्यक्रम, चलत चलत हम फिर आपको वही संदेश देबो चाहेंगे।
4: अरे छह

0: पानी बहुत जरूरी है, जब पानी को जमीन में उतारें, जैसे कि भूमि को जल स्तर बढ़ सके और हम सब के लाने खेती में फायदा हो सके। जय नोने संदेश के साथ मनोज सक्सेना को दिया गया, राम राम।
1: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: पुतला बोल रहे?
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब?
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। पहली वाली बात कहा,
2: पर हम तो सब यही डाले हैं।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच है?
1: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज तक जैविक खेती शुरू करूंगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
4: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान वाणी।

0: किसानवाणी
1: खेती किसानी की समसामयिक जानकारियों से भरा कार्यक्रम किसानवाणी।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसानवाणी, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, रात्रि के 8 बजे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सुर्खियों में।
3: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए, शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री के संबोधन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत स्कंद रंजन तायल। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं आकाशवाणी संवाददाता दीक्षा सक्सेना।
4: किर्गिज गणराज्य यानी कि किर्गिज रिपब्लिक के बिश्केक में कल शुरू हुए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि SCO समिट आज संपन्न हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज SCO समिट के राष्ट्र अध्यक्षों के परिषद की 26वीं बैठक में हिस्सा लिया। इस साल SCO की 25वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। आज SCO समिट को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर बात की। इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अम्बेसडर स्कंद रंजन तायल। अम्बेसडर तायल, आकाशवाणी के सुर्खियों में कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
5: धन्यवाद।
4: अम्बेसडर तायल, चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री ने SCO के लिए भारत के विजन के 3 मुख्य स्तंभों पर जोर दिया है जो कि सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और अपॉर्चुनिटी है। आप इसे किस नजरिए से देखते हैं?
5: शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2001 में स्थापित हुआ था, इसको 25 वर्ष अब हुए हैं। ये एक बहुत सुदृढ़ ऑर्गेनाइजेशन के रूप में सामने आया है, इसके 10 सदस्य हैं और प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में जो कहा वो एक भविष्य के लिए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की क्या दिशा होनी चाहिए और कहाँ अधिक ध्यान देना चाहिए उस पर उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए और बहुत ही समराइज करते हुए उन्होंने कहा कि 3 स्तंभ हैं जो बहुत मुख्य हैं SCO के लिए, सुरक्षा, कनेक्टिविटी और अवसर, अपॉर्चुनिटी। सुरक्षा तो सब जानते ही हैं कि देशों की सुरक्षा बाहरिक और आंतरिक बहुत ही आवश्यक है। अगर किसी भी देश को, किसी भी रीजन को विकास की तरफ बढ़ना है, आगे बढ़ना है, तो उस पर उन्होंने विशेष रूप से आतंकवाद का जिक्र किया। कनेक्टिविटी में जो शुरू में जब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी तो केवल 6 मेंबर्स थे और उसमें 4 सेंट्रल एशियन जो देश हैं, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, वो लैंडलॉक्ड हैं, उनका कोई समुद्रिक किनारा नहीं है, तो उनको एक कनेक्शन उनका केवल या तो ऊपर उत्तर दिशा में रशिया के द्वारा है या पूरब दिशा में चीन के द्वारा है। तो ये चाहते हैं कि भारत की तरफ, दक्षिण एशिया की तरफ भी उनका कुछ रास्ता बने, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए, और एक ईरान की तरफ भी रास्ता बने। तो उसमें भारत ईरान की तरफ से जो रास्ता है उसमें बहुत उनका मदद कर रहा है और उसमें कुछ अभी चैलेंजेस आ रहे हैं। और अपॉर्चुनिटी, तीसरी चीज उन्होंने जो कहा कि जो युवा हैं उनके लिए और सब नागरिकों के लिए किस तरह शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो भी एक्टिविटीज हैं, जो भी कार्यक्रम हैं, उनसे उनके अवसर बढ़ें, उनका विकास हो और उनको सहूलियत हो, इस दिशा में कार्य करना चाहिए।
4: प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के पूरे इकोसिस्टम को खत्म करने की जरूरत पर भी काफी जोर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि फाइनेंसिंग, रिक्रूटमेंट, रेडिकलाइजेशन और सेफ हैवन्स जैसी चीजों को भी उन्होंने अपने संबोधन में शामिल किया। जब आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री तो इस टेररिज्म के पूरे इकोसिस्टम को डिसमेंटल करने के लिए कई बार अपनी बात रख चुके हैं, लेकिन जब वैश्विक मंच पर ये बात कही जाती है, ये बयान आता है, तो पूरी दुनिया इसे कैसे देखती है और ये भारत के नजरिए से कितना महत्वपूर्ण है?
5: पूरा क्षेत्र

0: पिछले सालों में आतंकवाद से जूझता रहा है। भारत, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, रशिया, चीन में भी कुछ घटनाएं उइघुर एरिया में हुई थी, और अफगानिस्तान में जब से तालिबान का कंट्रोल पूरा हो गया है तो आतंकवाद में इस क्षेत्र में कमी आई है। पर भारत अभी भी आतंकवाद के घेरे में है, और हम सभी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि ये आतंकवाद का जो स्रोत है वो पाकिस्तान है, और इसीलिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी इस सभा में मौजूद थे और वहां बैठे हुए थे जब प्रधानमंत्री ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि कोई डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए। अगर आतंकवाद के खिलाफ लड़ना है तो हर व्यक्ति जो आतंकी कार्रवाई करता है, जान माल को नुकसान पहुंचाता है, वो आतंकवादी है। उसको ये ना देखें कि वो कहाँ से आता है, क्या है। और इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हर देश, जो भी उनके यहाँ जो इकोसिस्टम है, उसको पूरा खत्म नेस्त नाबूद करे। और इस पे फिर संकेत उनका पाकिस्तान की तरफ ही था, क्योंकि उन्होंने सेफ हेवेंस की बात की, तो पाकिस्तान में अभी भी दुनिया भर के आतंकवादियों को छुपने का जगह मिलती है। सब जानते हैं ओसामा बिन लादेन कहाँ पकड़ा गया था। रिक्रूटमेंट वहाँ मदरसों के द्वारा हो रहा है, रेडिकलाइजेशन मदरसों के द्वारा हो रहा है, और फाइनेंशियल नेटवर्क्स भी पाकिस्तान में पल रहे हैं, पनप रहे हैं। तो प्रधानमंत्री का ये संदेश सब मेंबर देशों के लिए था, पर मुख्यतः ये पाकिस्तान के लिए था।
1: जी एम्बेसडर तायर, जैसी जानकारी आपने अभी हमारे श्रोताओं को दी उसमें मैं ये भी जोड़ना चाहूंगी कि एससीओ बिश्केक घोषणा पत्र नार्को आतंकवाद के खिलाफ भारत के प्रयासों का समर्थन करता है और साथ ही साथ संगठित अपराध के खिलाफ सहयोग को भी मजबूत करता है। आगे बढ़ते हुए एम्बेसडर तायर, आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि आतंकवाद पे कोई डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए, तो इस स्टेटमेंट को, इस वक्तव्य को आप कैसे देखते हैं?
0: जैसा कि हमने देखा और पूरी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान कहता है कि वो तो खुद आतंकवाद से प्रभावित है, पर उसके यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादी पनप रहे हैं, पल रहे हैं, जो कि पूरी दुनिया ने देखा ऑपरेशन सिंदूर के समय, जब भारत के मिसाइल्स और रॉकेट्स और का हमला हुआ तो किस तरह कई उनके आतंकवादियों के गढ़ जहाँ पे उनकी ट्रेनिंग होती थी उनको ध्वस्त किया गया। तो हर देश जिसमें उनका इशारा मुख्यतः पाकिस्तान के ऊपर था, वो कोई डबल स्टैंडर्ड ना रखे, और आतंकवादी चाहे वो उनके देश पर हमला कर रहे हो या उनके पड़ोसी देशों पर हमला कर रहे हो, जैसे कुछ आतंकवादी अब अफगानिस्तान में भी पाकिस्तान से चाह के अफगानिस्तान को भी प्रभावित कर रहे हैं, भारत को तो कर ही रहे हैं। तो सब जगह वो पाकिस्तान अपने यहाँ जितने आतंकवादी हैं उन सबको खिलाफ कार्रवाई करे, और जितने चैनल्स हैं उनको जो उनको सुरक्षा देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, पैसा उनके लिए इकट्ठा करते हैं, उनको भी बंद कर।
1: अम्बेसडर तायर, आगे बढ़ते हुए पश्चिम एशिया में मौजूद घटनाक्रम को देखते हुए प्रधानमंत्री के इस बयान को आप कैसे देखते हैं कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ता है और व्यापार को आसान बनाते हैं, जैसे कि कनेक्टिविटी बढ़ाने के ऊपर भी प्रधानमंत्री ने काफी जोर दिया, और प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए नए रास्ते भी तलाशने बहुत जरूरी हैं। तो आखिर आप इस वक्तव्य को कैसे देखते हैं?
0: ये भारत और मध्य एशिया के बीच में बहुत ही मधुर संबंध हैं, पर व्यापार नहीं हो पाता है क्योंकि बीच में अफगानिस्तान है और पाकिस्तान हमारे व्यापार को, हमारे ट्रक्स को वहाँ नहीं जाने देता है। तो भारत ने बहुत प्रयत्न किया कि ईरान के द्वारा एक नया रास्ता खोजा जाए। चाबहार पोर्ट जो ईरान में है उसमें भारत का निवेश है और एक बर्थ भारत कंपनी चलाती है। पर जो वेस्ट एशिया में जो इस समय युद्ध चल रहा है अमेरिका और ईरान के बीच में, इसमें ईरान के ऊपर सैंक्शंस और बढ़ गई हैं, और ईरान के द्वारा और ईरान के थ्रू कोई भी, जैसे भारत एक इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की बात कर रहा था कि बॉम्बे से चाबहार जाए शिप से सामान कंटेनर्स, और उसके बाद रेलवे से, और उसके बाद ट्रक से अफगानिस्तान के थ्रू। पर अब वो सब की संभावना कब दिखती है? तो इसलिए कोई नया सोच दुनिया को और इस रीजन के देशों को सोचना होगा, उसकी तरफ इशारा हमारे प्रधानमंत्री ने किया।
1: अम्बेसडर तायल, प्रधानमंत्री ने हमेशा ही कहा है और भारत ने भी हमेशा ये जोर दिया है कि डायलॉग और डिप्लोमेसी ही किसी भी वॉर का समाधान निकाल सकते हैं। प्रधानमंत्री का ये कहना है कि बैटल फील्ड पे लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती, बल्कि समाधान खोजने होंगे जो कि डायलॉग और डिप्लोमेसी के थ्रू होंगे। तो इसको वर्ल्ड कैसे देखता है?
0: को पूरी दुनिया बहुत ध्यान से सुनती है और समझती है। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत जो देश है वो गौतम बुद्ध और महात्मा गांधी का है, हमेशा डायलॉग और डिप्लोमेसी को भारत ने समर्थन किया है। और प्रधानमंत्री मोदी के इतने अच्छे संबंध दूसरे देशों के राजनेताओं से हैं कि वो बात साफ साफ कर सकते हैं और उसको दूसरे लोग बुरा नहीं मानते। जैसे कि 2 वर्ष पहले राष्ट्रपति पुतिन को उन्होंने बड़ा पब्लिक स्टेटमेंट में कहा था कि ये युद्ध का युग नहीं है, और उसको पूरी दुनिया में बहुत अच्छी तरह उसको लिया गया था और समझा गया था। और इसी तरह कल जो राष्ट्रपति पुतिन के साथ हमारे प्रधानमंत्री की बैठक हुई, उसमें जो पब्लिकली जो बात हुई, उसमें उन्होंने कहा कि देखिए ये एंडलेस वॉर हो रही है, अब इसको एंड ऑफ वॉर की तरफ ले जाइए, कि जो वॉर जो खत्म ही नहीं हो रही है उसको खत्म समाप्ति की तरफ ले जाइए। तो ये एक बहुत अच्छा एक मैसेज है। एक जो अपना निर्णय है वो तो हर देश के राजनेता अपने अनुसार लेते हैं, अपनी समझ के अनुसार लेते हैं, पर दुनिया क्या कह रही है, जो एक अच्छा विचार व्यक्त करने वाले लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, उनकी बातों को बहुत ध्यान से लोग सुनते हैं और जहां तक हो सकता है उस पर अमल करने का भी प्रयत्न करते हैं। तो एक बहुत अच्छा संदेश भारत के प्रधानमंत्री ने, मैं समझता हूँ कि सब देशों को दिया, राष्ट्रपति पुतिन को भी दिया, और दुनिया के और जहाँ जहाँ भी युद्ध हो रहा है वहाँ भी ये संदेश बहुत ध्यान से गंभीरता से सुना जाएगा।
1: अम्बेसडर तायर, प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सभी देशों को संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना भी अत्यंत ही आवश्यक है। आप इस स्टेटमेंट को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं?
0: भारत यूनाइटेड नेशंस का मेंबर है और सभी जो देश हैं सब यूनाइटेड नेशंस के सदस्य हैं और उसके चार्टर को मानते हैं, और उसमें जो सबसे बड़ा जो एक बिंदु है वो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी का है सब देशों का, और उसको बहुत मजबूती से प्रधानमंत्री ने सामने रखा। और उन्होंने ये कनेक्टिविटी के संदर्भ में भी ये बात कही, क्योंकि जो BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना का है, जो पाकिस्तान चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वो भारत भारतीय कश्मीर से पास होता है जो कि भारत का क्षेत्र है। तो उनका ये भी एक क्लियर उनका कहना था कि जो भी कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हो उनमें सब देशों की सॉवरेनिटी की सुरक्षा की जाए। और इस संदर्भ में उन्होंने एक बात और कही कि जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं, उसमें ऐसा ना हो कि जो ग्लोबल साउथ के जो देश हैं उनके ऊपर बहुत अधिक कर्ज हो जाए। ये एक इशारा मेरे समझता हूँ कि चाइना की तरफ था, जिन्होंने कई देशों में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को अपना लोन दिया है, पर वो ऊंचे ब्याज पर दिया है, जो कि जैसे श्रीलंका है उनको हम्बनटोटा के लिए वो कर्ज चुकाना बड़ा मुश्किल हो रहा है।
1: अम्बेसडर तायल, आखिर में आपसे बहुत ही संक्षेप में जानना चाहूंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले 25 वर्षों में पीपल टू पीपल टाइज को हमारे सहयोग के केंद्र में रखना चाहिए, तो पीपल टू पीपल टाइज कितने महत्वपूर्ण होते हैं?
0: देखिए, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को अब 25 वर्ष हो चुके हैं, तो अगले 25 वर्ष प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले 25 वर्ष में पीपल टू पीपल संबंधों को सेंटर ऑफ कोऑपरेशन बिल्कुल बीच में रखा जाए, क्योंकि जो भी हम दुनिया में देख रहे हैं इस समय तनाव की स्थिति है, युद्ध की स्थिति है, और कुछ इस तरह का सोच है कि जो विनर टेक्स ऑल, कि जो अमीर है वो और अमीर होता चला जा रहा है, जो गरीब है वो कहीं भी उस पर सोच नहीं रहा। तो इस संदर्भ में लोगों में डायरेक्ट संबंध होंगे, डायरेक्ट डायलॉग होगा, कल्चरल एक्सचेंजेस होंगी, फिल्में साथ बनेंगी, टूरिज्म होगा, मेडिकल के लिए आएंगे। इससे लोगों में जो विभिन्न देशों से आते हों, विभिन्न धर्म के हों, पर उनमें भाईचारा बढ़ता है, उनमें एक संवाद बढ़ता है, और पूरे विश्व में एक हार्मनी का, एक शांति का माहौल पैदा होता है। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही अच्छा सोच प्रधानमंत्री ने SCO मेंबर्स के सामने रखा, और इसके लिए उन्होंने एक बहुत कॉन्क्रीट प्रपोजल भी रखा कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन सिविलाइजेशनल डायलॉग, जो उन्होंने पिछले वर्ष उसकी बात की थी, कि भारत में ये पहला डायलॉग आने वाले महीनों में होगा, कि जिस तरह बार बार प्रधानमंत्री भी कहते हैं और हमारे जो देश के चिंतक वर्ग है वो कहता है कि भारत का दुनिया को विरासत सोच की है, थॉट्स की है, फिलॉसफी की है, दर्शन की है। हमने कभी किसी दूसरे देश को कॉन्क्वेस्ट नहीं किया कि अपने यहाँ से हमने फौजें भेजी, पर अच्छे विचार भेजे और अच्छा ज्ञान भेजा।

0: इसको पूरे विश्व ने उसको स्वीकारा और उसको अप्रिशिएट किया। मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री अब उस दिशा में कार्य करने का कुछ निर्णय उन्होंने बनाया है।
1: अम्बेसडर तायल, आप आकाशवाणी के सुर्खियों में कार्यक्रम में आए और आपने इतने विस्तार से हमें जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू।
2: अभी आप सुन रहे थे शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री के संबोधन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत स्कंद रंजन तायल। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी आकाशवाणी संवाददाता दीक्षा सक्सेना। सुर्खियों में
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में, यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए पेश है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

0: कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में आप सुन रहे थे फिल्म खामोशी का ये प्यारा सा गीत। मजरू सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा था और संगीत जतिन ललित का था।
1: चिक चिक बम चिक बम बम बम चिक चिक बम
0: हम। आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत मोहम्मद अजीज और सुदेश भोसले की आवाज में। आनंद बख्शी की रचना है और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

हम हैं राही प्यार के। आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत कुमार सानू, अलका याग्निक और साथियों की आवाज़ में। समीर के बोल हैं और संगीत नदीम श्रवण का।

कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं शराबी फिल्म का गीत, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ में। अनजान के बोल हैं और संगीत पप्पी लहरी का।

हमारे श्रोताओं के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। पुलिस आयुक्त नगरीय पुलिस भोपाल द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत भोपाल के पॉलिटेक्निक चौराहा, आकाशवाणी चौराहा और किलोल पार्क चौराहा और इन चौराहों के मध्य आने वाले सभी स्थानों पर किसी भी प्रकार के हड़ताल, धरना, प्रदर्शन, आंदोलन और पुतला दहन कार्यक्रम आयोजित किए जाने के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। ये प्रतिबंधात्मक आदेश आगामी 2 माह यानी 20 अक्टूबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। इसलिए आम नागरिकों से अपील है कि प्रतिबंधात्मक आदेशों का पालन करें और कानून व्यवस्था और लोक शांति बनाए रखने में पुलिस और प्रशासन का सहयोग करें। सूचना समाप्त हुई।

नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।

सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक, यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबान से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम। आकाशवाणी।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से होगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों से आतंकवाद के पूरे तंत्र के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। सम्मेलन आतंकवाद, जलवायु कार्रवाई और डिजिटल सहयोग से जुड़े 13 समझौतों के साथ संपन्न। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने नतीजों पर आधारित निगरानी और किसानों तक समय पर लाभ पहुंचाने पर बल दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट पेपर लीक मामले में छात्र विरोध प्रदर्शनों पर प्राथमिकी रद्द करने का आदेश दिया। कांग्रेस जनता पार्टी ने केंद्र सरकार से आश्वासन मिलने के बाद शनिवार को प्रस्तावित मार्च वापस लिया। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की और अफगानिस्तान के साथ 3 T20 क्रिकेट मैच की घरेलू श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम घोषित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य देशों से आतंकवादियों को उपलब्ध होने वाली आर्थिक मदद, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। श्री मोदी ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों पर चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को बढ़ावा देते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। सम्मेलन आतंकवाद, जलवायु कार्रवाई और डिजिटल सहयोग से जुड़े 13 समझौतों के साथ संपन्न हुआ। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन के घोषणा पत्र में भारत की प्राथमिकताओं को प्रमुखता से शामिल किया गया है।
1: शंघाई सहयोग संगठन के बिश्केक घोषणा पत्र में संवाद को आगे बढ़ाने के लिए एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना को दोहराया गया है। एससीओ सदस्य देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं है। सदस्य देशों ने आतंकवाद से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों का भी आह्वान किया है, जिसमें आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही भी शामिल है। घोषणा पत्र में युवाओं की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से वैज्ञानिक, तकनीकी और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इसमें भारत की पहल पर आयोजित एससीओ युवा वैज्ञानिक मंच का भी उल्लेख है। सदस्य देशों ने इस वर्ष भारत में होने वाले एससीओ सभ्यता संवाद मंच का स्वागत किया और एससीओ युवा लेखक सम्मेलन में भारत की पहल का उल्लेख किया। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: सम्मेलन 13 प्रमुख निर्णयों के साथ संपन्न हुआ। ये निर्णय आतंकवाद रोधी उपायों, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा, आपदा प्रबंधन और डिजिटल सहयोग से संबंधित हैं। इसके अलावा 4 समझौता ज्ञापनों और 20 से अधिक निर्णयों को भी मंजूरी दी गई। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि उनकी किर्गिस्तान यात्रा बेहद सार्थक और ठोस परिणामों वाली रही। उन्होंने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन से अलग हुई विभिन्न बैठकें भारत के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से इस क्षेत्र के साथ भारत के संबंध और मजबूत होंगे।
2: Prime Minister further stated that
3: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा प्रगति और समृद्धि के लिए मजबूत और भरोसेमंद कनेक्टिविटी की पहल महत्वपूर्ण है। भारत ऐसी कनेक्टिविटी परियोजनाओं का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ें, व्यापार को बढ़ावा दें और विकास के नए अवसर खोलें। हालांकि ऐसी पहलों में देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाना चाहिए।
2: सॉवरेंटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ नेशंस।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026.

0: under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। श्री चौहान ने नतीजों पर आधारित निगरानी और किसानों तक समय पर लाभ पहुंचाने पर बल दिया। एक रिपोर्ट।
2: योजना के 6 लक्ष्यों के आधार पर 100 जिलों का औसत स्कोर अप्रैल 2026 में 22.54 से बढ़कर जुलाई 2026 में 38.85 हो गया, जो 16.31 अंकों के सुधार को दर्शाता है। यह योजना 11 मंत्रालयों और विभागों की 36 केंद्रीय योजनाओं के साथ साथ राज्य की योजनाओं और निजी क्षेत्र की भागीदारी को मिलाकर लागू की जा रही है। वार्षिक लक्ष्यों के सापेक्ष प्रगति की निगरानी के लिए 36 योजना में कुल 121 संकेतक निर्धारित किए गए हैं। समीक्षा में निगरानी ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिया गया। शिवांग मिश्रा के साथ नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: सरकार ने चीनी और प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कई उपाय किए हैं। केंद्र सरकार ने चीनी की जमाखोरी और सट्टेबाजी रोकने के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 4000 से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। ये नई सीमा 15 सितंबर से 30 नवंबर तक लागू रहेगी। अब कोई भी व्यापारी स्टॉक मिलने के 30 दिनों से अधिक समय तक तय सीमा से अधिक चीनी अपने पास नहीं रख सकेगा। वहीं कांदा एक्सप्रेस मालगाड़ियों और ट्रकों के जरिए देश के प्रमुख शहरों में 2500 मीट्रिक टन से अधिक प्याज की सुनियोजित आपूर्ति की जा रही है। सरकार को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में आपूर्ति और बढ़ने से दाम पूरी तरह स्थिर हो जाएंगे और लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच देशभर में नीट पेपर लीक मुद्दे पर छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी प्राथमिकी को रद्द करने और इन मामलों में आगे जांच नहीं करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम की ओर से दायर याचिकाओं में बताई गई प्राथमिकी भी रद्द कर दी और राज्य को कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं करने को कहा है। हालांकि न्यायालय ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल संगीन आपराधिक मामले वाले 2873 लोगों के खिलाफ जांच जारी रखने की अनुमति दी है। सरकार ने कांग्रेस जनता पार्टी CJP के शनिवार को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को रद्द करने की घोषणा का स्वागत किया है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता युवाओं की प्रगति और विकास है।
3: हमने छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए आश्वासन दिया था कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर दर्ज किए गए मामले वापस लिए जाएंगे। उसी क्रम में हमने भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में जो सरकारें थी उनसे भी चर्चा की थी और हम उस आश्वासन को पूरा करने जा रहे हैं। CJP के प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 5 सितंबर को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को वापस लेने का जो निर्णय लिया है, हम उसका स्वागत करते हैं।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के 16 रक्षा उपक्रमों के प्रदर्शन और प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए रहा। इसमें 1,29,000 करोड़ रुपए का योगदान रक्षा उपक्रमों का था। उन्होंने इस उपलब्धि को आत्मनिर्भर रक्षा औद्योगिक आधार के निर्माण की दिशा में देश की महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक बताया। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT 6 दशकों से अधिक समय से विशेष रूप से अपनी पाठ्य पुस्तकों, शिक्षण सामग्री और पाठ्यक्रम के माध्यम से भारतीय शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। नई दिल्ली में परिषद के 66वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने स्कूली शिक्षा में सुधारों के लिए एक ढांचा प्रदान किया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैव विविधता को नुकसान और प्रदूषण जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए एकजुट और साझा प्रयासों की जरूरत है। नई दिल्ली में भारत जर्मनी पर्यावरण मंच में उन्होंने कहा कि भारत के विकास के अनुभव ने यह साबित किया है कि पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास दोनों एक साथ चल सकते हैं।
4: क्लाइमेट रेजिलिएंट फ्यूचर,
5: जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने और अपने लिए जलवायु अनुकूल भविष्य बनाने के लिए आपसी सहयोग बेहद जरूरी है।

0: भारत इस दिशा में जर्मनी के साथ अपनी साझेदारी को विशेष महत्व देता है। दोनों देशों के बीच पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग कई वर्षों से जारी है और समय के साथ पर्यावरणीय शासन के नए क्षेत्रों तक इसका विस्तार हुआ है।
1: एरियाज ऑफ एनवायरमेंटल गवर्नेंस।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी तेज बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी ऐसी ही स्थिति रहने की उम्मीद है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, कर्नाटक और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में मध्यम जबकि कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में व्यापक बारिश होने की संभावना है। वस्तु और सेवा कर के संग्रह पिछले महीने बढ़कर 1,99,853 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। ये अगस्त 2025 के 1,74,116 करोड़ रुपए के मुकाबले करीब 15% अधिक है। केंद्र सरकार ने ईंधन निर्यात करों की अपनी ताज़ा पाक्षिक समीक्षा के अंतर्गत पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में संशोधन किया है। नए नियमों के अनुसार पेट्रोल पर निर्यात शुल्क बढ़ाकर 1.5 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर बढ़ाकर 25 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क घटाकर 19 रुपये प्रति लीटर किया गया है। अधिसूचित ये संशोधित दरें आज से लागू हो गई हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता के डम्बन्ना में अर्जुन वाहिनी नामक एक विशेष आपदा मोचन दस्ते का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की तर्ज पर गठित इस बल का उद्देश्य राज्य की आपदा प्रबंधन क्षमताओं को और अधिक मजबूत बनाना है। महाराष्ट्र सरकार ने नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत वर्ष 2029 तक राज्य को मादक पदार्थ मुक्त बनाने के लिए एक व्यापक नीति को मंजूरी दी है। मुंबई में मंत्रिमंडल की बैठक में मादक पदार्थों के खिलाफ सभी विभागों के समन्वय से कड़ी कार्रवाई करने का फैसला लिया गया। सरकार ने शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम के अंतर्गत आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर इस साल 30 सितंबर कर दी है। अब संस्थान स्तर पर प्रथम स्तर के सत्यापन की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर और जिला स्तर पर द्वितीय स्तर के सत्यापन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तय की गई है। भारतीय जनसंचार संस्थान ने भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों को पहली बार स्नातकोत्तर उपाधि प्रदान कर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। इन अधिकारियों को लोक संचार और शासन में एमए की डिग्री दी गई है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव चंचल कुमार ने कहा कि जनसंचार शासन का एक अभिन्न अंग है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने अफगानिस्तान के साथ 3 T20 मैच की श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर और उपकप्तान तिलक वर्मा होंगे। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को भी टीम में मौका मिला है। श्रृंखला का पहला मैच 13 सितंबर, दूसरा 15 और तीसरा 17 सितंबर को दिल्ली में खेला जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों से आतंकवाद के पूरे तंत्र के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। संगठन का शिखर सम्मेलन आतंकवाद रोधी उपायों, जलवायु कार्रवाई और डिजिटल सहयोग से जुड़े 13 समझौतों के साथ संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट पेपर लीक मामले में छात्र विरोध प्रदर्शनों पर प्राथमिकी रद्द करने का आदेश दिया। कांग्रेस जनता पार्टी ने केंद्र सरकार से आश्वासन मिलने के बाद शनिवार को प्रस्तावित मार्च वापस लिया। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की। और अफगानिस्तान के साथ 3 T20 क्रिकेट मैच की घरेलू श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम घोषित। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम साइरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9।

0: till the 30th of November this year. The new stock limit is aimed at curbing hoarding and speculative trading, protect consumer interest by ensuring adequate availability and price stability. Goods and Services Tax or GST collections in the last month witnessed a significant rise to 1,99,853 crore rupees, marking a 14.8% year-on-year increase from 1,74,116 crore rupees in August 2025. According to the provisional data released by the Finance Ministry, gross domestic GST revenue stood at 1,37,249 crore rupees, up 9.3% from a year ago. GST collections from imports surged 29% to 62,604 crore rupees, providing a boost to the overall monthly mop up. This is Akashvani. You're listening to News at 9.
1: Stay connected with AIR News. Follow us on X at AIR News Alerts and visit newsonair.gov.in for the latest updates.
0: Welcome back. You're listening to News at 9. Director General of Akashvani, Rajiv Kumar Jain, today inspected border area transmissions in Punjab, Jalandhar and Amritsar and reviewed working of both these stations and of the Union Territory of Chandigarh as well. He also reviewed the ongoing developmental projects of Akashvani in Punjab. The death toll from the devastating flash floods in Nepal has crossed 1,000, with security forces recovering more bodies from 8 affected districts of the country. Rescuers struggled to trace those stranded amid intermittent rainfall and a fresh flood alert as water levels rose in rivers across several districts. The National Disaster Risk Reduction and Management Authority said around 4,000 people still remain missing, including 583 foreigners and 83 security personnel, while nearly 12,000 people have been rescued. Nepal's hospitals are struggling to cope up with the growing number of unidentified bodies. Rescue teams are still trying to trace more than 600 workers and employees in various hydropower project sites in flooded areas, of which many are believed to be trapped in tunnels. Expert teams from India are assisting the Nepalese rescuers in these operations. The Ministry of External Affairs of India has said 163 Indian nationals have been rescued so far. India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy to very heavy rainfall at isolated places over Chhattisgarh, East Madhya Pradesh and Uttarakhand tomorrow. Heavy rainfall is expected over Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Bihar, Haryana, Chandigarh and Delhi at isolated places. In men's cricket, India's 15-member squad for the upcoming three-match T20 international series against Afghanistan has been announced. Shreyas Iyer will lead the Indian side with Tilak Verma as vice-captain. A report.
2: Jasprit Bumrah has returned to the squad subject to fitness clearance, with Nitish Kumar Reddy, Washington Sundar and Harshit Rana also featuring in the squad. The series will be played at New Delhi's Arun Jaitley Stadium on the 13th, 15th and 17th of this month, with Afghanistan designated as the host. India's squad combines experienced campaigners and young talent like Vaibhav Suryavanshi, Abhishek Sharma, Sanju Samson and Ishan Kishan, with Shreyas Iyer as captain and Tilak Verma as vice-captain. Besides Bumrah and Rana, the bowling attack includes Arshdeep Singh, Varun Chakravarti and Ravi Bishnoi. With Swati Rakheja, Reshma Tiwari, News Desk.
0: And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Modi calls on SEO member countries to unite against entire terror ecosystem. SEO summit culminates with 13 outcome agreements spanning counter-terrorism, climate action and digital cooperation. Prime Minister concludes his successful visit to Uzbekistan and Kyrgyzstan. Supreme Court orders closure of FIRs across the country over student protests. CJP withdraws proposed September 5 March following assurances from Centre. Heavy to very heavy rainfall likely at isolated places in Chhattisgarh, East MP and Uttarakhand tomorrow. And in men's cricket, 15-member Indian squad announced for three-match T20 international series against Afghanistan. That's all in the news at 9. Good night.
3: Adab. ये आकाशवाणी है, जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने शंघाई तआवुन तंजीम SCO के रुकन ममालिक से दहशतगर्दी के पूरे इको निज़ाम के खिलाफ मुत्तहिद होने पर जोर दिया है। SCO समिट नतायज पर मबनी 13 माहदों के साथ इख्तिताम पज़ीर हुई, जिसमें दहशतगर्दी, आबोहवा से मुतालिक इक़दामात और डिजिटल इश्तराक शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान का अपना कामयाब दौरा मुकम्मल कर लिया है। ज़राअत के वज़ीर शिवराज सिंह चौहान ने PM धन धान्य कृषि योजना की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने नतायज पर मबनी निगरानी और किसानों को फवायद की बरवक्त फराहमी पर जोर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तलबा के एहतजाज के सिलसिले में मुल्क भर में दर्ज FIR को रद्द करने का हुक्म दिया है। CJP ने मरकज की जानिब से यकीन दहानी के बाद 5 सितंबर का अपना मुजवजा मार्च वापस ले लिया है। छत्तीसगढ़, मशरकी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ मकाम पर कल शदीद से बहुत शदीद बारिश का इम्कान है। और मर्दों के क्रिकेट में अफगानिस्तान के खिलाफ 3 T20 बैनुल अक्वामी मैचों की सीरीज के लिए 15 रुकनी भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिज जमहूरिया की राजधानी बिश्केक में मुनक्किदा शंघाई तआवुन तंजीम के सरबराह ने ममलकत की काउंसिल की 26वीं मीटिंग में शिरकत की। समिट से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने सभी रुकन ममालिक पर दहशतगर्दी के लिए माली मदद फराहम करने, लोगों को भर्ती करने, शिदत पसंदी और महफूज पनाहगाहों के पूरे इको निज़ाम को नीस्त व नाबूद करने पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दहशतगर्दी के मामले में दोहरे मेयार की कोई जगह नहीं है। जना मोदी ने दुनिया भर के मुख्तलिफ हिस्सों में जारी लड़ाइयों पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जंग और महाजाराइयाँ किसी मसले का हल नहीं है और सभी मामलों को बातचीत और सिफारतकारी के जरिए हल किया जाना चाहिए। जना मोदी ने कहा कि भारत ने गुज़िश्ता बरस शंघाई तआवुन तंजीम तहजीबी डायलॉग की तजवीज़ पेश की थी। वज़ीर-ए-आज़म ने खुशी का इजहार किया कि इसका पहला इजलास इस साल भारत में होगा। भारत की तरजीहात को SCO बिश्केक ऐलामिए में नुमाया तौर पर शामिल किया गया है। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से।
4: ऐलामिए में बातचीत की खातिर एक कुर्रा अर्ज, एक कुनबा, एक मुस्तकबिल के नज़रिए का इआदा किया गया है। शंघाई तआवुन तंजीम के रुकन ममालिक ने हर तरह की दहशतगर्दी की सख्त मजम्मत की और कहा कि दहशतगर्दी से निपटने के सिलसिले में दोहरा मयार नाकाबिले कबूल है। उन्होंने सरहद पार दहशतगर्दों की नकलो हरकत समेत दहशतगर्दी के खिलाफ जामे इकदाम पर भी जोर दिया। रहनुमाओं ने इस साल भारत में होने वाले SCO सिविलाइजेशन डायलॉग फोरम का खैर मकदम किया और SCO यंग ऑथर्स कॉन्फ्रेंस की भारत की पहल को सराहा। ऐलामिए में अंग्रेजी को SCO की सरकारी और कामकाज की जबान के तौर पर शामिल किए जाने की भी बात कही गई है। बिश्केक से विकल्प शुक्ला की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
3: वज़ीर-ए-आज़म मोदी किर्गिस्तान का अपना कामयाब दौरा मुकम्मल करने के बाद आज दोपहर वतन वापस होने के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि SCO समिट के मौके पर मुख्तलिफ मीटिंगें भारत के लिए सूदमंद साबित होंगी। बिश्केक में शंघाई तआवुन तंजीम की 26वीं समिट 13 अहम नतायज के साथ इख्तिताम पजीर हुई। इन नतायज में इंसदादे दहशतगर्दी, आबोहवा से मुतालिक इकदामात, तवानाई, कुदरती आफत के बंदोबस्त और डिजिटल इश्तराक का अहाता किया गया है। SCO के 25 साल मुकम्मल होने के मौके पर इसमें 4 मफाहमत नामों और 20 से ज्यादा फैसलों को मंजूरी भी दी गई है। ये इकदामात दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी, मुनज़्ज़म जराइम और एक दूसरे के ममालिक में दीगर खतरात से निमटने के सिलसिले में इश्तराक को मुस्तहकम करेंगे। मुनशियात की गैरकानूनी तिजारत की रोकथाम के सिलसिले में भी मुख्तलिफ फैसले किए गए हैं। आबोहवा की तब्दीली और तवानाई के सिलसिले में SCO ममालिक ने तवानाई की बचत और मौसर इस्तेमाल के सिलसिले में इश्तराक बढ़ाने पर इत्तफाक किया। समिट में हंगामी सूरत हाल से मुतासर ममालिक की मदद के लिए एक बयान भी मंजूर किया गया। डिजिटल शोबे में रुकन ममालिक ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इश्तराक को वसत देने पर इत्तफाक किया। वज़ारत खारजा ने कहा कि ये नतायज इलाकाई सलामती, तरक्की और कनेक्टिविटी के मामले पर अपनी पोजीशन पर पेशरफ्त के लिए भारत को एक कलीदी प्लेटफॉर्म फराहम करते हैं। वज़ारत खारजा ने कहा कि समिट से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने आइंदा 25 बरसों के लिए एक नक्शे राह पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में जल शक्ति वजारत की महकमा जाती समिट के अख्तामी इजलास से खिताब करेंगे। इस दो रोज़ा महकमा जाती समिट का आगाज आज हुआ है और ये वज़ीर-ए-आज़म के महकमा जाती समिट के नज़रिए की सीरीज़ की पहली समिट है, जिसका मकसद टीम इंडिया के जज्बे को मुस्तहकम करना और तआवुन पर मबनी विपाक को मजबूत करना है। ज़राअत और किसानों के बहबूद के वज़ीर शिवराज सिंह चौहान ने

नई दिल्ली में एक मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना PMDDKY की पेशरफ्त का जायजा लिया। मीटिंग के दौरान 100 नामजद जिलों में इस स्कीम के निफाज में तेजी लाने, इसे दूसरी स्कीमों के साथ मरबूत करने

0: 11 वजारतों और महकमों की 36 मरकजी स्कीमों और रियासती स्कीमों और प्राइवेट शोबे की शमूलियत के साथ मरबूत करते हुए नाफिज की जा रही है। सालाना अहदाफ की पेशरफ की निगरानी के लिए 36 स्कीमों के 74 नतायज पर मबनी अशारियों और 47 महसल पर मबनी अशारियों पर मुश्तमिल कुल 121 इशारियों की शनाख्त की गई है। मरकजी काबीना ने गुज़श्ता साल धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी थी और 11 अक्टूबर 2025 को इसका आगाज किया था। दिल्ली से शिवांग मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीर।
1: हुकूमत ने चीनी के डीलरों के लिए चीनी का जखीरा करने की हद 4000 क्विंटल से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। इस हद का इतलाक इस साल 15 सितंबर से 30 नवंबर तक जारी रहेगा। चीनी जखीरा करने की हद में की गई नई कटौती का मकसद जखीरांदोजी और कयास आराइयों पर मबनी तिजारत की रोकथाम, सारिफिन के मफादात का तहफ्फुज और चीनी की वाफर दस्तियाबी और कीमतों में इस्तेहकाम को यकीनी बनाना है। फिलहाल मुल्क भर में चीनी के डीलरों को 4000 क्विंटल तक चीनी जखीरा करने की इजाजत है, जो इस साल 1 अगस्त से नाफिजुल अमल है। हुकूमत ने कहा है कि मुल्क में प्याज की दस्तियाबी वाफर मकदार में है और हुकूमत ने कांदा एक्सप्रेस और सड़क ट्रांसपोर्ट के जरिए बफर स्टॉक की तयशुदा और मुकर्रर करदा मकदार की रवानगी का आगाज किया है ताकि प्याज की कीमतों के सीजन के दबाव को मुंजबित किया जा सके। खुराक सारिफिन के उमूर और अवामी निज़ाम तकसीम की वजारत ने कहा कि 19 रियासतों में वाफर दस्तियाबी को यकीनी बनाने के लिए 30 ट्रक रवाना करते हुए खुर्दा इकदामात को खातिर ख्वाह वसूत दी गई है। वजारत ने बताया कि इस पहल के हिस्से के तौर पर नासिक से 2 कांदा एक्सप्रेस ट्रेनों की खेप रवाना की गई है। वजारत ने मजीद कहा कि पहले मरहले के तहत 450 मैट्रिक टन प्याज दिल्ली पहुँच गई है और इसके अलावा वाराणसी, लखनऊ, चंडीगढ़ और अमृतसर और पूरे दिल्ली कौमी राजधानी खित्ते में तकसीम की गई है। वजारत ने मजीद बताया कि बाजार की मौजूदा सूरत हाल और कीमतों के रुझान को देखते हुए तकरीबन 1000 मैट्रिक टन प्याज सड़क के रास्ते अहम मराकज तक पहुंचाई जा रही है। वजारत ने इत्तला दी कि बरवक्त अदायगियों को यकीनी बनाते हुए 210 करोड़ रुपये सीधे तौर पर 3400 किसानों को अदा किए गए। हुकूमत प्याज के किसानों की मदद के तई अहद बस्ता है और सारिफिन के लिए भी प्याज की खातिर ख्वाह और किफ़ायती दस्तियाबी को यकीनी बना रही है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में 16 दिफाई शोबे की सरकारी कंपनियों की सालाना कारकर्दगी का जायजा लिया। अपने खिताब में जनाब सिंह ने इस बात को उजागर किया कि साल 2025-26 में भारत की दिफाई साजो सामान की तैयारी तकरीबन 1.8 लाख करोड़ रुपये रही। उन्होंने इस उसूलियाबी को आत्मनिर्भर दिफाई सनती बुनियाद कायम करने की जानिब मुल्क की अहम पेशरफ करार दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दिफाई शोबे की सरकारी कंपनियों की पेशरफ महज इकतसादी सनती ज़रूरत नहीं है बल्कि यह कौमी सलामती के लिहाज से भी इंतहाई अहम है। मरकजी हुकूमत ने ईंधन के बरामदाती महसूल से मुतालिक अपने 15 रोज़ा ताज़ा जायजे के हिस्से के तौर पर पेट्रोल, डीजल और हवाई जहाज़ों के ईंधन की बरामदात पर खसूसी इजाफी एक्साइज ड्यूटी पर नज़रसानी की है। नज़रसानीशुदा कीमतों के मुताबिक पेट्रोल पर बरामदाती महसूल में 1.5 रुपये फ़ी लीटर का इजाफा किया गया जबकि डीजल पर यह महसूल 25 रुपये फ़ी लीटर तक बढ़ा दिया गया। हवाई जहाज़ों के ईंधन पर महसूल में 19 रुपये फ़ी लीटर की कमी की गई है। वजारत खजाना की जानिब से नोटिफाई की गई नज़रसानीशुदा शरहें आज से लागू हो जाएंगी। तहम घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा एक्साइज ड्यूटी में कोई तब्दीली नहीं की गई है। हुकूमत ने आज CJP की जानिब से 5 सितंबर को होने वाला अपना एहतजाज न करने के ऐलान का खैर मकदम किया है। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा ने यकीन दहानी कराई कि एहतजाज करने वाले तलबा के खिलाफ दर्ज सभी मामलात वापस लिए जाएंगे और मुस्तकबिल में उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि मरकज ने BJP की हुक्मरानी वाली रियासतों से भी सलावा मशवरा किया है और अब इस बात की यकीन दहानी को पूरा किया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा हुकूमत की अवलीन तरजीह नौजवानों की फलाह व बहबूद और तरक्की है।
2: हमने छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए आश्वासन दिया था कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर दर्ज किए गए मामले वापस लिए जाएंगे। उसी क्रम में हमने भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में जो सरकारें थी उनसे भी चर्चा की थी और हम उस आश्वासन को पूरा करने जा रहे हैं। CJP के प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 5 सितंबर को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को वापस लेने का जो निर्णय लिया है हम उसका स्वागत करते हैं।
1: इंसानी हकूक से मुतालिक कौमी कमीशन NHRC ने उस बस के ड्राइवर और कंडक्टर की जानिब से एक लड़की के साथ मुबैना जिनसी ज्यादा

जालसाजी के मामले में दिल्ली और गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नरों और उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के पुलिस सुपरिंटेंडेंट को नोटिस जारी किए हैं, जिसमें वो ग्रेटर नोएडा से सवार हुई थी। ये वाकया गुज़िश्ता महीने की 4 तारीख को पेश आया था। कमीशन ने 2 हफ्ते के अंदर अंदर इस मामले पर उनसे तफसीली रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है, जिसमें तहकीकात और अगर मुतासिरा को कोई मुआवजा दिया गया हो तो उसकी तफसील भी शामिल होगी। कमीशन ने मीडिया रिपोर्ट के बाद आज खुद नोटिस लेते हुए उन्हें नोटिस जारी किए हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 20 से 25 जुलाई तक नीट पेपर लीक मामले से मुतालिक तलबा के एहतजाज के सिलसिले में मुल्क भर में दर्ज FIRs को आज रद्द करने का हुक्म दिया। अदालत ने हिदायत दी कि इन मामलों को आगे न बढ़ाया जाए या इनके सिलसिले में तहकीकात न की जाए और इन्हें हर तरह से रद्द समझा जाए। तहम अदालत आलिया ने दिल्ली पुलिस को उन 2873 लोगों के खिलाफ एक FIR को आगे बढ़ाने की इजाज़त दी है जो जंतर मंतर एहतजाज में मौजूद थे और जिनका संगीन मुजरिमाना रिकॉर्ड है। बेंच ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का बयान रिकॉर्ड किया जो मरकज की जानिब से पेश हुए। भारतीय महकमे मौसमियात ने कल छत्तीसगढ़, मशरकी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ मकामात पर शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी कहीं कहीं शदीद बारिश का इम्कान है। हिमाचल प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ओडिशा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और मगरबी बंगाल में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। नेपाल में आए अचानक तबाहकुन सैलाब में मरने वालों की तादाद 1000 से तजावुज कर गई है। वहीं हिफाजती फोर्सेज की जानिब से मुल्क के 8 मुतासिरा जिलों से मजीद लाशों की बरामदगी का सिलसिला जारी है। कई जिलों की नदियों में सतह आब के बढ़ने की वजह से सैलाब के ताज़ा अलर्ट और रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से बचाव कारकुनों को फंसे हुए लोगों को निकालने के दौरान मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। मर्दों के क्रिकेट में अफगानिस्तान के खिलाफ खेले जाने वाली 3 T20 बैन अलावामी मैचों की सीरीज के लिए भारत की 15 रुकनी क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया है। श्रेयस अय्यर भारत की कप्तानी करेंगे जबकि तिलक वर्मा नायब कप्तान होंगे। इस सीरीज के 3 मैच 13, 15 और 17 सितंबर को नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जाएंगे। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की टीम में वापसी हुई है, वहीं नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर और हर्षित राणा को भी टीम में जगह दी गई है। जसप्रीत बुमराह घुटने की चोट की वजह से जुलाई में इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई 1 रोज़ा बैन अलावामी मैचों की सीरीज में नहीं खेल पाए थे। इसके अलावा वो श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में भी हिस्सा नहीं ले पाए थे। चीन के ग्वांगडोंग सूबे के शेंजेन में जारी चाइना मास्टर्स सुपर 750 टूर्नामेंट में भारत की उन्नति हुडा बाहर हो गई हैं। आलमी नंबर 25 हुडा को खवातीन के सिंगल्स के शुरुआती राउंड में आलमी नंबर 12 जुनूबी कोरिया की किम ग्वांग ने सीधे सेटों में 10-12 और 18-12 से शिकस्त दी। अब सारी तवज्जो मुकाबले में रह गए भारतीय खिलाड़ियों पर मरकूज हो गई है। कई सरकारदा बैडमिंटन खिलाड़ी कल अपनी मुहिम का आगाज करेंगे। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने शंघाई ताउन तंजीम SCO के रुकन ममालिक से दहशतगर्दी के पूरे इकोनिज़ाम के खिलाफ मुतहद होने पर जोर दिया। SCO समिट नतायज पर मबनी 13 माहिदों के साथ इख्तिताम पजीर हुई, जिसमें दहशतगर्दी, आबोहवा से मुतालिक इकदामात और डिजिटल इश्तराक शामिल हैं। वज़ीर आज़म ने उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान का अपना कामयाब दौरा मुकम्मल कर लिया है। ज़िराअत के वज़ीर शिवराज सिंह चौहान ने PM धान्य कृषि योजना की पेशरफ्त का जायज़ा लिया। उन्होंने नतायज पर मबनी निगरानी और किसानों को फवायद की बरवक्त फरामी पर जोर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने तलबा के एहतजाज के सिलसिले में मुल्क भर में दर्ज FIRs को रद्द करने का हुक्म दिया है। CJP ने मरकज की जानिब से यकीन दहानी के बाद 5 सितंबर का अपना मुजवजा मार्च वापस ले लिया है। इसके साथ ही आकाश

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए पेश है उर्दू प्रोग्राम कहकशां।

दोस्तों, अभी आप गुलूकार जगजीत सिंह से गजल समात फरमा रहे थे और कलाम था कैफी आजमी का। दोस्तों, बहैसियत मजमू ही हम ये कह सकते हैं कि कैफी आजमी की गजलें हकीकी तजुर्बे से माखूज़ हैं, जिनमें असली हकीकतों की गहरी नश्तरियत, पुख्ता तख्लीकी शऊर और नज़मिया के असरात मौजूद हैं। उनकी शायरी मुशायरे लूटने वाली शायरी नहीं है, बल्कि माशरे के फरसूदा रिवायात और मुल्क व दुनिया के ज़ालिमाना सियासी निज़ाम के खिलाफ एक ऐलान जंग है। डॉक्टर कमर रईस कहते हैं कि कैफी का ताल्लुक इंसानियत की उस तरक्की पसंद जमात से है जिसने इंसान को ज़ईफ़ुल एतिकादी, तवहम परस्ती और तासुबात से निजात दिलाने के काम को अपनी ज़िंदगी का नस्बुलैन बनाया। वहीं शमीम हनफी कहते हैं कि जब भी मैं कैफी आजमी के कलाम का मवाजना उनके दूसरे मासरीन से करता हूँ तो हमेशा इस नतीजे पर पहुँचता हूँ कि वह उर्दू शायरी में तरक्की पसंद तहरीक की अहम तरीन आवाज़ों में से फैज़ और मखदूम के बाद तीसरी बड़ी आवाज़ हैं। दोस्तों, अपनी शायरी का लोहा पूरी दुनिया से मनवाने के बाद उर्दू अदब का ये दरख्शां सितारा 10 मई 2002 को मुंबई में इस दारे फ़ानी को अलविदा कह गया। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही। अब हमारा प्रोग्राम यहीं ख़त्म होता है। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, अपने खतूत के ज़रिए हमें ज़रूर मुत्तला करें। हमारा पता नोट कीजिए, उर्दू प्रोग्राम कहकशां, मार्फत स्टेशन डायरेक्टर आकाशवाणी, शामला हिल्स, भोपाल, पिन 462002। अब आपके दोस्त वाजिद खान को दीजिए इजाज़त। आदाब।

वक्त की रफ्तार। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक, यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबान से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम। आकाशवाणी।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। रात्रि के 10 बजे हैं। लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में मैं अनुराधा अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, सबसे पहले सुनते हैं हीरा पन्ना फिल्म का गीत। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में आनंद बख्शी की रचना है, संगीत आर डी बर्मन का।

हम सब उस्ताद हैं। आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ में। बोल हैं असद भोपाली के और संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं शैलेंद्र का लिखा हुआ गीत। सलील चौधरी का संगीत है, फिल्म का नाम है मधुमती और खूबसूरत आवाज़ें लता मंगेशकर, मन्ना डे और साथियों की।

कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा हुआ गीत मजरू के बोल हैं। फिल्म का नाम है एक नज़र और आवाज़ें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की।

लता मंगेशकर की खूबसूरत आवाज़ में आइए अब सुनते हैं जिद्दी फिल्म का गीत। हसरत जयपुरी का लिखा हुआ ये गीत है और संगीत एस टी बर्मन का।

कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं मेरे महबूब फिल्म का गीत लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाज़ में। शकील बदायूनी का लिखा गीत है और धुन बनाई है नौशाद ने।

इस खूबसूरत गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 10:30 हुए हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में लीजिए सुनिए डॉक्टर एन राजम का वायलिन वादन। राग है यमन, तबले पर संगत की है स्माइल दद्दू खान ने।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर एन राजम का वायलिन वादन, राग था यमन। तबले पर संगत की थी इस्माइल दद्दू खाने। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से होगा।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य देशों से आतंकवादियों को उपलब्ध होने वाली आर्थिक मदद, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। श्री मोदी ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों पर चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को बढ़ावा देते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन के घोषणा पत्र में भारत की प्राथमिकताओं को प्रमुखता से शामिल किया गया है।
2: शंघाई सहयोग संगठन के बिश्केक घोषणा पत्र में संवाद को आगे बढ़ाने के लिए एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना को दोहराया गया है। एससीओ सदस्य देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं है। सदस्य देशों ने आतंकवाद से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों का भी आह्वान किया है, जिसमें आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही भी शामिल है। घोषणा पत्र

0: में युवाओं की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से वैज्ञानिक, तकनीकी और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इसमें भारत की पहल पर आयोजित SCO युवा वैज्ञानिक मंच का भी उल्लेख है। सदस्य देशों ने इस वर्ष भारत में होने वाले SCO सभ्यता संवाद मंच का स्वागत किया और SCO युवा लेखक सम्मेलन में भारत की पहल का उल्लेख किया। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
1: प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। इससे पहले श्री मोदी ने कहा कि उनकी किर्गिस्तान यात्रा बेहद सार्थक और ठोस परिणामों वाली रही। उन्होंने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन से अलग हुई विभिन्न बैठकें भारत के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीवी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से इस क्षेत्र के साथ भारत के संबंध और मजबूत होंगे। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में योजना के तहत चिन्हित 100 जिलों में कार्यान्वयन में तेजी लाने, विभिन्न योजनाओं के बीच बेहतर समन्वय और किसानों के लिए जिला स्तर पर प्रदर्शन में सुधार पर जोर दिया गया। योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादकता बढ़ाना, सिंचाई और भंडारण सुविधाओं में सुधार करना तथा कृषि को कृषि ऋण और बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराना है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव संजीव चोपड़ा ने आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सचिवों के सम्मेलन में खाद्यान्न खरीद, वितरण और भंडारण की समीक्षा की। आगामी खरीफ विपणन सत्र 2026-27 के लिए धान की खरीद का अनुमान 708 लाख मीट्रिक टन से अधिक तय किया गया। करीब 19 लाख मीट्रिक टन मोटे अनाज की खरीद का भी अनुमान है। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच देशभर में नीट पेपर लीक मुद्दे पर छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी प्राथमिकी को रद्द करने और इन मामलों में आगे जांच नहीं करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम की ओर से दायर याचिकाओं में बताई गई प्राथमिकियां भी रद्द कर दी हैं और राज्यों को कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं करने को कहा है। सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी CJP के शनिवार को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को रद्द करने की घोषणा का स्वागत किया है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता युवाओं की प्रगति और विकास है। सरकार ने शैक्षणिक सत्र वर्ष 2026-27 के लिए नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर इस साल की 30 सितंबर कर दी है। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार मेधावी छात्र नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। तारीख बढ़ाए जाने के बाद अब संस्थान स्तर पर प्रथम स्तर के सत्यापन की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर और जिला स्तर पर द्वितीय स्तर के सत्यापन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तय की गई है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। Prime Minister Narendra Modi has called upon member countries of Shanghai Cooperation Organization, SCO, to dismantle the entire ecosystem of terrorist financing, recruitment, radicalization, and safe havens. Addressing the 26th SCO summit in Bishkek today, the Prime Minister said there can be no place for double standards on terrorism. Secretary West in the Ministry of External Affairs, CB George, in a media briefing said the Prime Minister expressed concern over the ongoing conflicts in different parts of the world.
3: Prime Minister reiterated that India's position, conflicts and wars cannot be solved on the battlefield. Dialogue and diplomacy are the only way forward. Highlighting that terrorism was a grave threat to humanity, he called for committed action to dismantle the terror ecosystem. He specifically stressed that there should be no double standards whatsoever in fight against terrorism.
2: Mr. Modi said India had proposed the Shanghai Cooperation Organization Civilization Dialogue Forum last year. He expressed happiness that its first session will be held in India.